उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आज मंगल है, जमादी अव्वल की पहली और अक्टूबर की 13 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में कौमी मईशत को फ़रोग़ देने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों और डिवीजन्स को किफ़ायत शारी के इक़दामात पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। उम्मान के वज़ीर ख़ारिजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर दाखला ने इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की 10 बख्तर बंद गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले कर दी हैं। वजारत इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना तालिबान रजीम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का 3रा और आखिरी T20 बैनुल अक्वामी क्रिकेट मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में कौमी मईशत को तरक्की देने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वो इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों के तरक्याती इदारे समेडा के इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने समेडा को हिदायत की कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए कर्जों का मजमूई हजम 2028 तक 11 खरब रुपए से बढ़ाकर 22 खरब रुपए किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि पसमानदा इलाकों के लोगों को बाख्तियार बनाने से इन इलाकों से बड़े शहरों की तरफ नकल मकानी में कमी आएगी और मुल्क की मजमूई तरक्की को फरोग हासिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तमाम मुतालिका वजारतों और डिवीजन्स को किफ़ायत शारी और बजट के इक़दामात पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वो इस्लामाबाद में बजट और किफ़ायत शारी के इजाफी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे थे। कमेटी ने मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने पर जोर देते हुए बचत और किफायत शारी के इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म ने अखराजात महदूद रखने और सरकारी वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सीरत फलाही फंड कायम करने का ऐलान किया है, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 10 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने ये ऐलान इस्लामाबाद में 3रे बैनुल अक़वामी सीरत फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इसहाक़ डार ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरत तैयबा अक़वाम आलम के दरमियान इंसाफ, बाहमी एहतराम और हम आहंगी के फरोग़ के लिए रहनुमाई फराहम की तकरीब से खिताब करते हुए किया। इसहाक़ डार ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की सीरत तैयबा अक़वाम आलम के दरमियान इंसाफ, बाहमी

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM मनोरम रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: The music is ready.
2: This song is specially dedicated to you.
1: Cue.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: पेपा कार्ड है?
2: है तो फायदा है.
3: पेपा है
1: तो ऐड टू कार्ड है.
3: पेपा है
4: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले फायदे पे फायदा दे.
5: 101 FM.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं धक सा गया हूँ और चुप हो गया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल लार्ज बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अस्सलाम वालेकुम।

0: निकालो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक

अपने टेक आइडिया को इग्नाइट करें विद प्राइम मिनिस्टर स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए तक और कामयाब प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। अप्लाई बिफोर 26 अक्टूबर एट segms.ignite.org.pk। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: अपने टेक आइडिया को इग्नाइट करें विद प्राइम मिनिस्टर स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए तक और कामयाब प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। अप्लाई बिफोर 26 अक्टूबर एट segms.ignite.org.pk। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों में कौमी मईशत को फ़रोग देने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों और डिवीजन्स को किफ़ायतशारी के इक़दामात पर मौसर वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना तालिबान रजीम की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का 30 और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: है तो फायदा है, तो ऐड टू कार्ट है, इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
2: पेपा कार्ड है,
1: है तो फायदा है,
2: तो ऐड टू कार्ट है,
1: इन स्टोर ऑनलाइन एन एटीएम हर जगह चले, फायदे पे फायदा दे।
3: पेपाक आज ही अपने बैंक से बनवाए।
4: दिस इज FM 101
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भर में ज़्यादा महफूज और आफात का मुकाबला करने की मौसर सलाहियत के हामिल रिहायशी आबादियों और तामीराती ढांचे की तामीर के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने G24 ममालिक का इज्तमाई असर रसूख मजबूत बनाने और तरक्की पजीर मईशतों के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तौसीक की है। ओमान के वज़ीर ख़ारजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: We'll be right back.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 सुनने वाली तमाम खूबसूरत समातों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खैर आफियत से होंगे, जिंदगी के रंगों को खूब एंजॉय किया जा रहा होगा और वहां उस एंजॉयमेंट में एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपके अपने आरजे जुबैर शफीक आपके अपने प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज में, और लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ करता है हर मंगल की सुबह 11 से 1। करते हैं इस साथ में हम बहुत सारी बातचीत, मौज मस्ती प्लस हला गुला थ्रू योर मैसेजेस, थ्रू योर कमेंट्स, थ्रू योर कॉल्स, और बहुत सारी गॉसिप होती है आपके बारे में, हमारे बारे में, हाल अहवाल के बारे में, दुनियादारी के बारे में, और उन तमाम मामलात पे जो मामलात आप फेस कर रहे हैं, वो मामलात जो आप किसी से डिस्कस नहीं करते, वो मामलात जो आपको मजीद स्ट्रेस में लेकर जा रहे हैं। अक्टूबर है जी, और अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, जिस पे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की जाती है, डिफरेंट सेमिनार्स मनाए जाते हैं, अवेयरनेस दी जाती है, बताया जाता है कि ख्वातीन की सेहत के लिए ये एक कितना ज़रूरी जो आंसर है जिस पे वो गौर नहीं करती, और ये भी बताया जाता है कि वो क्या क्या प्रिकॉशंस करें अपनी लाइफ में। तो ऑब्वियसली आज हम बात करेंगे जी, 13th of October है आज, और हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ इसके साइन सिम्टम्स पे बात करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले आपको बताती चलूँ कि आपने हमारे से शामिल कैसे होना है थ्रू दी कॉमेंट्स। FM 101 के ऑफिशियल पेज पे मैं अपनी पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ, उस पर आपने कमेंट करना है और कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाना है। इसके साथ साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 4471 पर, और चार होगी। लेकिन इससे पहले आपको बताती चलूँ कि आपने हमारे साथ शामिल कैसे होना है थ्रू दी कमेंट्स। FM 101 के ऑफिशियल पेज पे मैं अपनी पोस्ट अपडेट कर चुकी हूँ, उस पर आपने कमेंट करना है और कमेंट करके हमारे साथ शामिल

होपफुली आप इंजॉय करेंगे. आप मुझे लाइव भी जो है मेरे अटेंड कर सकते सेशन कहने लगी थी. बंदा जैसा जो बोल रहा होता है ना फ्रीक्वेंटली वही चलता जाता है. आप मुझे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं ज़ुबैर शफीक के पेज से ZUBIUEE. लास्ट टाइम जो है ना वो मैं आई थी और मैं निकल गई थी लाइव पे और बहुत सारे लोगों ने कहा था जी आप क्यों ऐसे आपने किया. मैं कह तुसी आए नहीं ना मैं फिर बस चली गई. आज मुझे सुबह से मैसेजेस आ रहे थे कमेंट्स आ रहे थे सॉरी मैसेजेस ही आ रहे थे मेरे मैसेंजर पे कि प्लीज आज आप लाइव आइएगा. मैंने कहा चलें कोई नहीं. तो जनाब आप शामिल हो जाएं हमारे साथ थ्रू द कमेंट्स.

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर, लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज। और जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि आज हमने थोड़ी सी बात करनी है जी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, जिसमें सेमिनार्स करवाए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम थोड़ी सी बात करें, बिकॉज ज़रूरी है, एक ऐसा मसला जो कि वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है, शायद बढ़ता भी जा रहा है और इसकी अवेयरनेस भी होती जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे इस पर बात नहीं की जाती। ख़वातीन, बच्चियाँ, और ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो 30 से 40 के दरमियान और 30 से 50 के दरमियान की जो एक एज होती है, ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं केसेस। अब इसकी वजूहात में बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। अगर इसकी हम सिम्टम्स पे जाएं तो सिम्टम्स में अगेन वही कि आपको कोई भी अनहेल्दी ग्रोथ फील हो, इवन दो अपने बाजू में, अपने आपके अंडर आर्म में किसी किस्म की भी कोई गिल्टी फील हो, कोई अनहेल्दी ग्रोथ फील हो, तो आपने कंसल्टेंट के पास लाजमी जाना है या अपनी फैमिली में किसी के साथ रابطہ ज़रूर करना है, उसे ज़रूर बताना है कि ये मसला है। देखिए, लास्ट स्टेज तक पहुंचने से पहले ना बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, और फर्स्ट स्टेज से पहले भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जब भी कोई बीमारी आ रही होती है या जब भी कोई इस तरह का मसला होता है, तो वो सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो बहुत पहले से आ रहे होते हैं, लेकिन हम जो है ना वो उसको फील नहीं कर रहे होते या हम उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे होते। इसलिए बहुत सारी चीज़ें सीरियस लेने की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीरियस लेने की नहीं होती। बहुत सारे लोग सीरियस लेने के होते हैं, बहुत सारे लोग सीरियस लेने के नहीं होते। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है और किस चीज़ को प्रायोरिटी पे नहीं रखना। हेल्थ सबसे पहले है। अगर आप हेल्थ की बात करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो भी अक्टूबर में ही मनाया गया, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, जिसमें आप अपनी दिमागी सेहत पे बात करते हैं, अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के हवाले से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ये ज़िंदगी में चलती हैं। ज़िंदगी में सबसे पहली बात जो है वो आपकी सेहत है। एक सेहतमंद जिस्म और एक सेहतमंद दिमाग दोनों ज़रूरी हैं एक ज़िंदा इंसान के लिए, ज़िंदगी को हसीन बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। तो इस पे भी हमने थोड़ी सी बात करनी है, और मुझे लाइव पे ज्वाइन करना है, आपने ज़ुबिया शफीक के पेज पे मैं लाइव आपको मिल जाऊंगी। इसके साथ साथ आप मुझे जो है एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे लाजमी तौर पे कमेंट करना है। देखिए, लाइव पे ज्वाइन करना एक अलहदा मसला है, और एफएम 101 के पेज पे जो है ना वो मुझे आके मैसेज कमेंट करना वो एक अलग मसला है। ये पहले है, यानी कि आपने जो है ना वो ये जो मैसेज करना है ना, ओके। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास 101 के पेज पे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक गाना लगाना है और फिर वापस आना है, फिर आके आपसे करनी है बात। आज का टॉपिक वैसे बड़ा मजे का है। आज मैंने ना एक ख्वाब देखा सुबह सुबह, लाइक 4 बजे मेरी आंख खुली इस ख्वाब से, मैं बड़ी हैप्पी उठी, यू नो, बड़ी हैप्पी

ख्वाब क्या था वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी। एक छोटी सी बात, जो आप टॉपिक समझ लो कि हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता होगा। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ आसिम अज़हर को, होपफुली जो गाना मैंने सोचा है वही हो। अनवर रज़ा हमारे साथ जी, नाइस पोस्ट। अच्छा जी, पोस्ट नहीं है अनवर रज़ा, मैं लाइव आई हुई हूँ। ओके आसिम अज़हर के अच्छे गाने चल रहे हैं ना आजकल।

जी वेलकम बैक, दिस इज़ एफएम 101.5 लाइव स्टूडियोस में। सुबह शफीक 11:40 हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो कुछ ख्वाबों के हवाले से, कुछ वो ख्वाब जो आप ख्वाब में देखते हैं और कुछ वो ख्वाब जो आप नींद वाली आंखों में देखते हैं, सोए हुए देखते हैं, और कुछ वो ख्वाब जो आप जागती आंखों से देखते हैं। उन ख्वाबों पर हम बात कर रहे हैं, वो वाले ख्वाब कौन से हैं, उन ख्वाबों पर आप यकीन रखते हैं। बार दफ़ा कुछ ऐसे ख्वाब आते हैं जो आपको दिल करता है कि बार बार आए। बार दफ़ा कुछ ऐसे ख्वाब होते हैं जो आपका दिल करता है कि यार ऐसा ख्वाब मुझे कभी ख्वाब में भी ना आए। यानी कि वो कहते हैं कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं कि ख्वाब में भी अगर ये आई तो हम डर जाएंगे। और बार दफ़ा हम उन ख्वाबों को जब देखते हैं फिर हम सहमे सहमे रहते हैं ऑल द टाइम। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में देखते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि हम उस पर्सन से मिलें। किसी की याद आ रही होती है या कोई दूर होता है हमसे, हम उससे फ़ोन पे बात करते हैं जिससे मिलना पॉसिबल नहीं होता। बस दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप नहीं चाह रहे होते लेकिन वो ख्वाब में आ जाती हैं। तो फिर आप सुधर जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, कंवल कह रही हैं कि जी किधर गई थी आप कंवल, ये पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं समझ आई ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए मैं मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा जो है ना वो कहीं ना कहीं पॉज लेना पड़ेगा।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से ख़बरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान भर में ज़्यादा महफूज और आफात का मुकाबला करने की मौसर सलाहियत की हामिल कम्यूनिटीज़ की तामीर के अज़्म का अयादा किया है। वज़ीर ख़जाना ने G24 ममालिक का इज्तमाई असर रसूख मजबूत बनाने और तरक्की पजीर मईशतों के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तौसीक की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर ने कहा है कि हुकूमत डिजिटल नेशन पाकिस्तान के एजेंडे को भरपूर तरीके से आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 बैन अल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: This is FM.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबैर शफीक। आपका अपना प्रोग्राम जो लेडीज़ लाउंज, और लेडीज़ लाउंज में काफ़ी ताखीर हो गई आज, काफ़ी ताखीर हो गई, होता है ना कभी कभी ऐसा। लेकिन लाइव पे हमें ज्वाइन किया हुआ है सजाद अली लाडला साहब ने, और टिनी स्मोसाज की बात हो रही है। टिनी स्मोसाज 10 रुपए वाला समोसा, 10 रुपए के तुरतरे निकला था ना, 10 रुपए के तुरतरे, 10 रुपए के समोसाज भी निकल आए हैं। होते थे पहले जब हम स्कूल में जाते थे, 5 रुपए का समोसा हुआ करता था तब। अच्छा जी, आप हमें लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। कुछ पैगामात आपके मेरे सामने मौजूद हैं, उनको मैं साथ में शामिल करूँगी। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो ख्वाब आते हैं, क्या आप इन पर यकीन रखते हैं? क्या कभी कोई ख्वाब आ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा और हकीकत में कहीं ऐसा ना हो जाए, या फिर आप ख्वाबों को ख्वाबों की हद तक रहने देते हैं, या फिर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको आप हकीकत बनाना चाहते हैं और उसके लिए फिर आप काफ़ी मेहनत करते हैं, कभी ख्वाबों से डर जाते हैं? ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। कभी ख्वाब जिनको आप हकीकत बनाना चाहते हैं और उसके लिए फिर आप काफी मेहनत करते हैं, कभी ख्वाबों से डर जाते हैं? ये भी मुझे जरूर बताइएगा।

पहुंच गया आपका मिस यू। अच्छा सजाद ने आज पर बड़े लोगों को मिस यू लिख दिया है आगे ओके इजाज अरमान हैं, बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर डोगर हैं, उमर फ्रॉम शेखुपुर से हैं। अच्छा नज़ीर डोगर की आईडी पे उमर हैं, शेखुपुरा से। नाइस शो कह रहे हैं, मुझे जब भी ख्वाब आते हैं वो पूरे हो जाते हैं। अल्फाज सॉन्ग लगा दें। ओके अल्फाज मैं लगाती हूँ थोड़ी देर में। हमें आई थी कॉल बहाउद्दीन की, तो बहाउद्दीन क्या कह रहे थे कि ज़िंदगी थोड़ी सी परेशान चल रही है। मैंने कहा कोई नहीं, परेशानियाँ भी जो होती हैं ना वो एक स्ट्रेनर होती हैं, फ़िल्टर होती हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को फिल्ट्रेट कर देती हैं, अच्छे को बुरे से, बुरे को अच्छे से अलग कर देती हैं। यानी कि खड़े खोटी की जो पहचान है ना वो इन परेशानियों की वजह से आती है। इसलिए ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ नहीं होंगी ना आप ज़िंदगी में आगे चलना नहीं सीख पाएंगे, यू नो। इसलिए परेशानियों से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि ये जो परेशानी आई है अभी ये किस वजह से आई है। अगर तो अच्छा दो चीज़ें हैं ना कि अगर कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप और आपकी लगन जो है वो एक उस साइड पे लग गई है कि आप नमाज पढ़ने लग पड़े हैं, आप अल्लाह को याद करने लग पड़े हैं, आप जिक्र करने लग पड़े हैं, यानी कि आपकी लो जो है वो अल्लाह की तरफ लग गई है, तो फिर वो समझो कि वो आपकी जो परेशानी है ना वो कहीं कुछ बेहतरी के लिए आई है, वो आपको आगे आने वाली ज़िंदगी में एक नए मोड़ के लिए आई है। और अगर वो कहते हैं ना कि हम आपकी आजमाइश होती है, वो कहते हैं कि किसी की, हम अक्सर कहते हैं कि किसी की जो परेशानी है ना वो हमें क्या लगता है कि उसके गुनाहों की सज़ा है, और अपनी परेशानी हम कहते हैं कि ये आजमाइश है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपने साथ देखनी होती है, ख़ुद भी देखनी होती है कि क्या आप परेशानी में बहुत ज़्यादा जो हैं वो फेंट हो रहे हैं, आप दिमागी तौर पर रिलैक्स नहीं रह पा रहे, या आप किसी का बुरा सोचने लग पड़े हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली वो आपके किसी गुनाह की सज़ा के तौर पे ही आई है। एक मज़े की बात बताऊँ, चाहे अच्छा ये सज्जाद का मैं मैसेज पढ़ चुकी। कमलनाथ कहती है मौत पर हक है जब आ जाए हमें क्या, लेकिन ज़िंदगी हम तेरी रफ्तार से डर जाते हैं। ओए होए अहमद नदीम कासमी साहब, अच्छी बात की। सजाद कहते हैं कमलनाथ साहिबा को मेरा सलाम। आपका सलाम पहुंच गया सजाद। और दूसरा जो है ना वो आपने क्या कहा था, आपको भी सलाम दिया था इमरजा चौधरी साहब ने, एक गाना भी लगाया था, अभी मैं ढूंढती हूँ ना वो गाना फिर लगाऊंगी। हाय कमल कहती हैं बारहा खुद पे मैं हैरान बहुत होता हूँ, कोई है मुझ में जो बिल्कुल है जुदा, बिल्कुल ही जुदा है मुझसे। वाह अच्छी बात, अच्छी शायरी। कभी कभी मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं 10 बजे के बाद का प्रोग्राम कर रही हूँ, इतनी पोइट्री भेज दी हो तुसी। सतपिस्मला जी आयनू बहुत शुक्रिया जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से आप हमें सुनती हैं। ओएमजी यानी ख्वाब ही देख लिया, अल्लाह पूरा करे। हाँ ख्वाब मैंने देखा, वो मैं आपको एंड में जाते हुए बताऊंगी, बड़ा अच्छा ख्वाब था। मैं ऐसा जागी उस ख्वाब से, सुबह से सोई नहीं हूँ, 4 बजे की आँख खुली हुई है। बाज़ दफ़ा इंसान सोता नहीं है ना, दोबारा इंसान कहता है कि दो चीज़ें होती हैं ना, एक होता है कि आप कुछ ऐसा देख लेते हैं, कोई ऐसा डरावना ख्वाब होता है या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है जो आप कहते हैं कि अब दोबारा नहीं सोना, कहीं वो ख्वाब दोबारा ना आ जाए। बाज़ दफ़ा आप सोना चाह रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं नहीं दोबारा आना चाहिए ऐसा ख्वाब। कुछ ख्वाब सिक्वेंस वाइज, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ख्वाब ना सिक्वेंस के साथ आते हैं। बाज़ दफ़ा मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई ख्वाब देख रही है, आँख खुल गई है, जब मैं सोई हूँ दोबारा वहीं से, ऐसे जैसे रीटेलीकास्ट हो रहा है, वहाँ से अगला पन्ना शुरू हो जाता है। अच्छा जी आप मुझे लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके आप शामिल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ आप ये करेंगे जुबिया शफीक के पेज पे लाइव हूँ मैं, उस पर मुझे ज्वाइन करेंगे। शरारती बच्चा हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यहाँ भी गाना चलाती हूँ फिर वापस आती हूँ, फिर ये जो बहुत सारी आप कॉल्स कर रहे हैं ना, कोशिश करते हैं आज थोड़ी कॉल लूँगी, 2-3 लूँगी, लेकिन मैसेजेस आपके ज़्यादा पढ़ूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारा, चलिए 2-3 से थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, डिपेंड करता है मूड पर। आप तब तक कॉमेंट करें और ये गाना सुने, स्टिक अराउंड।

वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी जुबैर शफीक। आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ हुआ करता है हर मंगल की सुबह। ग्यारह से एक, और इस आत में करते हैं हम बहुत सारी बातचीत। और आज मैं बात कर रही हूँ ख्वाबों के हवाले से कि आपको अगर कोई ख्वाब आए तो वो ख्वाब क्या हकीकत हो जाता है या नहीं होता। और इसके साथ साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि ये जो ख्वाब होते हैं, ये जो ख्वाबों की दुनिया होती है, इस पे आप यकीन रखते हैं या नहीं रखते। जुबिया जी एक बात कहूँ, नहीं आपको एक सॉन्ग प्ले कर दें स्पेशली रजा। अच्छा ये सही काम है, रजा साहब का कॉल आया, कहते हैं सज्जाद के नाम कर दें, आपका कॉल आया रजा साहब के नाम कर दें। मेरा दिल करता है दोनों की फरमाइश ना मानूं, अपनी पसंद का कोई एक सॉन्ग लगा दूं आप दोनों के नाम। क्या ख्याल है आपका, सही है ना ये बात।

0: Karthi ji. आप मुझे लाइव पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मोनो वन के ऑफिशियल पेज पे हम जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट करेंगे और कमेंट करके शामिल हो जाएंगे. 04221100101 हमारा डायलिंग नंबर है, आप इस पे आएंगे और आके हमें कॉल करेंगे. पहले कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: अजी मोहम्मद अक्षर बोल रहा, शाजी लात कटी है.
0: अच्छा जी, अर्शद साहब मुझे ये बताइएगा, ख्वाब आते हैं आपको?
1: ख्वाब आते बजे जब आंखें खुली होती हैं, आते को मेरा गला दबा रहा है मुझे.
0: आंखें खुली में ख्वाब देखते हैं कि कोई आपका गला दबा रहा है, तो फिर गला दबा जाता है कोई?
1: बट जब टांग आती है, 6 महीने हो गया, उस वक्त मुझे ये ख्वाब आते रहते हैं.
0: चलिए अल्लाह पाक आसानियां करे. बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, थैंक यू सो मच. पूरी बात सुनाए आप.
1: आपका आपके शो बहुत अच्छे जाता है, आप बहुत अच्छा काम करती हो. एक पैगाम छोटा देना चाहता हूँ वजीर पंजाब मरी नवाज को. दे दू?
0: जी जी
1: दे दू.
0: जिन्ना पूछ रहे हो ना तुसी ना ही दवो. मैं फिर करती हूँ कॉल, फिर आप पैगाम दे दीजिएगा.
1: अल्लाह ताला ने उसको भेजा हमारी खिदमत करने के लिए.
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल.
0: आपकी पैगाम, ये आपका पैगाम पहुंच गया सर, बहुत शुक्रिया.
1: मरीन नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, उसके उसके एक स्किन का काम है, उसको अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती, आपको भी जिंदगी तंदुरुस्ती. अल्लाह ताला दुआ करें, मैं मेरा बाद में नाम लेके मेरे दुआ दें. बैरक भाई दो बोल रखी है शाहबाद से.
0: अर्शद साहब थे हमारे साथ, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे और वो उनको डायबिटीज है. अच्छा, डायबिटीज की जहाँ पे हम बात करते हैं ना, साथ में हमें थोड़ा सा लिंक पे रहना होता है कि अगर खवातीन के हवाले से हम बात करते हैं, खवातीन की घरदारी के हवाले से बात करते हैं, तो घर में हम अक्सर बात करते हैं कि आपको ये जो आप कुकिंग करते हैं ना, तो कुकिंग में बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना खवातीन का एक काम होता है, क्योंकि मर्द हजरात तो बेचारे बाहर से जब घर आते हैं तो घर में जो पका होता है वो उन्होंने खाना होता है. इसलिए जब आप कुकिंग करते हैं, कोई स्वीट बना रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें इतना ज़्यादा उसको मीठा ना कर दें. चाय अगर आप बनाते हैं तो चाय को थोड़ा कम मीठे में बनाएं, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ जो है ना वो इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और डायबिटीज़ जो है ना मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो बॉर्डर लाइन पर होते हैं, और बॉर्डर लाइन पर जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस हद से ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वर्कआउट नहीं करते, उसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मीठा खाने की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, और बाहर का हम खाना बहुत खाते हैं, फ्रीजी आइटम बहुत ज़्यादा हम खा रहे होते हैं. हमने अपने घरों में बच्चों को जो दोपहर में लंच देने होते हैं ना, तो अम्माएँ जो हैं वो अब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह सेंसिटिव हो गई हैं कि वो कहती हैं कि भाई क्या करें. उनका एक सबसे बड़ा ये मसला होता है, वो कहती हैं कि बच्चे जो है ना वो लंच में लेकर नहीं जाते कोई चीज़, पराठा अंडा खाते नहीं हैं. अगर दोबारा डेली रूटीन में हम उनको सैंडविचेस दे नहीं सकते, तो फिर हम डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो बेकरी आइटम्स होती है ना उनको हम बनाते हैं और वो दे देते हैं. अच्छा, जब हम बेकरी आइटम्स की बात करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को अगर क्या पसंद है. अब ऐसा होता है कि फ्राइज़ के भी ना पैकेट बाज़ार से लाकर फ्रीजी जो पैकेट होते हैं वो अपने घर में रखे होते हैं. मतलब फ्राइज़ बनाना कितना कुछ टाइम का काम होता है. एक बच्चा अगर आपका लेकर जा रहा है लंच में, तो कितने आलूओं की फ़्राइज़ होगी? 2-3 हद 4. उन 4 जो पोटैटो होते हैं उनकी कटिंग में कितना टाइम लगता है? अगर उसने सुबह लेकर जाना है तो आप रात को कटिंग करके उसको लाइट सा बॉईल करके आप फ्रिज में रख दो, उनके ऊपर वो लगा के कोई भी जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं आप लगाएं और उसको मसाला लगा के रख दें, सुबह को आप उसको फ्राई कर लें. तो वो एक छोटा सा काम. मसला ये होता है कि हम ना अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं मोबाइल के साथ, अपने मामलात के साथ, कि हम बच्चों की उन चीज़ों को, उन आसाइशों को कहीं नज़रअंदाज करके उनको आर्टिफिशियल चीज़ों पे ले आए हैं, तो वो चीज़ें खुद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप जब 10 साल के बच्चे की उस तरह से परवरिश या 8 साल के बच्चे की उस तरह से परवरिश नहीं करेंगे ना, तो 16 साल 17 साल में वो आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। फिर हम कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा, यानी कि आपने अगर 7 साल में 6 साल में 5 साल में उसकी बात नहीं सुनी तो फिर वो आपकी कहाँ से सुनेगा, या अगर आपने बहुत ज़्यादा उसकी बात सुनी है फिर भी वो आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए जो है ना वो एक दरमियान में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतवाजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की कौन सी बात आपको सुननी समझनी है और कौन सी नहीं समझनी। बाज़ माँ बाप जो हैं वालिदैन की अगर हम बात करें, बाज़ वालिदैन जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर देते हैं कि बच्चा जो है ना वो बागी हो जाता है, वो कहता है बस मैं इधर से निकलूँ किसी तरह से। उसमें क्या मामला होता है, उसमें ये होता है कि वो बाहर दोस्त बनाना शुरू कर देता है, वो ज़्यादा टाइम बाहर रहना शुरू हो जाता है, उसका ख्याल होता है कि मैं जो है ना वो जनाब हॉस्टल में रहूं, हॉस्टलाइज हो जाऊं। जब आप उसके दोस्त नहीं बनेंगे ना, माँ बाप की अगर हम बात करें, जब आप दोनों में से कोई एक अपने बच्चे का दोस्त नहीं बनेगा ना, फिर वो दोस्तियाँ बाहर ही ढूंढेगा या ढूंढेगी। ये बात जो है ना वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कुछ पैगाम मेरे सामने हैं, उनको भी शामिल करती हैं। अच्छा, आज का मुझे ख्वाब आ नहीं रहे, अगर आते हैं तो बस बुरे आते हैं। चलो अल्लाह पाक आसानियाँ करें आपके लिए भी। और सदका कहते हैं जब कोई ख्वाब आए ना तो इतना ज़्यादा खैर उसको वो सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन सदका फिर भी दे देना चाहिए। सदका बहुत सारी बलाओं को टालता है। अगर आपको लगता है कि मेरे ख्वाब सच हो जाते हैं, कोई आपने बुरा ख्वाब देखा, तो फिर सदका दे दें। अगर सदका आप दे देते हैं ना तो फिर वो ख्वाब हकीकत नहीं बनता, डेफिनेटली। 04221100101। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: कमल कैसी हैं आप?
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
0: और
2: आपको सुन के तो और बेहतर हो गई। हाँ आते हैं ख्वाब, मुझे बहुत आते हैं।
0: अच्छा, तो फिर वो ख्वाब हकीकत भी होते हैं?
2: बिल्कुल होते हैं, और मेरे अच्छे बुरे दोनों ख्वाब हो जाते हैं। और मेरी जिंदगी में अक्सर जो आने वाले लम्हात होते हैं ना, वो मुझे पहले उनकी झलक दिखाई दे देती है, फिर बाद में जब वो मेरे साथ वाकयात होते हैं फिर मैं कहती हूँ ना ये मैंने कहीं देखा हुआ है, फिर मुझे याद आता है। हाँ मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है।
0: अच्छा जी, ठीक हो गया। और क्या कहना चाहेंगे?
2: और मैं कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा शो है, और शो करने वाली भी बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी लग रही है।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत सलाम, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ, शक्ति ग्रुप वालों को और आपके लिए भी खुशी दुआ, सदा खुश और आबाद रहें, और अच्छे अच्छे ख्वाब देखें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छे ख्वाब आएंगे।
0: वैसे हमारी जो मैं तो आज बड़ी खुश हूँ।
2: अच्छा,
0: मैंने तो बड़ा अच्छा ख्वाब देखा आज।
2: चलो अल्लाह करे आपका ख्वाब पूरा हो। और वैसे कहते हैं कि अगर आप अच्छा सोच के सोते हैं और अल्लाह को याद करके सोते हैं तो अक्सर ज्यादातर ख्वाब जो होते हैं ना वो अच्छे ही आते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है ख्वाब। या तो फिर वो आने वाली कुछ, बाज़ दफा होता है कि आप सोच रहे होते हैं सारा दिन।
2: यही होता है, ये हाँ हो जाता है। हमारे सारा दिन की जो रूटीन होती है वो कभी कभी हमारे जहन में इस तरह रात को रिवाइंड होती रहती है।
0: बाज दफा मेरे साथ तो ये होता है, मैं किसी से मेरी लड़ाई हुई हो तो मैं ख्वाब में भी उससे लड़ती रहती हूँ सारी रात।
2: इसका मतलब है फिर आप उसके बदले भी खूब लेती हैं ख्वाब में। जैसे हम तो मेरे हाथ खाया जाना ना,
0: ख्वाब में भी लड़ती रहती हूँ। जब भी लास्ट टाइम मेरी एक फ्रेंड से मेरी लड़ाई हुई और मैंने उसे कहा, मैंने कहा चलो दफा हो जो निकलो।
2: जो आपने वैसे हकीकत में उसको नहीं सुनाया फिर ख्वाब में खूब बस बोला हिसाब बराबर किए होंगे।
0: बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच।
2: चलो ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज जी। आजकल शादियों का सीजन है, फिर हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं उन तमाम के लिए जिनकी शादियां होने वाली हैं, उन तमाम के लिए जिनकी अभी शादियां हुई हैं, उन तमाम के लिए जो शादी करना चाह रहे हैं। सजाद लाडला आपके लिए भी। स्टिक अराउंड जी।

0: Welcome back. This is FM 101 Lahore Live Studio. It's me, Zubia Shafiq, 042-111-0101. Assalamu alaikum, ji.
1: Waalaikum salam and assalamu alaikum, 101. Kaisa bhi sunne walon ko meri taraf se hasta muskurata hua. Assalamu alaikum. Zubia Shafiq, kaisi hain aap? Theek
0: ho? Main theek, Shamima aap, aap batayiyega.
1: Allah ka shukr, Allah ka shukr. Alhamdulillah. मैं बैठी हूँ और आपका शो सुन रही हूँ. बहुत
0: तो आप कह रही थी कि आपको इतनी सर्दी लग रही है कि आपने कहा कि कंबल.
1: हाँ हाँ ना, मैं बल्कि कह रही थी कि रुपया जी देखो, रात को सर्दी ज्यादा लग, तकरीबन 2 बजे के बाद इतनी ठंड लगती है. बहुत पूरा दिन नहीं इतनी होती वो सर्दी ठंड, क्योंकि धूप होती है ना, धूप निकल आती है तो रात को जो है ना 2 बजे के बाद सर्दी हो जाती है. तो मैं तो कह रही थी कि मुझे ना कंबल निकाल के दो, तो मैं कंबल लूंगी, मुझे इतनी ठंड लग गई है.
0: तो शमीमा भी ख्वाब देखती हैं?
1: बिल्कुल, मैं देखती हूँ ख्वाब. अभी कल की बात है, मैं आपको नई नई ताज़ी ताज़ी ख्वाब की बात बताऊँ. कल हम लोग ना बैठे हुए तो मेरा बेटा सऊदी अरब में, रियाद शहर है ना जो, वहाँ पर तो वो ना वहाँ पर आपने भी सुना कि हालात कुछ बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है सऊदी अरब के. तो हम लोग आपने आपस में कह रहे थे उसको, फिर बुला लेते हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान आ जा तू. तो आप यकीन करो कि रात को वो भी मेरी ख्वाब है, मेरी ख्वाब में वो पाकिस्तान आ भी गया. हाँ, तो ये जो ख्वाब ख्याल होते हैं ना, ये जो कुछ हम सारा दिन सोचते हैं हमारे जहन में होता है, दिमाग में, वही सिर्फ ख्वाबों की सूरत में ना इंसान को आते हैं.
0: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है.
1: तो ये कहो कि वो गाना भी है एक, क्या के तेरे ख्वाब ते ख्याल रहंदे मेरे नाल नाल, पाया नहीं हूँ फेरा कभी पूछिया नहीं मेरा हाल.
0: तो गाने की,
1: गाने की फरमाइश मैं नहीं करूँगी फिर. हेलो,
0: मैं बिना फरमाइश के लगा दूंगी जी.
1: चले ठीक है, ठीक है. और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम. और रुबिया जी बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हाँ, मैं ये कहूँगी कि आप कल ही ज़्यादा से ज़्यादा लें, गाने चाहे ना भी प्ले हो कोई बात नहीं.
0: चलें,
1: क्योंकि सबकी होता है, ख्वाहिश होती है कि आपके साथ बात हो जाए सबकी, सभी कॉलरों की.
0: चलें, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ. बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया. ये हमारे साथ ही शमीम आप ही, और कहती हैं कॉल ज़्यादा लें. ओके, आई ट्राई. कहते हैं जी, अच्छा क्या सलमान जायद कहते हैं आपकी और मेरी फील्ड सेम है, शरारती बच्चा कहते हैं तो फिर क्या फील्ड चेंज कर ली जाए. बहुत शरारती हो तुम लड़के. अच्छा, 101 के पेज पे कुछ पैगाम आते हैं, उनको शामिल करते हैं. बिस्मा आजम हमारे साथ हैं. मैं हेयर ऑयल रेडी कर रही हूँ अब जब मैं गंजी हो गई हूँ. क्या बात है मेरी. हाँ, तब भी बंदा करता है जब गंजा हो जाता है. बिस्मा कहती हैं, कैसी हैं माय स्वीट आपी? मैं ठीक हूँ जी. और कौन है हमारे साथ? हमारे साथ जी नबील शेख हैं. अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, शो गुड. ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम जी.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. रिमशा कैसी हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक. आप बताइए, आप कैसी हैं?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह. रिमशा,
2: मुझे पता है आप स्वीट हैं, क्यूट हैं, प्यारी हैं.
0: थैंक यू, जज़ाकल्लाह.
2: आप कुछ कहने लगी थी.
0: ये मैंने कहना था कि प्यारी हूँ.
2: जी जी, मुझे पता है आप स्वीट हैं, क्यूट हैं, प्यारी हैं, ब्यूटीफुल हैं.
0: हाँ हाँ, बिल्कुल वही वही.
2: हाय, मेरी आपकी शर्मा आ गई.
0: शर्मा आ गई. अच्छा रिमशा, मुझे ये बताओ कि ख्वाब देखती हो?
2: जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा.
0: अच्छा, तो ख्वाब पूरे होते हैं?
2: बिल्कुल होते हैं.
0: ख्वाबों पे यकीन रखती हो?
2: मैं कुछ कुछ ख्वाबों पे यकीन रखती हूँ, कुछ पे नहीं रखती. वैसे आप ही ऐसा, मैं ऐसा है कि जो ख्वाब पूरा नहीं होता ना, वो बार बार आता है, मुसलसल आता है.
0: और कोई ऐसा ख्वाब जो याद रह गया हो, नहीं भूले?
2: मुझे काफी दिनों से ना एक तो मतलब जो है ना काफी डरावना ख्वाब ही आ रहा है.
0: अच्छा.
2: वो मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, लेकिन उसने मुझे नचा के रखा हुआ है. मुझे समझ नहीं आ रही वो ख्वाब मुझे क्यों मुसलसल आ रहा है, लेकिन उस ख्वाब में मुसलसल मेरी जो बहना बाबा ही आ रहे हैं.
0: चलिए, उनके लिए पढ़ा करो ना ज्यादा ज्यादा.
2: नहीं नहीं, उनके लिए मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं ना वो जब मेरे ख्वाब में आते हैं, जब मैं जब ज्यादा परेशान हूँ, ज्यादा मतलब मैं दुखी हूँ ना अंदर से, तो ही वो मेरे ख्वाब में आते हैं, वैसे नहीं आते. तो मुसलसल जो है ना ख्वाब मुझे आते हैं, और ऐसा है आप ही मेरे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। मैं अगर मुझे कोई खुशी का ख्वाब आया हो ना आप ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब मेरा पूरा होता है, और अगर मेरे साथ कोई बुरा होने वाला होता है ना तो वो मुझे ख्वाब में नजर आ जाता है।
0: ओके ओके, चलो अल्लाह पाक आसानियां
2: करे। ऐसा मेरे साथ होता है।
0: और कुछ कहोगी? आमीन,
2: और आप भी इसी तरह हंसती मुस्कुराती रही, मेरी क्यों उठी आती ब्यूटीफुल आप ही, मुझे बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा आपको वाकई। आप शर्मा की वैसे आप माशाल्लाह प्यारी हैं, आपकी तारीफ बनती है, आपकी आवाज, आपका शो, आपका अंदाज जो है ना वो बहुत अच्छा है।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: आपने जो है ना मतलब मंगल का शो कर लिया ना, मैं तो वाकई में आप जैसे गुम हो गई ना पीए वाले शो से, मैं काफी घबरा गई थी, मैंने हाय मेरी जूबिया भी कितने गई,
0: गुआच गई
2: अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा
0: जी, गवाच गई। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? मैं आपको ऑल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की हाँ? अच्छा जी, सलमान बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा एक गाना वैसे मैंने इसको क्यों किया है उसको मैं लगाऊंगी, लेकिन एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, आप जी क्या हाल है? ठीक ठाक है
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन हमारे साथ, कहाँ से?
3: अमानत गार्ड बात कर रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ लाहौर से।
0: अमानत साहब क्या कहिएगा, ख्वाब देखते हैं?
3: ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ, लेकिन हमेशा दिन में भी ख्वाब नजर आते हैं, रात को भी नजर आते हैं। पहले आप ही आई थी, कह रहे हमेशा ना अच्छा ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे ख्वाब आएंगे। बाद में अगर कोई अच्छा सोच रखेंगे तो गलत ख्वाब आएंगे। बचपन में जब थे तो उस वक्त ये था कि अच्छे अच्छे ख्वाब आते, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छा नंबर आए। तो अब बच्चे यही होता है कि मेरे बेटे अच्छे नंबर लेके आए, बच्ची अच्छे नंबर लेके आए, तो ख्वाब तो आते। तो बाकी दिन में जो ख्वाब देखे जाते तो रात के जो ख्वाब होते हैं उसमें हमेशा ना अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो अल्लाह का नाम लेके नमाज पढ़ के सोया करेंगे, इंशाल्लाह अच्छे ख्वाब आएंगे।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
3: तो बाकी बच्चों के हवाले से आप बात कर रही थी, मेरी माशाल्लाह एक बेटी एक बेटा, दोनों के साथ में ना दोस्ताना माहौल है। तो बच्चों के साथ हमेशा दोस्ताना माहौल होना चाहिए, मैंने बेगम को कहा बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखा करे। बात जाके देखिए स्कूल में जाते हैं, कोई ब्लैकमेल करता है, कोई ऐसी चीज होती है, बच्चों को कहना कि वैसे दोस्ताना माहौल हो ना वो घबराएंगे नहीं, बच्चे आपके आगे जाएंगे। अगर दोस्ताना माहौल नहीं होगा तो बच्चे से सही नहीं रहेंगे।
0: बाकी
3: जी जी संस्कृत आपके जितने मेहमान है सबको सामने को सबका जिंदा।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।

जी, ख्वाब की बात हम कर रहे हैं, ख्वाबों ख्यालों में बात कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप नहीं सोचना चाहते, वो हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आप ख्वाब में भी नहीं देखना चाहते, कुछ ऐसे भी ख्वाब होते हैं ना। तो हमारे साथ लाइव पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे भी जाएंगे, वहाँ पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पर कॉमेंट करेंगे और कॉमेंट करके शामिल हो जाएंगे। मोहम्मद नईम टेलर हमारे साथ हैं, 101 की पूरी टीम को सलाम कह रहे हैं, कहते हैं क्या हाल है आपका। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ भी एक गाने की तरफ बढ़ रही हूँ, और ये गाना जो है ना वो मैं सज्जाद अली की तरफ से अमरजा चौधरी को, और अमरजा चौधरी की तरफ से जो है ना वो सज्जाद को लगा रही हूँ। मैंने कहा ना कि आप दोनों ने अलहदा अलहदा मुझे ये जो गाने बता दिए हैं ना, मैं अब अपनी पसंद ही लगाऊंगी। दिस इज़ फॉर यू।

0: अच्छा सज्जाद, कहाँ जा रहे हो? अभी 15 मिनट हैं लड़के, कॉल की ट्राई करो ना, 0422111001. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी.
0: शहजाद साहब, यहाँ बच्चे रो रहे हैं कि हमारी कॉल नहीं मिल रही. आपकी कॉल कैसे मिल जाती है?
1: बच्चे रो रहे हैं, मैं तो हंस रहा हूँ ना.
0: जी क्या,
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जी, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा टॉपिक आपका जी, बहुत प्यारी बातें करती है जी. खाद के बारे में कह रहे हैं ना, तो खाद तो जोर सी मर्जी आ जाती, मेरी दूसरी शादी हो गई थी खाद में.
0: फिर पहली बेगम ने कुटा नहीं आपको?
1: ये मैं आपको बताता हूँ ना, जब वो दोनों लड़िया, क्या बात है, फिर जो
0: बर्तन
1: वो ही तो कह दिया ना, कोटो आपस च लड़ पी है ना, जेडी दूसरी शादी की थी.
0: अच्छा,
1: तो फिर बर्तन सारे भजे टूटे, एक जग मेरे सिर च बजिया, तो मेनू होश आई, मैं उठ के बह गया की होला. फिर यही गल जी कि कचार सुची मुची बीवी ना लड़ाई हो पी, मिर्चा तेल पाती हांडी चो.
0: हाँ.
1: ही फिर खाबा याद आ गई, खाब आ गई, हकीकत च बदल गई, हकीकत च जग आ बजिया. तो माशाल्लाह जी क्या बात. देखो जी खाबे जो हमारे दिन में सारी दिहाड़ी जो चलता रहता है ना, वो ही रात को खाब में जो आ जाता है, ज्यादातर वो ही बातें आती है.
0: ठीक है,
1: तो खाब देखना अच्छी बात है, अच्छी की तरफ जाएंगे तो अच्छा खाब हम देखेंगे, तो वो उसकी तबीर भी मिल जाएगी हमें अच्छी.
0: ठीक है, ठीक है
1: जी. तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जी, बहुत
0: थैंक यू.
1: और सबको मेरा सलाम जी, अल्लाह.
0: शहजाद साहब थे हमारे साथ. सजाद कहते हैं कि झूठी मूठी का नाराज हो गया हूँ, बट प्लीज जिंदगी रही ना रहे, दुआ में याद रखिएगा जरूर जरूर. अपनी एनी बुला रही, इसलिए टीसी अम्मी बुला रही हैं. अच्छा जी, ओके बाय बाय, सिया. शरारती बच्चा कहते हैं चले मैं मिस कॉल लेता हूँ, ठीक हो गया. कमल दास कहती है शहजाद अंकल की कॉल तो ठा करके मिल जाती है ना, इन्होंने कोई ये कोई करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अच्छा जी, आपका शो मिस कर रहा 15 मिनट का जो रहेगा. ओके कोई बात नहीं, होता है कभी कभी. अच्छा बाय बाय. अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ख्वाबों के हवाले से. आप मुझे बता रहे हैं कि ख्वाब जो है वो ख्वाबों की ताबीर, कभी होता है ना कुछ लोग बड़े क्यूरियस होते हैं ख्वाबों की ताबीर के मामले में, वो ख्वाबों की ताबीर जानना चाहते हैं. कुछ लोगों को ख्वाब आ जाता है, वो फिर हर मुझे ये ख्वाब आया इसका भला क्या मतलब होगा. शरारती कहते हैं कि जी उन्होंने हैक लगाया हुआ है, वही हैक नहीं मुझे समझ आ रही वो कौन सा हैक है. अस्सलाम वालेकुम जी. ये बताएं आपकी कॉल कैसे मिल जाती है?
2: बस ऐसे ही मेहनत करनी पड़ी, रजा नहीं ना, एक बार कॉल मिला के बह जाओ, कॉल पे मेहनत करनी पड़ी. आप
0: बिल्कुल ऐसे ही है.
2: शिजाज साहब आए थे, बिल्कुल मैं तो दुकान पे अवेला, लेकिन उन्होंने कारो रजा करना था, काम आप ही नाल काम करना था, कॉल मिलानी औखी हो जाती है.
0: हाँ.
2: मैं दुआ करूंगा रजा की कॉल मिल जाए, क्योंकि मैं पूछन दिया कॉल, मैं लै रही आपी.
0: ठीक है,
2: आपी खाद जरा ना खाद, जे कोई आ भी जाए ना, तो किसी अच्छे बंदे नु बुजुर्ग नु दसना चाहिए की खाद पीर, उन्हें को पूछनी चाहिए या हर बंदे को पूछनी नहीं चाहिए.
0: ठीक है,
2: बाकी खाद चंगे वेखो, अल्लाह पाक साहब नु वेखो ना, एक एक किसी का महल वेख के अपनी कखा की भी नहीं ढा लेनी चाहिए, अल्लाह सोने इन भी दिता है सानू भी दे. बाकी प्रोग्राम अच्छा है,
0: माशाल्लाह.
2: आप ही गाना तुसी लाया ही ना शहजाद लाडले दे नां, मैं क्या अल्लाह पाक ते सदका प्यारे ना, अल्लाह पाक दे सिर ते फेरे ते मत्थे ते फेरा बज जावे, बड़ा प्यारा वा, बड़ा शर्मीला लड़का है.
0: अच्छा जी, ठीक हो गया.
2: बहुत सारिया दुआवां आपके ताले बाद,
0: बहुत शुक्रिया.
2: हाँ, अल्लाह खैर करे.
0: अच्छा जी, तो कहते हैं कि ख्वाब ख्वाब जो है ना, ख्वाब ख्वाब होता है या ख्वाब होता है, क्या होता है बताएं जरा ये मुझे. अच्छा, वो कहते हैं कि ख्वाब जो है ना, वो अगर कोई आए तो किसी से ताबीर पता करवा लेनी चाहिए, क्या पता करवानी चाहिए. शरारती बच्चे कहते हैं उन्होंने ही कराए पर बंदे रखे हुए हैं, बराबर कॉल करते रहते हैं. हाँ, ये चीज़ में भी यही सोच रही थी.

Okay, G, this is FM 101 Lahore Live Studio. Ye Sone Diya Kangna. One of my favorite. Baat hum aaj kar rahe hain khwabon ke hawale se. और ख्वाबों की जहां हम बात करते हैं, हमें लाइव पे आज तो अभी तक रजा भाई की कॉल नहीं आई. हाँ, उनकी ऑफ एयर कॉल मिल गई थी ना कंवल, इसलिए शायद ऑन एयर कॉल उनकी नहीं आई. 04221100101 हमारा डायलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल मिलाकर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं. एक लास्ट कॉलर देखूंगी, अगर कॉल ली तो. ख्वाबों के हवाले से मैं बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि ख्वाब जो हैं वो हकीकत होते हैं. तो डेफिनेटली ख्वाब हकीकत होते हैं. हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, बिकॉज जब आप पॉजिटिव सोचते हैं. अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि मैं अक्सर किसी से लड़ी होती हूँ तो मेरे ख्वाब में भी वो चीज़ चल रही होती है. तो ख्वाब जो होते हैं, बाज़ दफ़ा हम जो सोच रहे होते हैं वो ख्वाबों की सूरत में हमारे नींद में आ रहा होता है, कि सबकॉन्शियस जो है वो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ पे अटका होता है और वो ख्वाब में चीज़ें चल रही होती हैं. अब यहाँ पे ख्वाब होता है कि एक अच्छा ख्वाब और एक बुरा ख्वाब. मतलब एक ख्वाब वो होता है जो हम चाह रहे होते हैं, एक ख्वाब वो होता है जो हम नहीं चाह रहे होते और चीज़ें हो रही होती हैं. अगर कभी आपके साथ कोई इस तरह का आपको ख्वाब आए कि आपको वो डरा दे, या आप वैसी ज़िंदगी नहीं चाह रहे जैसा वो आपने ख्वाब में देखा, या आप किसी इंसान के बारे में कोई ख्वाब देखें, तो बजाय आप बहुत सारे लोगों से उस ख्वाब को डिस्कस करें, आप क्या करें, आप ये करें कि सदका दे दें. जैसे मैंने पहले कहा कि आप सदका दे दें, और हर जो बुरा ख्वाब है या वो ख्वाब जिस जो चीज़ आप नहीं समझ रहे या नहीं जानना चाहते या नहीं करना चाह रहे, उसका सदका दे दें, तो अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा. अच्छे ख्वाब की ताबीर के पीछे ज़रूर भागें, यानी कि ताबीर इन द सेंस ऑफ आप उसको पूरा करने के लिए ज़रूर भागें, उसके लिए मेहनत करें,

और आप तमाम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मैसेजेस किए, उन तमाम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइव ज्वाइन किया। गुल यासीन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कमलनाज किसको कह रही हैं, कमलनाज बोलती अच्छा नहीं है, अच्छा लड़ पवो होने थे। एनीवेज जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, आपको आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस सेम शो, तब तक के लिए फ़ी अमानल्लाह।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

कितना रोया था मैं तेरी खातिर। कितना रोया था मैं तेरी खातिर। अब जो सोचूं तो हंसी आती है।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: शिर्क से, जो तुमने शिर्क पकड़ा हुआ है यानी बुतों की पूजा करते हो तुम, जो जो अल्लाह की जगह किसी और को, जो जैसे वो राहब थे उनके ईसाइयों के, शाम के अहबार थे दूसरे उनके, वो जो मर जाते थे ना तो उनकी कब्रें बना के ना उनको पूजते थे वो, तो उनसे कहा जाता था ना कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहते थे कि हम ये हमें अल्लाह के करीब कर रहे हैं इसलिए हम इन्हें पूछते हैं। नहीं, अल्लाह के करीब तो हदायत अल्लाह ही दे सकता है, या तबलीगी जमात कोई हो जो तुम्हारे पास तबलीग लेकर आए, तुम्हें दरस दे अल्लाह वाले औलिया अल्लाह कुतुब अब्दाल मुजद गौस, या तबलीगी जमात हैं जो अल्लाह के रास्ते पर निकलती हैं, जिनका कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम में से एक जमात अल्लाह के रास्ते पर निकले और लोगों को दीन की तबलीग दे, ये है वो रास्ता। ये नहीं कि उनकी कब्र बना के फिर वो तबलीगी जमात वाला को सरबरा कुतुब अब्दाल मुजद्दद गौस वली अल्लाह फौत हो जाए तो उसकी कब्र बना के फिर हम उसकी पूजा पाठ शुरू कर दें। नहीं, पूजा पाठ सिर्फ अल्लाह ही की है, वह इन्ना नहीं बरी हूँ, और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं और अल्लाह उनके लब पे बोल रहा है, कह रहा है आप कह दीजिए कि बेशक मैं बरी हूँ, मैं बेजार हूँ तुम्हारी इस हरकत से, मिम्मा तुशरिकून, जो तुम शिरक करते हो, यानी मेरे अलावा जब किसी और को तुम पूजते हो या सजदा करते हो, किम्मा चाटी करते हो, ये मैं इसके तुम्हारे शिरक से बेजार हूँ। अल्लज़ीना, और वो लोग जो आतैना उमल किताबा, जिन्हें हमने किताब दी, या रिफूना हो, ये उनकी निशानी है कि वो पहचानते हैं तुम्हें, कमा या रिफूना बना हूँ, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अल्लज़ीना खसरू, यही तो लोग हैं जो खसारे में, अनफुसहुम, अपनी नफ्सों को, अपनी जानों को उन्होंने घाटे में डाला, हुम ला युमिनून, और ये ईमान नहीं लाएंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अलैका खातमुन नबीयीन सदक।
1: और मुसलमानों, नमाज सही वक़्त पर अदा करो, इसमें अल्लाह ताला ने रूहानी और जिस्मानी शफा रखी है, और देखो आपस में फिरके ना बना लेना जैसे दूसरी कौमों ने बनाए और वो तबाह हो गईं। अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम कुरान मजीद में मुसलमान रखा है।
2: अभी आप समाअत फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरकान हमीद से आयत मुबारक का तर्जमा, मुख्तसर तफसीर और शान नज़ूल। मुकर्रर थे जनाब साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: Keep smiling and drive carefully, okay?
4: Okay.
5: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: अपने टेक आइडिया को इग्नाइट करें विद प्राइम मिनिस्टर्स स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए तक और कामयाब प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। अप्लाई बिफोर 26 अक्टूबर एट segms.ignite.org.pk। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

Assalamualaikum Everyone. If you want to want to do Pakistan Lahore season, आप मुझे कहते हैं आपकी आरजे, आपकी होस्ट, आपकी दो शिवा मलिक आपके साथ. And all this time, almost 2 minutes लगे माइक एडजस्ट करने में. I was trying के जो फर्स्ट वाला माइक है ना उसी के साथ काम चलाएं, but पता नहीं उसे क्या हुआ है. Anyways, I just hope and believe आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, आपकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजर रही है. और मौसम की ये जो मस्तियां हैं, मौसम के ये जो अटकेलियां हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे सर्दी आ गई है. एंड आई एम लाइक अच्छा ओके. इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि लोग ये कहना चाह रहे हैं कि शिबा मलिक सर्दी आ गई है. सो बहुत सारे DM वसूल होते हैं मुझे इसी तरह, हो मौसम बदल गया, हो सर्दियां आ गई, अब आपका क्या होगा, क्या होगा मेरा. आई मीन यू पीपल आर लाइक ट्राइंग टू स्केयर मी कि इतना मौसम जो है वो चेंज हो गया, बट नहीं, मैं नहीं डर रही इस बात से, नो वे एट ऑल, ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं. एनीवेज, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, आपकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजर रही है, पॉजिटिव गुजर रही है, और यू आर ट्राइंग टू एडजस्ट विद ऑल द थिंग्स अराउंड यू. एंड और माइक फर्स्ट वाला जो है वो नहीं चल रहा है एज यूजुअल, यू नो हम आए और कुछ ना हो. हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप ये ना समझे कि ट्रेन चल रही है, डोंट थिंक लाइक दैट. ओके, सो 5:09 हो चुके हैं, लाहौर ऑन है, 7 बजे तक मेरा और आपका साथ है. और इंजीनियर्स आए हैं ना, सो दे आर ट्राइंग टू फिक्स दैट, सो दे आर ट्राइंग टू फिक्स इट. Something is going on. All right. मिनट हो चुके हैं, लाहौर ऑन है, 7 बजे तक मेरा और आपका साथ है. और इंजीनियर्स आए हैं ना, सो दे आर ट्राइंग टू फिक्स दैट, सो दे आर

Alright, Alyssa, welcome back. Okay, so Lahore on here with RJ Shiva Malik. And okay, so wherever you are listening, thank you so very much. एक और गाना और फिर उसके बाद आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो शामिल करेंगे. Let's have a look on कि आज जो है इंटरनेशनल डेज कौन-कौन से हैं. And yet, it's a breast cancer awareness day है 13th of October. और आज specifically आज के दिन जो है overall तो जो है पूरी दुनिया में awareness है इसके बारे में. breast cancer awareness के sessions हैं, पूरा month ही लोग इसके बारे में बात करेंगे, awareness देंगे और time to time sessions करते रहेंगे. सो बट आज स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे है 13th of October 13 को. और येट जैसे मैंने अपने लास्ट शो में भी बताया था कि क्या क्या कुछ हो रहा है और हमें इसके बारे में कितना अवेयर होना है और कितना ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का, क्या क्या टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं, आप अपना सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं. और एवरी ईयर इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन आई रिमेंबर टू कि ऑलमोस्ट लाइक 90% जो हैं लोग ऐसे हैं जिनके जो ख़वातीन जिनको पता ही नहीं होता जब उनके साथ ब्रेस्ट कैंसर की कोई प्रॉब्लम हो जाती है. लोगों को पता ही नहीं होता कोई लम कोई इस तरह की चीज़ हो, मोस्टली लोग जो हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और सेल्फ एग्जामिन वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है. लेकिन और जो हमारे रूलर्स एरियाज़ हैं वहाँ पे तो बिल्कुल भी इसके बारे में लोग बात करना ही इतना मयूब समझते हैं कि जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई कितना बड़ा गुनाह का काम किया जा रहा है. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं. येस, और पाकिस्तान जो है वन ऑफ़ द कंट्रीज़ जो एशियन वन ऑफ द जिसको कहते हैं ना लीडिंग कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 70-80%. और साथ ही साथ ऐसा है कि पहले ये था कि एक सर्टन एज के बाद इस तरह की चीज़ें होती थी, बट नाउ 35 के बाद जो है ये रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पहले होता था आफ्टर 50s-60s कहीं कोई सीन जो था इस तरह का सुनाई देता था, बट राइट नाउ इट्स लाइक किसी को भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो ये सोचना कि एक सर्टन एज में होगा यार उसके साथ कैसे हो सकता है, यार ये एज नहीं है, अब ये वो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई हैं. इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर. इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर, ये बहुत ख़ास दिन है, इसके बारे में बात करेंगे. हमारी ज़िंदगी में फेलियर है, क्यों है और लोग फेलियर के साथ डील कैसे करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट येट ऑफकोर्स. और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे. अंबर बेल के बारे में सोच रही थी क्योंकि जब मैं आ रही थी तो मैंने अंबर बेल देखी तो येलो थी, फ्रेश थी. मैंने दिल में सोचा कि अंबर बेल का हाल वही है ना कि अभी ये दरख्त है उसको भी सुखा देगी, उसको भी खा जाएगी. तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल अंबर बेल की तरह आते हैं, हमारी ज़िंदगी में अंबर बेल की तरह होते हैं. हम बड़े हरे भरे होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं और जैसे ही अंबर बेल हमारे ऊपर पड़ जाती है हमारी सारी जो है ना पॉजिटिविटी, हमारी सारी खूबसूरती, हमारा सारा चार्म जो है वो खा के रख जाते हैं, हमें बर्बाद कर देते हैं अंबर बेल की तरह. अंबर बेल जो है आपने देखा होगा पूरे दरख्त को अपनी लपेट में ले लेती है और फिर फाइनली एक टाइम आता है जिस दरख्त सूखना शुरू हो जाता है और अंबर बेल अपनी जड़ें जो है वो बिखेरना शुरू कर देता है. कुछ लोग सच में ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, उनका नेगेटिव ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो अंबर बेल की तरह आपको चिपक जाते हैं और आपकी सारी पॉजिटिविटी, आपकी सारी जो एनर्जी है, आपका पॉजिटिव ऑरा है उसको एनी हाउ एनी वेज बर्बाद करके रहते हैं. सो सम पीपल आर इन आर लाइफ सेम लाइक अंबर बेल, यू नो. पहले पहले मुझे अंबर बेल बहुत पसंद थी, जब मैंने देखा ना कि अंबर बेल करती क्या, फिर मैंने कहा नहीं यार इससे मनुष्य और कोई पौधा नहीं हो सकता. बट दैट डजंट मीन कि आज हमने मनुष्य पौधे जो है उनके बारे में बात करनी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इज जस्ट लाइक अंबर बेल की याद आ गई तो मैंने कहा हाँ होते हैं कुछ लोग हमारी जिंदगी में अंबर बेल की तरह.

Hi, Delicious. So, welcome back. Lahore on hai with Arjun Shiva Malik. Okay, so is gaane ki bhi ek apni na vibes hain, seriously. But is gaane mein na Zeeshaan Rokhri ki awaaz ko itni shandar nahi lagi, jo unki genuine jis tarah ki hai na awaaz waisi nahi lagi, ajeeb tarah ki aise dabbi dabbi si awaaz hai. अच्छा जी, आप लोगों के मैसेजेस 4471 पे जो हैं वो शामिल करेंगे कि कौन कौन हमारे साथ हैं. सो हियर वी गो. बिल्कुल सही काम कर रही है 4471 वाला, जो हमारा पेज है ना वो सही चल रहा है. माफ़ी मुश्किल यानी

अच्छा जी, सबसे पहले तो बतूल ने हाल पूछा है कि कैसी तबीयत है, बीपी का कुछ हुआ? ठीक, अभी कल ड्रिप लगवा के आई हूँ और इस बार ड्रिप लगवाई है तो हाथ जो है ना प्रॉपर वेन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल है हाथ मेरा। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैंने ड्रिप लगवाई थी 3 साल पहले, तो ना आई वाज सेइंग टू माय सिबलिंग्स के ओहो ये तो जो मैंने लगवा लिया है ना 2-3 साल के बाद ड्रिप, जितना ज़्यादा मुझे डर लगता है ना सुइयों से उतना ही ज़्यादा ये काम बढ़ गया है। सो बीपी स्टिल सेम है। और मज़े की बात ये हुई कि जब मैंने ड्रिप लगवा ली तो उसके तकरीबन 2-3 घंटों के बाद जब मैंने दोबारा चेक करवाया तो बीपी वैसे ही था। और फिर मैंने, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा मैं सुइयां इधर चुभो रही हूँ खुद को, बीपी ढीठ हो गया है। एनीवेज मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिए कि ब्लड प्रेशर पहले तेज हो रहा था, अब लो पे आ गया है, अल्लाह करे कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल हो जाए, बिकॉज दिस फीलिंग इज रियली वेरी वंडरेबल। इट्स लाइक यू नो यू आर समवेयर और आपको, आप बिल्कुल लॉस्ट हो, यू आर फीलिंग लाइक आप पहले क्या, आधा घंटा पहले भी क्या कर रहे थे वो भी नहीं होश होता, इस तरह की अजीब सी कंडीशन हो जाती है। तो दुनिया जहान की वो जो कहते हैं ना आपकी पूरी उम्र की एनर्जी या आपकी पूरी उम्र की जो विल पावर होती है उसको इकट्ठा करके जो है कॉन्शियस होना पड़ता है। एंड आई एम लाइक नाउ अ डेज नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा, ऐसा हो ही नहीं रहा, आई एम फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड ऑफकोर्स थिंग्स वर्क बिकॉज हमारे जो अल्फाज हैं उनमें बहुत पावर होती है। समरीन मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऑफकोर्स। मैं हाल अपना बता चुकी हूँ, मेरा क्या हाल है। अच्छा बतूल का मैसेज है, कह रही अच्छा हाथ की तस्वीर ही सेंड कर दो। दस यार आई एम नॉट फ्रॉम दोज टाइप ऑफ पीपल जिनको जो जब उनको ड्रिपें लगती हैं या उनको वो उनके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो स्टेटस पे सबसे पहले जो है ना पिक्चर्स लगाते हैं। सो आई एम नॉट काइंड ऑफ फ्रॉम दोज टाइप ऑफ पीपल, मैं उनमें से नहीं हूँ, वरना ज़रूर हम भी दुहाई मचाते कि हम बीमार हैं। अच्छा जी, सो जरियोन ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शिबा, अल्लाह आपको सेहत दे, सलामती दे, और आपकी तबीयत ख़राब है वरना आज मैं पोइट्री का ज़रूर कहता। और क्या ये पिछले शो में मैं बहुत लास्ट में आया था तो जिक्र हो रहा था बिनिश का, क्या आज वो आई हैं? बतूल ने मैसेज किया है कि बड़ी अच्छी और ख़ुशी की बात है कि जो हमारे पुराने लोग थे वो जो हैं शो में वापस आते जा रहे हैं, और आई होप बिनिश सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, आई होप सो। अच्छा आज एक और काम भी हमने करना है, आज हम ये करेंगे कि आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है, बिकॉज पिछले 2-3 हफ्तों से आप लोग कह रहे हैं रिक्वेस्ट करनी है, गाने अपनी पसंद के लगाने हैं, सो वी कैन डू टुडे, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो प्ले करेंगे, 6 to onward जो है आप लोगों की पसंद के गाने जो है वो प्ले करेंगे, बल्कि अभी से भी कर सकते हैं, आई एम जस्ट वेटिंग आफ्टर 5:30 वी कुड डू दैट, हम लोग जो है उसके बाद जो आप लोगों की पसंद के गाने होंगे वो आज हम प्ले करेंगे, सो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं।

0: राइट जी, सो आज जो है माइक माइक हम खेल रहे हैं ना, कभी ये कभी वो. ओके सो आप लोगों की मैसेजेस जो हैं वो शामिल करेंगे फेसबुक के. सो हाँ, गाना इसलिए लगा दिया कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो स्टूडियो आए थे, सो ही वाज टॉकिंग टू मी एंड आई एम लाइक ओके सर. अच्छा, वो हमारे ऐसे हैं ना, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जब उनको पता होता है कि क्लास के यू नो ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो उनको फिर वो कहेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो. उनका वो वाला जो अंदाज़ होता है ना तारीफ का, वो समझ में आ जाता है, पता चल जाता है हाँ सर ठीक है. ऐसे मौके पे मैं बस ये कहती हूँ, ये सब तेरा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है. ओके अच्छा जी, फेसबुक पे आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो शामिल करेंगे. कौन कौन हमारे साथ है, कहाँ कहाँ से, जैसे बोलो कौन. हाँ ओके, क्या बात है, वो जो नहीं आ रहे थे कितने महीनों से, वो अब बड़े टाइम से आ रहे हैं. ऑलराइट. अच्छा जी, तारिक है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडियो. तमाम दोस्तों को सलाम, अल्लाह सलामत रखे सेहत दे. वालेकुम अस्सलाम तारिक, अल्लाह आपको भी सलामत रखे सेहत दे. थैंक यू सो वेरी मच, आपको भी खुश आमदीद. पाकिस्तान मोहम्मद हमजा है हमारे साथ मूसा वली से, बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए. बिनिश है, अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट मैम, मुझे तो इतनी लेट पोस्ट अपलोड की, मुझे तो छुट्टी का शक पड़ गया था. लेट हो गई आज, पता नहीं किस लिए, मैं निकली तो टाइम से थी, पता नहीं क्यों रश ज़्यादा था आज. दैट्स वाई सारे लोग बीबी पार्क जा रहे थे, शायद इसलिए वहाँ पे रश कुछ ज़्यादा ही था, एक तरफ से बंद किया हुआ था. फिरोज़ आलमजान है, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वे फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आप हमारे साथ हैं हमेशा की तरह. खूबसूरत एंट्री, खूबसूरत आवाज़, शानदार शो, थैंक्स अ लॉट. गुड इवनिंग मैम एंड सलाम टू ऑल रिस्पेक्टेड लिसनर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट. लगता है तारिक भाई कैसे हैं आप, लगता है आज आखिर के वेले हैं. सेकेंड थर्ड फोर्थ पे तुम हो, तो तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है. अस्सलाम वालेकुम जनाब, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, वेलकम टू द शो. मुल्तान से माय सल्यूट टू ऑल लिसनर्स. तुमने बिनिश एक चीज़ नोट की होगी कि अब फरहान जो है वो ज़्यादा वो हो गया है, यू नो कभी वो क्या बोलता है, कभी वो क्या बोलता है, वो जनाब पे आ गया, पहले मैम पे था फिर जनाब पे आ गया है, कभी मिस कह देता है, कभी क्या कह देता है. वो जब से उसकी मंगनी हुई है वो लड़का नहीं हाथ आ रहा. इफ्तिखार अहमद, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू, प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, यू हैव अ गुड स्टाइल, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, मे अल्लाह ऑलवेज गिव यू एवरी हैप्पीनेस, एवरी सक्सेस. इफ्तिखार अहमद सिटी बहावल नगर से, लिसनिंग टू यू फ्रॉम. अच्छा जी ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच जी, आप भी सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुन रहे हैं मुझे उधर से बहावलपुर से. ओके इजाज़ है, अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, असल SOS क्या था, मैं इसको वही समझ रही हूँ कि तुम जल्दी में लिख रहे हो, क्योंकि सुन रहा हूँ बट फ़ोन चार्ज नहीं था. सब दोस्तों को सलाम, तुम्हारे मैसेजेस की नौयत से ही पता चल रहा है कि तुम बड़ी जल्दी जल्दी में मैसेज कर रहे हो कि मैं लेट हो गया हूँ. यू नो हम ब्रॉडकास्टर्स की एक बहुत ही बुरी वाली आदत है, कसम से मैं इसको बुरी इसलिए समझती हूँ बिकॉज़ हम लोगों को अंदाज़े बयान, अंदाज़े तहरीर बहुत अच्छे से समझ आते हैं, अंदाज़े तखातब बहुत अच्छे से समझ आता है कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं. सो आई डू अंडरस्टैंड, और ये बड़ी खतरे वाली बात है, समटाइम आप हर एक चीज़ को ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, हाउ समबडी इज सेइंग टू यू कैसे लिखा है, क्या लिखा है, तो वो ना अच्छा नहीं लग रहा होता कभी कभी. अच्छा जी, इजाज़ शाह है, सुनो सब दोस्तों को सलाम है, कम ऑन फ्रेंड, सुपर शो विल स्टार्ट. ओके कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लिखा है. शिबा जी आपकी सेहत कैसी है, ऑलरेडी एक्सप्लेन की सेहत तो पता नहीं क्या ही हो गया, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, और बाकी अल्लाह आप सब लोगों को भी सेहत दे. आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, तो हो ही जाएगी ठीक. खाबर नादर तारिक लगता है गायब हो गया है खाबर दोबारा से, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है. नसीर है हमारे साथ बलूचिस्तान से, बहुत शुक्रिया जी मैसेज करने के लिए. आप खुद को फूल बनाकर पेश करें या मोमबत्ती की तरह नरम पिघल जाएँ, लोग आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे इनकी फितरत है. एग्जैक्टली जो मर्जी कर लो, कुछ लोगों के लिए जैसी उनकी खसलत होती है, जैसी उनकी होती है ना तबीयत और फितरत, वो नहीं बदल सकती है. आप अपनी जान वार दो कुछ लोगों पे, उनको उनकी वो निकल ही नहीं सकते उन चीज़ों में से, एंड दैट इज़ वेरी वेरी यू नो काइंड ऑफ बुरी वाली हरकत ही है वैसे ये. शीबा बस शोर ही है, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, किधर सर्दी आ गई, अभी तो अच्छी खासी गर्मी है, वहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं, अभी यहाँ पे आ गई है सर्दी, बस आ चुकी है। जिनको ऑनलाइन सर दबाने की सहूलत मैसर होती है, बीमारी के स्टेटस भी वही लगाते हैं जिनको ऑनलाइन सर दबाने की सहूलत में असर होती है। आए सही बात है, गेट वेल सून कुकू मैम, थैंक यू सो वेरी मच बिनिश। नादिर ब्रो किधर हो आप, आ जाओ ना। नादिर को बहुत मार पड़ने वाली है, ये बहुत बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा। बतूल तुम्हें पता नहीं चला मैम को कमज़ोरी हो गई है, जाओ खट्टे चने खिलाओ, लगता है वो खाने की भी हिम्मत नहीं है, खासी कमज़ोरी होगी। मैं कल भी जब डॉक्टर पास गई तो आई वाज लाइक ये कौन सी कमज़ोरी है जो ठीक नहीं हो रही, किससे ठीक होगी और ऐसा भी क्या ही हो गया मुझे, मैं इरिटेट हो गई हूँ इस कंडीशन से। होता है ना कि इट्स लाइक मोर देन 20 डेज नाउ, 25 डेज हो गए हैं कि ये चक्रों वाला जो हाल है ना वो ऐसे ही चल रहा है। तो अक्सर दोस्त मजाक से कहते हैं जो तूने दिए वही वापस आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ इतने तो मैंने नहीं दिए किसी को चक्कर, अल्लाह करता कि मैं चक्कर देती तो वो जो है ना मेरे वापस आते, तो मैं सोच एक लम्हे के लिए तो सोचती नहीं यार कि वही चक्कर वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, नुसरत साहब का ट्रैक लगा दे मैम, प्यार एक फूल है उस फूल की खुशबू हो तुम। अच्छा जी ठीक है, ये खट्टे चने वाला क्या सीन है बिनिश, तुम्हें नहीं पता रियली? इसने कब से ज्वाइन किया है कि इसको खट्टे चने वाली गेम नहीं पता है? हाँ हामिदुल्ला मलाखेल है हमारे साथ, वेलकम टू द शो हामिदुल्ला मलाखेल मेरे भाई, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, जाहिद हुसैन है हमारे साथ। ओके मैम, आज मेरी भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फरहान की रिक्वेस्ट ना प्ले कीजिए। ओके ऑलराइट, मैं खैर का वेल, मैं आखिर का वेला नहीं हूँ, बहुत बिजी बंदा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, 4471 पे न्यू बॉयज़ आए हैं क्या? येस ऑफ कोर्स बिल्कुल। अब फरहान तुमने बताना है कि क्या किया जाए, बिकॉज अगर तुम चाह रहे हो ना कि तुम्हारा गाना प्ले हो, आप दोनों ने रिक्वेस्ट कर दी, तुम दोनों मेरे लिए खास हो, मैं क्या करूं, मुझे तो तुम लोगों ने मुश्किल में डाल दिया है। जो लोग कॉल करते हैं वाइल आई एम टॉकिंग, प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि जब, और अगर लाइव कॉल्स हैं तो फिर उस चीज़ का वेट किया करें कि लाइव कॉल्स भी आनी है, हाथ ही रख लेते हो आप लोग तो लाइक सीरियसली। एनीवेज कमर्शियल है, फिर उसके बाद गाना, और उसके बाद हाँ अभी न्यूज़ में टाइम है, सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग।
1: अपने टेक आइडिया को इग्नाइट करें विद प्राइम मिनिस्टर्स स्पार्क एंड एलिवेट प्रोग्राम, अ नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन फंडिंग इनिशिएटिव। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ रुपए तक, और कामयाब प्रोटोटाइप्स को मार्केट रेडी सॉल्यूशंस में बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए तक फंडिंग। अप्लाई बिफोर 26 अक्टूबर एट segms.ignite.org.pk। स्पार्क द आइडिया, एलिवेट द इम्पैक्ट। अ प्रोजेक्ट ऑफ इग्नाइट, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

sisters, so welcome back. Lahore on Hamid Arjo Shiba Malik, FM 180 Pakistan Lahore. All right. Acha ji, Batul ne message kiya hai ki Binish, it's good to see you. Aur please, aaj ladai ka mood bilkul bhi nahi hai. So chhodo yaar, kya ladke karna hai. मैं आज बहुत टेंशन में चल रही हूँ. रियली, तुम टेंशन में क्या हुआ? सब ठीक है? जॉब शॉब ठीक चल रही है?

से ना मैंने अक्सर नोट किया है, अगर आप खुद डाउन चल रहे होते हैं ना, तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी सराउंडिंग में लाइक आपके दोस्त, आपके जानने वाले भी, वहां से भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही होती है। लिटरली मुझे तो जो है ना अब इस सिचुएशन पे गुस्सा सा आने लग गया है कि हाँ यार, जिसको भी फोन कर लो, कुछ भी कर लो, अगला अपनी सुना रहा होता है। अब मेरे साथ ऐसे हो गया, अब मैंने ये सीखा विद पैसेज ऑफ टाइम, कहती है अच्छा ठीक है यार, आई मीन आपके साथ सब जो है ना वो चल रहा है, क्या कहते हैं, अच्छा चल रहा है, बाकियों के साथ ही बुरा चल रहा है। हाँ, हम ही हैं जिनके साथ जो है ना वो जो बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी सारी दुनिया के साथ बुरा ही चल रहा है। प्लीज़ यार, आई मीन कहाँ है, कहाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं? मैं उस टाउन में जाना चाह रही हूँ फिलहाल। आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ यू नो ट्रबल्स, सब कुछ से मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। भला अगर मुझे, मैं यहाँ पे आके शो करते हुए थोड़ा सा बेटर फील ना करूँ तो शायद मैं ना आऊँ, पर अगर घर पे रहें, डिप्रेशन, होम सिकनेस, ये सारी चीज़ें मिलके आपको और भी ज़्यादा तोड़ देती हैं। सो इट्स बेटर दैट गोइंग आउट, स्टेपिंग आउट, और आप थोड़ा सा बाहर निकलें तो कुछ चीज़ें बेहतर लगती हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे फेलियर के बारे में। आज हमने बात करनी है, जो लोग ज़िंदगी में जब फेल हो जाते हैं, इट इज़ इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर, और हम अपनी ज़िंदगी में फेलियर को, अपनी ज़िंदगी में नाकामी को किस तरह जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं, आज हमने इसके बारे में बात करनी है। और रियली व्हेन दिस स्टंबल थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, तो हम लोग जो हैं वो कैसे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी सीखें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। सो फेलियर के बारे में आज हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो फेलियर है, जो नाकामी है, उसके साथ किस तरह डील कर रहे होते हैं, आपकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग क्या है जो आपको लगता है कि हाँ जी ये मैं करूं तो मैं आई कैन डील विद माई सेल्फ, आई कैन डील विद ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आपकी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग, एंड ऑफ कोर्स आप अपनी पसंद का गाना जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अंटिल अनलेस कि कोई दूसरा इस चीज़ की रिक्वेस्ट ना कर दे कि आपने इसके गाने की जो रिक्वेस्ट है वो प्ले नहीं करनी है, ठीक है। जरियोन ने मैसेज किया है, जरियोन कह रहा है कि हाँ जी खुशामदीद बिनिश, बताना आपको यही था कि नए तो हम आए हैं लेकिन आपका काफ़ी जिक्र सुना था जब आप नहीं आ रही थी, इस वजह से बड़ा दिल था कि हम देखें आपको कि आप कौन हैं। हाँ, अब आप इनको बताना चाह रहे हैं कि हमने आपको याद किया था। अस्सलाम वालेकुम शीबा, आई एम ज़िशान एंड आई एम लिसनिंग योर फर्स्ट टाइम, इट्स ग्रेट, यू गॉट अ वेरी फैबुलस वॉइस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, करम है अल्लाह का। मिनहाज आलम सिस्टर कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम मिनहाज, आप बताओ आप कैसे हो, सब ठीक ठाक है? अकबर कराची से हमारे साथ है, थैंक यू अकबर। बिनिश का टेस्ट अच्छा नहीं है, म्यूजिक का ना प्ले किया जाए, उसका रिक्वेस्ट ट्रैक मैम। हाँ जी, उसका रिक्वेस्ट ट्रैक सुन तो लिया तुमने कि उसकी रिक्वेस्ट है कौन सी है। रिहाना खान है भक्कर से हमारे साथ, वेलकम टू द शो, और आपको भी खुश आमदीद जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मेरी प्यारी बहन मनहाज? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं? हाय मैम, आपको मेरी मोहब्बत की कमी हो गई है, ज़रा इधर आए, कुची कुची करो। और तुम्हें किस चीज़ की कमी होगी? तुम्हें लगता है मेरी पैंटी की कमी हो गई है? मैम मुझे तो खुद भी नहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रही अपनी, पता नहीं शादी के बाद क्या बनेगा मेरा, आई एम सो वरीड अबाउट इट। ओ माय गॉड, ही सो वरीड, व्हाई यू सो वरीड? अगर इतने वरीड हो तो मत करो, कुछ मत करो, इतनी परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, हियर वी गो, और फिर उसके बाद न्यूज़ ब्रेक के लिए जाएंगे, स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग, आरजे शिबा मलिक, एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। ओके, एंड विच सॉन्ग इज दिस एंड व्हाई इज दिस? अच्छा ठीक है, ओके, 6 बजे के बाद आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है ना वो डेफिनेटली प्ले करने जा रही हूँ। आसिम हसन ने अच्छा गाया, कोक स्टूडियो का जो गाने हैं ना जो नए आ रहे हैं, अच्छे गाने आ रहे हैं, सो आई हैव गॉट टू प्ले दैट। माहिया, इज इट? या आई गेस सो, द सेम सॉन्ग।

0: Hi, this is FM 101.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Hi ji, once again assalamu alaikum and good evening all of you, and thank you so very much Farhan for requesting that such song, very low song. Aur tumne jo hai maine isliye pehle laga diya, maine kaha okay fine because I don't want to destroy the tempo of the show. और मेरे हिसाब से जो है जब आप रिक्वेस्ट करते हो, मैंने हज़ार दफ़ा बताया है कि वैसे ही रिक्वेस्ट किया करो जो शो के टेम्पो के साथ मैच करे, फिर मज़ा आता है मुझे भी रिक्वेस्ट प्ले करने का. एनीवेज जी, इट इज़ ऑलरेडी जैसे कि हमने बात की है कि आज जो है इंटरनेशनल डे फॉर फेलियर है, कि जब हम जिंदगी में नाकामयाब हो जाते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में फेलियर आती है और नाकामी आती है, तो हम अपनी फेलियर को डील किस तरह करते हैं. आउट ऑफ 100, 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फेलियर के साथ हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक में जाके उसको डील कर रहे होते हैं, और देर इज़ अ नो सोल्यूशन ऑफ इट. ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की चीज़ों को ऐसे डील कर रहे होंगे, कोई सोल्यूशन आता नहीं. आई ऑलवेज बिलीव दैट कि हर एक मुश्किल जो जब हमारे ऊपर आती है, उसी के अंदर कहीं ना कहीं हल होता है. जस्ट मोमेंट जब हम काम डाउन होके सोच रहे होते हैं, जब काम डाउन हो करके चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमें वो समझ आ रही होती है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट इज़ गोइंग टू टेक यू टू योर ग्रेव. इट्स लाइक यू जस्ट नीड टू फोकस, इट जस्ट यू नीड टू हैव अ टाइम टू बी विद योर सेल्फ, जहाँ पर आप बैठ के देखें कि नहीं यार, हल निकल आएगा. ऐसा कुछ भी इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, कुछ भी. जिन लोगों को, और ऐसे लोग इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं जिनकी ज़िंदगी का फुल स्टॉप सिर्फ ये होता है कि मेरे ऊपर प्रॉब्लम आ गई है और इसका कोई हल नहीं है, और वो अपनी प्रॉब्लम को इतना एग्जैजरेट करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए, हमारे अल्फाज में बड़ी पावर है. ठीक है, हम अगर 10 लोगों को बता रहे हैं ना, अगर हमारी प्रॉब्लम हमारी ज़ात तक है, लेट से कि हमारा किसी बंदे के साथ कोई मसला हो गया, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो मसला जो है 2 लोगों के बीच में है, राइट. शायद वो सॉल्व भी हो जाएगा, सॉर्ट आउट भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप 10 लोगों को बता देते हैं तो वो 10 लोगों की ज़ुबान में आ गया. अब हर बंदा उस मसले के बारे में बात कर रहा है, हमने उस मसले को इतना बड़ा बना दिया, मसला भी इटसेल्फ सोच रहा है कि यार मेरी तो क्या ही औकात है कि मुझे इतना बड़ा बना दिया. सो अगर आपका मसला सिर्फ 2 लोगों के बीच में, तो उतने में ही रहने दें, वहीं पर ख़त्म कर दें. उसको एग्जैजरेट मत करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बता के लोगों को बयान कर करके इतना बड़ा मत कीजिए कि प्रॉब्लम्स को खुद अपने ऊपर रश्क आना शुरू हो जाए कि ओहो मैं तो पता नहीं क्या हूँ. सो अपनी प्रॉब्लम का जो जिक्र है कम से कम करें. मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई एम एक्सपीरियंसिंग के नहीं यार, ये सच में इट वर्क ऑलवेज, हमेशा ये चीज़ें काम करती हैं. फिर एंड पे जब लोग कहते हैं ना कि हाँ शिबा, हाउ यू जस्ट मैनेज टू बी सो स्ट्रांग, मैं कहती हूँ तुम लोगों को क्या पता हो कि कितना कुछ टॉलरेट करना पड़ता है जस्ट टू एक्ट स्ट्रांग. सीरियसली, महरीन सुन रही है ऑलरेडी. महरीन, थैंक यू सो वेरी मच दैट यू लिसनिंग. बतूल ने मैसेज किया है, शिबा तबीयत इसलिए आवाजार सी चल रही है, जब भी मौसम बदलता है मैं पता नहीं क्यों उदास हो जाती हूँ. बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि पता नहीं क्यों उदास हो जाते हैं. कभी कभी उदासी की कोई रीज़न नहीं होती है, और कभी कभी रीजन्स ही होती हैं बस.

और आप किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे होते. सो हम बात करें फेलियर की, हम बात करें कि हमारी ज़िंदगी में जब फेलियर आता है, ऐसा टाइम आता है जब बिल्कुल नाकाम है, तो हमारी सबसे बेस्ट चीज़ क्या है जिसकी वजह से हम जो है उसको मैनेज करते हैं और हम कहते हैं नहीं यार इट्स ओके वी कैन डील विद इट. अपनी बेस्ट बतानी है, ये नहीं आके बताना कि ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है. नहीं, टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बात करें. आपकी अपनी बेस्ट जो है चीज़ वो आपने बतानी है कि मैं ये करता हूँ, ठीक है. एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट करनी है, ये नहीं करना कि जी मैं ये कर रहा हूँ, ऐसी बात ना करना है जिसका कोई मजा ही ना आए, कोई इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है. सो दिस विल बी आवर टॉपिक, ये हमारा टॉपिक रहेगा, लाइव कॉल्स लेंगे डेफिनेटली. रियाज भट्टी हैं शाहदरा से हमारे साथ, थैंक यू सो वेरी मच. आपको भी खुश आमदीद. ओके जी, आप फरहान की रिक्वेस्ट इंजॉय करें, तब तक मैं जरा बिरयानी इंजॉय कर लूँ. अकेले अकेले खाएंगे बिरयानियाँ, इंजॉय करें. नादिर नहीं आने वाला क्योंकि मोबाइल सेल करके अपनी बंदी को रिंग गिफ्ट की है साईं जय ने. नहीं यार सीरियसली ना कर, मजाक है. लाइक नादिर ने ये हरकत की है, ना करो. नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं. ओ जरियोन, मेरी तारीफ करके आपने साबित कर दिया है कि आप एक समझदार और अच्छे इंसान. उसने तारीफ नहीं की है, उसने सिर्फ ये बताया है कि आपकी एब्सेंस में आपको याद किया गया था, ठीक है. अच्छा जी, बस जरियोन 4471 के जिस माहौल में आप आ गए हैं ना, बस ख्याल रखिएगा अपना. यहाँ बड़े चलाक लोग रहते हैं पुट्ठी जुत्ती पहन के. अच्छा जी, पीपल फील द विंड व्हेन फरहान गॉट एंगेज्ड. अच्छा ओके, फरहान छोड़ो शादी के ख्वाब, ये बच्चों का खेल नहीं है. जाओ शाबाश जाज भाई के साथ मिलके बांदर किला खेलो. जाज ने तो शादी कर ली है, बांदर किला ही खेल रहा है. मैंने आज आ गए आप, उतार ली आपने हाथ पांव से मेहंदी. तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, इतनी जो तुम सियानी बनो, रानी बनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मुझे पता है बिनिश इसलिए भी सिर्फ मंगनी करवाई है, शादी बाद में करवाऊंगा. मेरे साथ साथ हिजाज भाई को भी रगड़ा लग गया. यहाँ तो ऐसे ही होता है इस आंधी तूफान में, जब शो का आंधी तूफान चल रहा होता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन ये नादिर वाली बात क्या सच है? सीरियसली नादिर ने इस तरह की अजीब हरकत की है? कमाल है. बोला अगर इसने ये वाली हरकत की है तो इसको तो बहुत मार पड़ने वाली है. कौन बंदा है जो ये करता है, हद है यार. अच्छा जी, सो आप लोगों के गाने जो हैं वो भी रिक्वेस्ट प्ले करूंगी, ठीक है. ड्यूरिंग कॉल, जब लाइव कॉल्स ले रहे होते हैं ना, तो तब आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं करनी है. इस गाने के बाद जो है मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट प्ले करूंगी और बस उसके बाद हम लाइव कॉल्स लेंगे. तो लाइव कॉल्स आप लोगों को पता है आई ऑलवेज प्रेफर टू टॉक अबाउट टॉपिक, तो वो फिर ज्यादा मजा आ रहा होता है. अच्छा जी, जरियोन ने मैसेज किया है, हा हा हा इसमें कोई तारीफ नहीं थी, दूर के ढोल सुहाने. अच्छा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि हमने सिर्फ ये बताया कि हम आपको याद कर रहे थे. मेरी ने मैसेज किया है, बतूल आजकल बहुत ही ज्यादा लो चल रही है, इतनी ज्यादा लो चल रही है कि मेरा भी दिमाग खराब करके रखा हुआ है. ओके, बात ही मत करो फिर तुम. अच्छा अच्छा अच्छा, आगे ये भी एक मैसेज. अच्छा, ये रिफ्रेश किया तो ये भी मैसेज है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको ब्लॉक कर दूं. ना यार, हाय, ब्लॉक करने से मुझे याद आ गया, ब्लॉक करने से क्या सॉल्यूशंस मिल जाते हैं? कभी ऐसे होता है कि लोग कहेंगे जी हमने आपको ब्लॉक कर देना, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई डोंट वांट टू सी यू. तो जैसे किसी के साथ ब्रेकअप हो जाए, किसी के साथ बात ही नहीं, आप पहले ही बात नहीं कर रहे हैं और लोग कहें जी मैं आपको देखना भी नहीं चाहता, आपसे बात भी नहीं करना चाहता, आपको अनफ्रेंड कर दें, आपको अनफॉलो कर दें, आपको ब्लॉक भी कर दें, तो क्या ये सच में मुझे काम करता है? रियली डज इट वर्क कि आपका, आप किसी बंदे से अगर दूर होना चाहते हैं तो आप उसको ब्लॉक कर दें तो वो काम करती है ये तरकीब? इज इट? इंटरनेशनल फेलियर्स डे, सो 100% लोग जो हैं इस दुनिया में ऐसे ही हैं, दैट व्हेन दे गॉट रियली शॉर्ट विद द टेंशन, व्हेन दे आर रियली स्टंबल्ड विद द प्रॉब्लम्स, तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है. हम हमेशा एंजाइटी, पैनिक होके और स्ट्रेस में आके अपनी चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कभी भी हमने ये नहीं सोचा है कि यार हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं जिनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. हमारे जैसे शायद और बहुत सारे हैं और हर एक के साथ कोई ना कोई मसला है, हर एक के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है.
अच्छा जी, उसके साथ साथ और क्या खास है आज के दिन के हवाले से? ऑन बिजनेस डे है, ओके, जिन लोगों के अपने बिजनेस हैं आज उनका भी दिन है. दैट्स ग्रेट दैट यू आर रियली प्लेइंग अ मेजर बिग पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी. फिर उसके बाद ऑफकोर्स दिस इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे है, 13th of October. And then what else about today? Seed gathering, I'm not interested. And what about to discuss? Recycle awareness week hai, okay, 12 se 18 tak. Phir uske baad aur kya hai? Bas, that's it.

पता यूट्यूब को पता नहीं क्या हुआ हुआ है, लाइक मतलब हद नहीं हो गई है, अजीब ही है इसका भी काम. अच्छा शायद उसका अजीब काम नहीं होगा, बट व्हेन यू आर, जब आप अके हुए होते हो ना तो आपको सारी चीज़ें अजीब ही लग रही होती हैं. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ वैसा ही चल रहा है. एक पल नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू प्ले दैट. ओके, आई डोंट वांट टू प्ले दिस. अच्छा जी, शफीउल्लाह खान का यानी ज़ीशान रोगड़ी ने अपने ही जो फादर है उनका गाना रिक्रिएट किया है, रिमेक किया है. तो नहीं, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि शफीउल्लाह का ज़्यादा अच्छा होगा. आई बिलीव ऑलवेज. ये क्या है. अच्छा वैसे मलकू का वो जो लास्ट टाइम गाना प्ले किया था वो मज़े का था, अच्छा है वो, है ना. लगता है कि लेटेस्ट गाने आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए आप लोगों ने ना पुराने गाने मुझे बोला था. फरहान तुमने तो रज के काम खराब किए हैं ना आज. ज़रियोन ने मैसेज किया है कि शिबा आपकी तबीयत की नज़र अगर कहें तो पोइट्री कर दूं और फिर आप ही की आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कर देंगी. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. दर्शन ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, आज तो पुराने लोग भी आए हुए हैं, आपकी बिनिश भी आई हुई है. मेरी बिनिश, उससे पहले पूछ लो वो किसकी है. अच्छा ओके, व्हाट इज दिस.

0: हाय जी, सो लेट्स सी कॉलर हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, आप ही मैं लाहौर से रिमशा, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिमशा आप बताइए कैसी हैं?
1: आपने बताया ना अभी मेरा जो बीपी है वो लो ऐसी है, आपकी तबीयत अभी सही नहीं है।
0: नहीं ठीक ना, पता नहीं क्या हुआ है यार।
1: आपके आज जैसे आपका मसला चल रहा है ना, वैसे मेरी मामा का चल रहा है। बीपी कभी लो हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, उनको भी ड्रिप लगी है।
0: मैंने भी कल लगवाई है, लेकिन इस बार लगवाई है तो प्रिक ठीक नहीं हुआ, तो हाथ वैसे स्वेल हो गया।
1: क्योंकि जो बीपी है ना वो दोनों सेम चल रहे हैं, ऊपर नीचे।
0: मेरा दोनों लो है, ऊपर वाला तो नीचे वाला तो चलो है ही लो, ऊपर वाला भी लो है, जो कि वो नहीं होना चाहिए लो।
1: ओके, तो आपने किसी डॉक्टर से अच्छी दवाई नहीं ली आपको, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा?
0: नहीं, दवाई ले रही हूँ, ड्रिप भी लगवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स इट विल बेहतर है। डॉक्टर खुद भी, अच्छे डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं कि बेहतर है कि आप लोग अच्छी डाइट लें, उसी से ठीक करें, रादर गोइंग फॉर मेडिसिन। और मुझे इतना डर लगता है बीपी की मेडिसिन लेने के लिए।
1: जिस तरह आप हंसती मुस्कुराती रहती हैं, लगता नहीं कि आपको कोई टेंशन लेके आए।
0: ये दो घंटे बहुत अच्छे होते हैं, मैं बहुत बहुत
1: जिस तरह आप शो करती ना, फुल एनर्जी के अंदर, लगता नहीं है कि आपको बीपी होता होगा।
0: ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं बहुत ब्रेव हूँ। और ये अच्छा है, इस तरह की ही आपकी पिक्चर रहनी चाहिए, राधर के लोग ये दें, कहेंगे हाँ इसके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। सो डोंट लेट पीपल गेस व्हाट इज गोइंग ऑन विद यू।
1: और अभी आपने बात की ना, हम लोग अपनी परेशानियां हर किसी को बता बता के फैला देते हैं, ताकि लोग हम पे बातें करें, और इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि परेशानी छोटी सी होती है, हम बता बता के
0: उसको बहुत बड़ा कर देते हैं,
1: बहुत बड़ा कर देते हैं, और वो बात फैलती जाती है, वो बंदा फिर खुद ब खुद ही परेशान हो जाता है। हालांकि छोटी सी बात होती है, वो फैल के जब बड़ी हो जाती है ना, तो वो बंदा परेशान होता है। इसका तो मैं दस्या सी, हुण पूरे मोहल्ले दे विच गल पै गई
0: और वो ज्यादा परेशानी बन जाती है।
1: वो बड़ी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि हर बंदा ऐसे पूछता रहता है, वो एक एक को बता बता के थक जाता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वैसे ही कुछ हुआ, तो वो बंदे पूछ पूछ की परेशानी बढ़ा देते हैं। ज्यादा प्रेशर तो ऐसे ही लोग करते हैं,
0: सीरियसली।
1: और अभी आप एक टॉट का ये भी पूछ रहे थे कि बंदे को ब्लॉक करने से सारे मामला ठीक हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। आप ही
0: है, सीरियसली,
1: बिल्कुल। अगर एक बंदा आपको अहमियत नहीं ना दे रहा, उसको ब्लॉक करो, खुद ब खुद आएगा।
0: तो फिर खत्म हो जाती है चीजें।
1: चीजें तो हाँ बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। अगर आपको मन नहीं कर रहा उस इंसान से बात करने का, वो आपको मजीद तंग कर रहा है, तो उसे ब्लॉक ही करना पड़ता है, मजबूरी।
0: नहीं, नहीं, मतलब सिर्फ इसीलिए इंसान किसी को ब्लॉक कर दे कि हाँ जी मैं बात नहीं करना चाहता, विदाउट एनी फाइट, तो क्या ब्लॉक इज रियली वर्किंग? ब्लॉकिंग क्या काम कर रही होती है?
1: क्या करते हैं आप ही, हम पता क्या करते हैं, अगर हमने बात नहीं करनी होती ना, हम उसे कहते नहीं है, लेकिन ना वो जब नंबर आमने सामने हमें नजर आ रहा होता ना, तो हमें चिड़ आ रही होती है कि हम इसे ब्लॉक ही कर देते, फिर सुकून मिल जाता है, वो नंबर नहीं होता ना आसपास।
0: ओके, अच्छा, इट मींस तुम ये कहना चाह रही हो कि वर्क करता है।
1: हाँ बिल्कुल करता है, करता है। उससे ये होता है कि इंसान को वो आंखों के सामने नहीं घूमेगा आपको ज्यादा।
0: अच्छा, ठीक है, लेकिन वो दिमाग से कैसे निकले?
1: दिमाग से वो ना, क्योंकि देखिए अब नंबर इर्द गिर्द होगा ना, तो हमें ना हर टाइम वो होगा कि हम इसे मैसेज करें, इसका मैसेज आए हम देखेंगे, हम लोग में रहेगा ना, तो हमें सुकून रहेगा कि अगले का मैसेज तो नहीं आएगा।
0: ठीक,
1: तो ये इसका फायदा होता है। और टॉपिक क्या आपका, आपका टॉपिक यही है ना कि मतलब आपका
0: कुछ रह गया जो तुमने नहीं बताया? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, टॉपिक हमारा ये है कि हमारी जिंदगी में जब हम फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, तो हमारा बेस्ट क्या है कि हम अपनी फेलियर को कैसे डील करते हैं। ठीक है, कि ये मेरा बेस्ट है कि मैं इस तरह डील करती हूँ। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम, FM 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम, खुश आमदी जी, आयानु अहलन व सहलन मरहबा बले, आयानु ते
0: बखैर रागले। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ यार। आकर मेरा बीपी सेम हो गया है।
0: तुम्हारा भी लो चल रहा है? बहुत बुरी कंडीशन होती है यार वैसे, ये है ना,
2: ना लो अच्छा ना हाई अच्छा। अम्मी का हाई होता है, मेरा लो होता है, मैं कहती हूँ अम्मी थोड़ा थोड़ा।
0: अच्छा, मैंने लो वाला एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम किया, 20-25 दिन हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं एज नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ ये लो जो है ना वो ज्यादा वर्स्ट होता है।
2: नहीं, आपकी आप मेडिसिन छोड़ें, आप अपनी डाइट अच्छी करें, आप फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, और खाना पीना अच्छा करें, डाइट अच्छी करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आप मेडिसिन से अगर आपको नहीं ना फर्क पड़ा तो आप छोड़ दें।
0: हाँ, ड्रिप लगवाई है कुछ, ऑलमोस्ट 1 वीक तक खाई तो है मेडिसिन, बट अगर नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली आई हैव टू चेंज समथिंग ना।
2: हाँ जी, जूसेस वगैरह पिएं, इस्तेमाल करें जूस का, तो अच्छी डाइट लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और जो लोग ब्लॉग मजबूरन मजबूरी कहते हैं ना, मजबूर,
0: देखा मैंने दो चीजें बताई थी, ये मैंने सिर्फ वैसे बात की थी, लेकिन अच्छा। सबने ना ब्लॉग वाली बात पकड़ ली है, वो भूल गए हो कि मैंने ये सवाल मैंने ये पूछा था कि जब कभी नाकामी हो जाए तो कैसे डील करते हैं, पर नहीं, लोगों ने अपनी फेवरेट हैपनिंग चीज पकड़नी है।
2: नहीं अभी ये भी बात तो साथ करनी पड़ती है ना, जो आप बात कर रहे हो, तो फिर हम लोग तो वो जो मैसेज करते हैं कमेंट करते हैं वो तो जवाब दे देते हैं, लेकिन हम लोगों ने जब कॉल करनी है तो हमने तब भी देना है ना, कि जो लोग मजबूर करते हैं ना फिर आपको तंग कर करके, उनको कहेंगे प्लीज हमें तंग ना करें या कॉल या मैसेज ना करें, तो लेकिन वो मना नहीं होते, फिर वो मजबूर करते हैं हम लोगों को कि हम लोग फिर उनको ब्लॉक करें। तो मैं तो ऐसे लोगों को ब्लॉक करती हूँ जो प्यार से मनाना ना हो, फिर उनको ब्लॉक कर देती हूँ।
0: ठीक है,
2: और बहुत अच्छा शो कह रही हैं आप,
0: थैंक यू,
2: जबरदस्त, और बाकी माशाल्लाह लगता नहीं है कि आपका बीपी लो है, अल्लाह पाक आपको
0: वल्लाही इस टाइम में, मुझे पता है मैंने कहा ना कि मैं अपनी सारी उम्र की जिसको कहते हैं ना विल पार इकट्ठी करके बैठती हूँ, इतनी कॉन्शियस होके माइक के सामने हूँ मैं, सीरियसली।
2: अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, और मेरी अम्मी पीछे से कह रही है आप पीछे को ज्यादा ज्यादा बिरयानी खाएं। ठीक,
0: बिरयानी खाया, स्वीट, चलें ठीक है जी, खा लेते, थैंक यू, अपना खुश रखो, ख्याल रखो, ये भी मशवरा ठीक है कि स्पाइसी सी बिरयानी खाएं तो बीपी जो है वो हो जाएगा नॉर्मल। यही बात है कि कभी कभी कुछ लोगों को देख के लगता ही नहीं है कि उनके साथ क्या क्या कुछ चल रहा होता है, और ये समहाउ समवेयर अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा, लेकिन आई बिलीव गर्ल्स के लिए ठीक है, लड़कियों के लिए अच्छा है कि ना ही पता चले कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यू नो, अदरवाइज हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो शायद इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
3: ठीक हो
0: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत शुक्र, कौन बात कर रहे
3: हैं?
0: अच्छा अच्छा, ओके ओके जी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, लास्ट टाइम भी आप आए थे तो काफी मैं परेशान हो गई थी, क्या
3: आप जी डॉक्टर साहब जाना?
0: अच्छा चलें ठीक है,
3: जाकर उधर गले में 10 रुपए 20 रुपए दरबार दूर जाना, मंगल आपसे पूछूंगा,
0: ठीक है, ठीक है,
3: आपसे सर गए खत्म होंगे आपसे
0: इंशाल्लाह,
3: ठीक है,
0: चले ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको भी सेहत दे,
3: मेरे भी दुआ करना, मोहम्मद अर्शद
0: चले ठीक है, ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे,
3: अपनी दुआ करना
0: इंशाल्लाह,
3: अब मेरा बात नाम लेके मैं दुआ देना, दुआ देना मुझे अभी, मैं बंद करता हूँ, ठीक है, चले ठीक है, ओके, अल्लाह
0: हाफिज़। लास्ट टाइम भी आप आए थे तो बड़ी मैं दुखी हो गई थी, अल्लाह आपको सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती दे, सलामती दे, और इतनी नाम मुराद मर्ज है, अल्लाह जड़ से ख़त्म कर दे आपकी ज़िंदगी से इसको, अल्लाह आपको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन बात कर रहे हैं? कौन?
4: बहुत अच्छा, मैं अदरीस बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: अच्छा अच्छा, ओके जी, अदरीस, ठीक है,
4: हाँ जी अदरीस, अगर आपको एक मशवरा दे तो आपके घर सब मशवरे देने लग पड़े।
0: हाँ, मैं वही कहने लगी थी,
4: आपने यही कह रहा कि सब टोटके टोटके बता रहे हैं।
0: हाँ, लेकिन नहीं, कभी कभी सही भी हो जाता है,
4: लगे कुछ टोटके ऐसे होते हैं किसी का भला हो जाए।
0: हाँ,
4: तो
0: वो बताना चाहिए, जरूर
4: बताना चाहिए, तो अगर आप कहते हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ।
0: चले आप बता दे, इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही थी।
4: 3-4 नींबू ले,
0: ठीक है,
4: उनको अच्छे से वॉश करके उनको आपने ग्राइंड करना है छिलके समेत।
0: अच्छा ठीक है,
4: आपने थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल ले,
0: ठीक है,
4: फिर उसको आपने क्या करना कि थोड़ा सा पानी डाल के उसको जब आप ग्राइंड कर लेंगे ना,
0: ठीक है,
4: उसको आपने फ्रीज कर लेना।
0: अच्छा,
4: फ्रीज करने के बाद आपने एक गिलास पानी का लेना, उसमें आपने जितना आपको चाहिए काला नमक डालना, दूसरा नमक नहीं डालना,
0: ठीक है,
4: और वो आपने जैसे वो टुकड़ियाँ छोटी छोटी होती है ना, वो फ्रिज में जो रखी रह रही होती है, उन वाली टुकड़ियों में आप उसको फ्रीज कर लें, एक टुकड़ी आपने एक ग्लास में डाल लेनी
0: है। ये सर्दियों की रेसिपी, ये गर्मियों की रेसिपी नहीं है?
4: आपकी पता क्या है, गर्मियों में आप उसको ज्यादा ठंडा करेंगे ना।
0: हाँ,
4: अब एक टुकड़ी जो सी है वो क्या कहते हैं उसकी, फ्रिज में से बर्फ की जो टुकड़ी छोटी सी निकालेंगे आप, वो एक गिलास आधे पानी में उसका कुछ कितना कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
0: हाँ ये तो है, चलिए ठीक है, मैं जरूर करूंगी,
4: हो जाएगा
0: ठीक है। उसके साथ
4: आप उसको दिन में दो टाइम आप उसकी सवाल करें, नींबू को आपने छिलके समेत ग्राइंड करना है।
0: ठीक है ओके, बीज भी तो होंगे फिर उसमें, बीज समेत ही कर लूं
4: उसको? आप बीज ऐसी ग्राइंड करना ना उसको, आप ग्राइंड कर ले वॉश करके अच्छे से।
0: चलिए ठीक है ओके, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी।
4: उसके साथ आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते बताएंगी कि आपके भाई ने आपको मशवरा सही दिया।
0: अच्छा ओके ठीक है, ये तो मैं जरूर करूंगी।
4: अगर बीपी लो होता है ना आपका,
0: हाँ तो ये लो ही है,
4: बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बीपी लो के लिए बहुत बेस्ट है।
0: अच्छा चलिए,
4: मैंने मेरी मिसिज भी ने भी ये इस्तेमाल किया और अपने जिसको बताया उसको इंशाल्लाह फायदा ही हुआ।
0: अच्छा
4: अल्लाह पाक आपको भी सेहत देगा
0: इंशाल्लाह। और
4: टॉपिक पे मैं ये कहूंगा कि टॉपिक जो आप कह रही थी ना, मैं पहले तो शक्ल पे 12 बजे थे जब कोई मुश्किल सामने आती है, लेकिन कोशिश यही होती है कि ऐसी मुश्किल का मुश्किल के हिसाब से डिपेंड किया जाए कि ये किस तरह की मुश्किल है। काम करने वाला तो उसको कोशिश करते हैं काम करके हर सॉल्व किया जाए।
0: ठीक है ओके,
4: मैं हल करता हूँ मुश्किल को अपनी को, और अल्लाह पाक उसमें मुझे बेहतरी देता है। आप दुआ करें कि मेरी भी नजर वापिस आ जाए,
0: अल्लाह करे।
4: मेरी भी तीन चार साल से मेरी नजर चली गई है, आपका टॉपिक शो सुनता हूँ, मैं बहुत कॉल भी करता हूँ अक्सर प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा सब वन को वालों का प्रोग्राम सुनता हूँ, सबको मेरा सलाम है।
0: ओके,
4: और आपके लिए बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाह पाक आपको भी शेर दे। और नादर ने बहुत अच्छा किया,
0: क्या
4: मोबाइल भेज दिया है,
0: पता नहीं है बस सच भी के अफवाह भी नहीं पता उस जब तक वो आया नहीं है।
4: तो उसने भेज दिया आ, इसलिए आप यही कहना सबने टोट के वो क्या कहते हैं, सबने कोई ना कोई आईडी लगाना है ना।
0: चलिए ठीक है ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अब कमर्शियल का वक्त हो गया है, ठीक है ओके,
4: अल्लाह।
5: Give your breakthrough tech idea the launchpad it deserves with Prime Minister's Spark and Elevate program, a national research and innovation funding initiative, up to rupees 100 million funding to convert bold ideas into functional prototypes, and up to rupees 200 million to transform functional prototypes into market-ready solutions. Apply today at segms.ignite.org.pk. Last date 26 October. Spark the idea, elevate the impact. A project of Ignite, Ministry of IT and Telecom.
6: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: रमा जी बिनिश कह रही है कि मैम जो मैं रात को दादा दरबार गई तो खब्बी साइड पे स्टेयर के नीचे उतर जाइएगा, लंगर मिल जाएगा, तुम भी आ जाना ठीक है लगते हाथ। फिर मेरे इंट्रोवर्ट होने पे इतना क्यों गुस्सा थी आप? मैं किस बात पे गुस्सा हुई थी? यू हैव टू डू दैट व्हेन यू फील दैट देयर इज नो वन अराउंड यू। ओके, फेलियर का एक ही हल है, बी कंसिस्टेंट। ओके, क्या बात है फरहान। यहाँ बहुत सारे लुकमान हकीम लिहाजा तिब की किताबें बंद रखी जाए। ओके, वैसे एक ब्रेक के बाद दोबारा मसले पर गौर करना है, मुझे काफी फायदा देता है। ब्लॉक करने के बाद लास्ट सीन देखने वाली बीमारी खत्म हो जाती है और दूसरे को लगा लगा के स्टेटस लगाने वाला स्यापा भी मुक जाता है। मैम ये लोग शादी से इतना डरते क्यों हैं? शादी सच में स्केरी होती है। ब्लॉग करना इज माय फेवरेट हॉबी और ब्लॉग सिर्फ समवन स्पेशल को करती है। इट्स अ स्पेशल हॉबी। हाँ ओके, अगर तुम सिर्फ हॉबी भी कहती तो समझ आता था, बट स्पेशल हॉबी। ओके मैम, मैं तो अपना मसला आजकल सिर्फ अपने ही दिल और दिमाग में रखता हूँ क्योंकि जिनसे शेयर करता हूँ वो बहुत दूर है मुझसे। ओके बेहतर है। पिक्चर से याद आया मैम, डीपी को चेंज कर रही हैं आप? नहीं, यू वॉन्ट टू सी मी, यू बेटर सी मी, यू नो द वेज हाउ। अब हाल वो है कि हम खुद को भी नहीं पहचानते हैं, तो आप क्या पहचानेंगे? जरियोन, मुझे लगता है कि आप समझदार बच्चे हैं, मगर अफसोस बिलो रानी का असर हो चुका है आप पे। लाइक सीरियसली मैम, आप मेरी रिक्वेस्ट ट्रैक को इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? बिनिश से कुछ कहलवाना चाहती हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं, मुझे खुद को भी पसंद नहीं आया। मैं तो वो हूँ सिर्फ आपके साथ लव लैंग्वेज यूज़ करने वाली। होपफुली आप भी वही होंगी, हर लिसनर के लव यू कहने के बदले लव यू टू कहने वाली। अच्छा जी, ओके शिवा जी, मेरा ये है कि मैं अकेला ही परेशान होता रहता हूँ। इस टॉपिक पर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ मैम, तो करो, तो मैं मना किसने किया है? वैसे फरहान, शादी ना करना। ओके मुझे क्या है, मैं तो कभी, आई डोंट नो फरहान, व्हाट इज़ दैट मैसेज टू फाइंड डायरेक्शंस एंड कंसिस्टेंसी, आई डोंट नो। मैम आज फुल मूड है शादी के सॉन्ग लगा के फरहान के सारे डांस स्टेप निकलवाने का, वो तो कर ही नहीं रहा। आप अपनी ज़िंदगी में फेलियर के साथ किस तरह डील करते हैं वो आपने बताना है, और आपका बेस्ट क्या है, व्हाट इज़ योर बेस्ट वर्जन जब हम नाकाम हो जाते हैं। सो लाइव कॉल्स हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, टॉपिक मेरी तो अक्सर ही शामत आई होती है और मैं ऐसे वक्त में सोशल लाइफ कम करके टाइम देती हूँ खुद को, और मैं अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ सोल्यूशन निकल आता है और कुछ हालात के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। एग्जैक्टली हाँ, तो ज़रियोन कोई वसीयत में ताज महल नहीं लिखा दिया आपको, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी ठीक है, शिबा नूर जहाँ का सॉन्ग है एक एक शायर चन्ना, ठीक है लास्ट में प्ले करेंगे। मैंने कहा था कि जब कॉल्स लेंगे तब ना रिक्वेस्ट करना, पहले क्यों नहीं रिक्वेस्ट की तारिक तुमने? अच्छा जी बिनिश, तुम हवा लगने के बाद भी इधर ही हैं और तुम बगैर बात के ना जाने कहाँ उड़ गई थी। यस, अच्छा जी, सो अब गाना बल्कि कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
1: नौमान बात कर रहा हूँ और कॉलिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ऑल्दो आई एम लिसनिंग यू सिंस योर स्टार्ट।
0: सिंस आई स्टार्टेड
1: एफएम 101। या
0: सो एंड व्हिच ईयर वाज दैट?
1: मुझे खुद नहीं पता।
0: वाह वाह, और आप मुझे शुरू से सुन रहे हैं। ओके एनीवेज, अच्छा ठीक है,
1: लेकिन ड्यू टू सम रीजंस नहीं आपको कॉल करता था।
0: तो अब ऐसा क्या हो गया?
1: पता नहीं, आज मैं ज्यादा टेंस हूँ, जस्ट मैं आज कॉल करने को दिल कर रहा था।
0: ओह अच्छा, टेंशन में कॉल करती है। क्या टेंशन है, क्या हो गया, ऑल ओके?
1: नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कुछ गलत होते हुए देखता हूँ इर्द गिर्द ना। मुझे उनके जवाब बात नहीं मिलते कुछ चीजों के ना, मेरे कुछ सवाल आते हैं जिंदगी के ना जो मुझे जवाब नहीं मिलते. मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ, आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन. अच्छा पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या देखे पूरी दुनिया में देर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे FM 101 की मिसाल ले लें, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, FM 101 पाकिस्तान, ठीक है ना, रेडियो पाकिस्तान का एक हिस्सा, या रेडियो पाकिस्तान को ले लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड, उसका जो हेड होता है जिसको उसको लीड कर रहा होता है, वो कुछ डिसेबल पर्सन आज तक क्यों नहीं बना, एक मेरा सवाल ये. जैसे कोई, जैसे अब दुनिया में, जैसे अब मैं एक मिसाल दूंगा, जैसे अब दुनिया के लोग कहेंगे कि लोगों के जवाब सवाल को भी जवाब देता चलूं कि वो तो कोई हर कोई तो नहीं बनता, लेकिन हम जैसे लोग तो, अब जैसे फर्ज हमारे वजीर आजम या डोनाल्ड ट्रंप लेने या कोई भी वट सोएवर कोई भी लेने, XYZ सदर हो गया किसी भी दुनिया का, वो आप जैसे है ना, यानी कि आप जैसे आप लोगों की आंखें हैं, सारा कुछ आप लोग परफेक्ट है, वो लोग यानी कि वो नॉन डिसेबल है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो वो नॉन डिसेबल है, डिसेबल कभी नहीं कोई हुआ हुआ, यानी कि इसको मैं इस, अब जैसे मैं अब मैं इस ये बात क्यों कर रहा हूँ, हमारी हमारे दर्द कोई समझ नहीं सकता. जस्ट लाइक मैं आज एक ना मैं इंटरव्यू देने गया, क्योंकि मैं अपनी मौजूदा जॉब से जो ना मेरी जो करंट जॉब है उससे थोड़ा सा आई वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, नॉट ओनली फ्रॉम सैलरी साइड बट अदर साइड ऑल्सो. तो मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया,
0: ठीक है,
1: बट उन्होंने बट दे जस्ट रिजेक्टेड मी ड्यू टू माई डिसेबिलिटी.
0: ओके ठीक है.
1: अच्छा दूसरी, अच्छा अब दूसरा सवाल, अब हर कंपनी जो है, इवन के मैं रेडियो को बड़ी देर से सुन रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ रेडियो स्टेशन है, मुझे लगता है कि FM 101 भी उसमें से एक है, इन्होंने सर्विस शुरू की हुई है पिक एंड ड्रॉप की, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में होती है. अब वो पिक एंड ड्रॉप ओनली फॉर वुमेन, क्यों भाई, डिसेबल पर्सन के लिए क्यों नहीं. अच्छा अब इसकी मैं सबसे बड़ा जो मैं सबूत ये देता हूँ, आप भी मेरे से एग्री करेंगी, आजकल आई हुई है स्कूटीज, ठीक है, आई हुई एग्री करती है, स्कूटीज चलाने वाली लड़कियां भी है ना, डू यू एग्री, अगर अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत कहिएगा.
0: नहीं नहीं आप जरा थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ठीक है.
1: नहीं नहीं कभी कभी किसी ब्लाइंड पर्सन को या डिसेबल पर्सन को स्कूटी चलाते हुए देखा, उनको ये फैसिलिटीज है,
0: मतलब उनको हो सकती है. अब आपको आपकी मैं ऑफियर जवाब दूंगी, पहले आप फिनिश करें, ठीक है.
1: हाँ नहीं नहीं उन्होंने वो डिसेबल डिसेबल तो नहीं चला सकते ना, तो उनको वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलनी चाहिए, ना के वुमेन्स को. लेकिन अभी तक वो डिसेबल पर्सन का वर्ड यूज नहीं होता कि उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलनी चाहिए, ना कि अब वुमेन्स को, क्योंकि वुमेन्स तो इन्होंने चलानी शुरू कर दी है ना.
0: चले ठीक है उस्मान, टाइम क्योंकि हमारे पास कम है और मैंने उसको वाइंड अप भी करना है, ठीक है. नुमान नुमान, ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप जरा टाइमली कॉल कीजिएगा सो वी कैन टॉक लॉन्ग, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा.
1: ऑलराइट.
0: अच्छा जी, सो नुमान आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे, एक दफा पहले भी आपके साथ बात हुई थी, तो आपके अपने कंसर्न जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि शायद अनफॉर्चुनेटली हो रही हैं, हम जो डिजर्विंग लोग हैं शायद उनको उस तरह ट्रीट नहीं करते जैसे बाकी दुनिया में लोगों को ट्रीट किया जाता है, हमारे पाकिस्तान में शायद उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बट लेटर सूनर जो हैं चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं. सो वी कैन होप, हमारी CM साहिबा जो हैं बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं. आई बिलीव दैट के इन फ्यूचर इस तरह की चीज़ें ज़रूर होंगी कि डिसेबल लोग जो हैं उनके लिए उनको स्पेशल फैसिलिटेट किया जाएगा. सो आई बिलीव कि इस तरह की चीज़ें होंगी. नेवर लूज होप, जब जिंदगी में इतना कुछ कर रहे हो, जब ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं डिसेबल हैं, वो घर पे बैठे हैं, वो घर पे सिर्फ बैठे नहीं, वो घर वालों के ऊपर उनकी फैमिली उनको बोझ समझ रही है, राइट. तो यू आर मच मोर बेटर देन मेनी ऑफ जो हैं जिनको जिनकी लाइफ शायद इतनी मिजरेबल है कि लोग उनको बोझ समझते हैं. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको ज़बरदस्ती उनके माँ बाप कहते हैं जाओ जाके बाहर से भीख मांग के आओ, हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ, यू नो दैट, राइट. दैट इज़ द बिटर फैक्ट ऑफ आर सोसाइटी, बिटर रियलिटी ऑफ आर सोसाइटी दैट वी आर लिविंग. सो आप जो हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं, इतना डिसअपॉइंटेड ना हो, कम से कम ये देखिए जब भी परेशान होते हैं, एक तो मसले हर घर में हैं, हर एक के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग डिसेबल हैं, देन स्टिल यू गॉट दैट चांस कि आपके पास जॉब भी है, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, राइट. और प्लस यू गॉट अ वॉइस टू से, यू गॉट अ वॉइस टू टॉक अबाउट, यू नो. तो इसलिए कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको भी ध्यान में रखा करें, शुक्र किया करें रब की ज़ात का, वट एवर यू हैव, ठीक है. डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हम इतनी चीज़ें देख रहे होते हैं, होती है डिसअपॉइंटमेंट. सो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि ये फैसिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और इनिशिएट भी लेना चाहिए. एंड कि आप जैसे स्कूटी वाली बात भी आप कर रहे थे, तो इनिशिएट लेने चाहिए इस तरह की चीज़ों के ऊपर. एंड आई बिलीव सो ऑफ कोर्स जो हमारी सीएम साहिबा हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, वो बहुत सारी चीज़ों को जो कि शायद पहले बहुत लोगों ने ओवरलुक की हैं, शी इज़ वॉचिंग, शी इज़ डूइंग दैट. मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर हमें कुछ अच्छा देखने को सुनने को मिलेगा ज़रूर, इंशाल्लाह, वी कैन होप दैट. मच रिस्पेक्ट फॉर यू, लॉट ऑफ प्रेयर फॉर नुमान. ओके Binish is saying, all right. Well, जो टॉपिक ये था कि हम फेलियर के साथ कैसे डील करते हैं. However, जिस जो भी तरीका हो आपकी फेलियर के साथ आपको डील करने का आपकी ज़िंदगी में, I just believe it के एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको परेशानियाँ हैं. हमारी तरह और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जिनके साथ परेशानियाँ हैं. एटलीस्ट यू स्टिल गॉट अ माइंड, हार्ट, ब्रेन, के आप लोग जो हैं आप उनके साथ डील कर सकते हैं. ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इतने पैनिक हो जाते हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील भी नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे भी लोग हैं जो परेशानियों से मर ही जाते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये सुनने को मिलता है कि वो उनके ऊपर परेशानी आई है, उनके ऊपर प्रॉब्लम आई है और उनकी डेथ हो गई है, हार्ट अटैक हो गया है. यानी लोगों के अंदर उतनी भी बर्दाश्त नहीं है. तो अगर अल्लाह ने आपको बर्दाश्त दी है, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो ग्रेसफुली उनको लीजिए. और इस चीज़ पे हमेशा ईमान रखिए, यकीन रखिए कि उस रब की ज़ात ने ये वादा किया है कि मैं तुझे इतनी मुश्किल में नहीं डालूंगा जो तेरी बर्दाश्त से ऊपर हो, तो वो हमेशा साथ है. सो दैट्स इट, ये था वाइंड अप हमारा. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोगों के साथ मुलाकात होगी. एंड बी पॉजिटिव. ओके बेचारा फरहान, आपके घर में कोई नहीं सुनता तो मैम ही सुन रही हैं. ओके 447 वाले, थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन शो. ओके ठीक है, अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी. लास्ट सॉन्ग इज डेडिकेटिंग ऑल ऑफ यू. सो नाउ आरजे शिपा मलिक इज साइनिंग ऑफ. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस. कोशिश कीजिए आपकी वजह से किसी को उतनी ही तकलीफ हो जितनी जब रब की बारगाह में आपका सर झुके तो शर्मिंदगी से उठे ना, पूरी ग्रेसफुली ही सर उठा सकें सजदे में. अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड हार्ट्स ऑफ लव्स.

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि किसानों को सस्ती खाद, बीज और तकनीकी महारत की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर कानून ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी का नफाज पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देने के लिए भारत पर दबाव डाले। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का तीसरा T20 बैन अलाक्वामी मैच रावलपिंडी में जारी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: हम हमारे आज के खास प्रोग्राम जिसको कहते हैं मेहमान, हमारे मेहमान जनाब एक बहुत ही गेस्ट हमारे साथ हैं जिनसे गुफ्तगू का सिलसिला करेंगे। इंसान को मालूमात के जो मौसर अंदाज पेश करने में अपनी सलाहियतों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो डिजिटल हम एरा के अंदर हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको कामयाबी के लिए, उसकी कामयाबी के लिए और उसको कैसे कामयाब बनाना है और कैसे हम अपनी कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने आप को अपनी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं और सोशल मीडिया पे जहाँ पे आज दुनिया जो है अपने आप को सोशलाइज भी कर रही है उसके साथ साथ सोशली आप इंटरलिंक भी हो रहे हैं, सो डिजिटली कैसे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। आज की जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉन्टेंट क्रिएशन, आपका कॉन्टेंट, आपके कंटेंट के हवाले से जो गलतियां होती हैं उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, उसमें हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई मस्ट से कि आप लोग आज का जो शो है आप सब के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, इट्स अ लर्निंग सीरियसली। सो मैं बढ़ूंगा हमारे आज के मेहमान की जानिब। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं जनाब फयाज बलोच साहब। आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप डिजिटल एक्सपर्ट हैं, आप सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट हैं और डिजिटल की दुनिया के अंदर इस वक्त हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियों में बहुत आसानियाँ पैदा कर रहे हैं और बहुत से हमारे ऐसे लोग जो डिजिटली अपने आप को दुनिया में मनवाना चाहते हैं। सो वी कैन tell you how to do that. Fiyaz sahab, very warm welcome and assalamu alaikum.
1: Sir, walaikum assalam.
0: Kaise hain sir aap?
1: Alhamdulillah.
0: Welcome to Radio Pakistan.
1: Sir, mere liye proud moment hai.
0: Kaisa lag raha hai aapko?
1: Bachpan se sunte the aur wo medium jahan se hamare mulk ke Pakistan ka pehla elan hua tha. Maine even ke aaj apna status aapne shayad dekha ho, usme maine likha tha ये रेडियो हिंदुस्तान अगले ऐलान के मुंतजर रहिएगा और उसके बाद ये रेडियो पाकिस्तान,
0: रेडियो पाकिस्तान है।
1: आप सबको पाकिस्तान मुबारक। तो मेरे लिए ये ख्वाब की ताबीर है, मेरे लिए ये एक ड्रीम मोमेंट है और मेरे लिए ये एक तारीखी लम्हा है कि मैं इस तारीखी जगह का, इस तारीखी काम का हिस्सा बन रहा हूँ।
0: वेरी नाइस। कैसा ऑरा महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारे रेडियो में जब भी कोई आता है ना तो उसको बहुत सी फील्स आती हैं, यहाँ पे रेडियो की फील्स आती हैं, रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक बहुत से ऐसे लेजेंड्स हैं उनकी फील भी आ रही होती हैं।
1: फरहान भाई, मैं इस वक्त आई कांट एक्सप्लेन माई फीलिंग्स
0: रियली,
1: और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने मुझे एक हॉट सीट पर बिठाया हुआ है और मैं अपने आप को ना तसव्वुराती दुनिया में वहाँ लेके गया हूँ जहाँ पे लाखों करोड़ों कुर्बानियों के बाद एक मुल्क बन रहा है, लोग हिजरत कर रहे हैं।
0: अरे वाह।
1: और यहाँ बैठा एक शख्स, उसकी एक आवाज, उसका एक ऐलान उनको उम्मीद दिला रहा है।
0: अरे वाह।
1: कि आप पाकिस्तान में हैं, ये रेडियो पाकिस्तान,
0: रेडियो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के वो लेजेंड्स जिनमें मैडम हैं, जिनमें नुसरत अली खान साहब हैं, जिनमें इशफाक अहमद साहब हैं, जिनमें बानो कुसिया जी हैं, तारिक अजीज साहब, फिरदौस जमाल साहब, वो सारे जो है ना वो इस रेडियो का हिस्सा हैं। सर, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, एक कमर्शियल ब्रेक है और उस कमर्शियल ब्रेक की जानिब हम बढ़ेंगे और हम फयाज साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, उसके बाद लौट के आएंगे। हमारे साथ है सुनते रहे एफएम 101।
2: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे।
3: सोनी पेनब्राउ तुहाडी खिदमत विच तुहाडी मेज़बान साइमा हाजिर है ते सलाम अर्ज करती है। सोनी पेनब्राउ ते मेरे बुजुर्गो, याद रखो कि साडा प्रोग्राम बहुत ही खास ते जबरदस्त प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम विच तुसी सुनदे हो
2: प्रोफेसर
3: सुलेमान दे तिब्बी मशवरे। ते पेनब्राउ तुसी ये भी जानदे होवोगे कि प्रोफेसर सुलेमान कोई आम
2: तबीब
3: नहीं, बल्कि ए ओ
2: तबीब
3: जिन्होंने विगड़िया हुई बीमारियों का कामयाब इलाज लभ्या है, जिदी वजह नाल सुलेमान साहब नू गोल्ड मैडल भी मिले है। भैन भ्राओ, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ां दा दर्द, पठिया दा खिचाओ, असाबी कमजोरी, हैपाटाइटिस ते जिगर मेदे दीयां बीमारियों का मुकम्मल इलाज
2: प्रोफेसर
3: सुलेमान होरां दा बहुत वड्डा कारनामा है। इस लई दूजे मुल्कां दे मरीज भी सुलेमान साहब तो इलाज करवा रहे ने। सोने भैन भ्राओ, जे तुसी भी अल्लाह ना करे किसी बीमारी विच फसे हुए होवो ते प्रोफेसर सुलेमान साहब नू आप मिलो, जिदे लई तुहानू जरूरत होवेगी
2: प्रोफेसर
3: सुलेमान साहब दे एड्रेस दी। ते जनाब तुसी नोट फरमाओ साडा पता ते फोन नंबर्स।
2: सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 042-377-2710। यानी 042 377 2 7 1 6 0। मोबाइल नंबर है 0300-414-2608 यानी 0300-414-2608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com।
3: जी भैन भ्राओ, पता तुसी नोट फरमा लिया है। ते जनाब, हुण असी तुहाडी मुलाकात कराने हैं मुल्क के मशहूर तबीब ते यूनानी मेडिकल कॉलेज के साबिक वाइस प्रिंसिपल जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल। सुलेमान साहब जी, जी आया नू तुहाडी खिदमत विच बहुत सारे सलाम, बहुत सारिया दुआवां ते बहुत सारे नेक जज्बात पेश करनी आ जिहड़े साडे भैन भरावां ने तुहाडे लई लिखे ने।
4: सहमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस खलूस नाल इन्हां ने मैनूं सलाम ते दुआवां दित्तियां ने, यकीन करो सहमा जी, मेरा दिल खुश हो गया।
3: जरूर होना चाहिए।
4: मैं भी अपने बुजुर्गां, पैणा भरावां ते तियां दी खिदमत विच इस दुआ दे नाल सलाम अर्ज करना वा कि सोहना रब हर बीमार नूं सेहत देवे ते जिहड़े सेहतमंद ने सोहना रब उहनां नूं बीमारियां तों हमेशा दूर रखे।
3: आमीन आमीन। सुलेमान साहब, साडे भैण भरावां नूं बड़ा चाह हुंदा है कि तुसीं उहनां दी हर ईमेल दा जवाब दिओ, पर की करिए कि प्रोग्राम दा वेला ही घट है,
2: ईमेल्स ते एसएमएस
3: हमेशा ही वज जांदियां ने। सुलेमान साहब, जे इजाजत होवे ते भैण भरावां दी
2: ईमेल्स
4: खोली। हां सहमा जी, इजाजत से ज्यादा कोई अदालत ते नहीं जिचो इजाजत लेनी है, तुसी बिस्मिल्ला करो।
3: सुलेमान साहब, ए दसो कि ब्लड प्रेशर दी बीमारी नाल असाबी कमजोरी भी हो जांदी है
4: जी।
3: सुलेमान साहब, असीं ते इहो सुणिया है कि ब्लड प्रेशर दे सबब फालज, गुर्दियां दी खराबी ते दिल दीआं बीमारियां हुंदियां ने, इह असाबी कमजोरी क्यों हुंदी है?
4: सहमा जी, ताड़ी यह गल ठीक है कि ब्लड प्रेशर नाल फालज वगैरह हो सकता है,
3: पर कमजोरी भी हो जाती है
4: जी।
3: सुलेमान साहब, असीं ते इहो सुणिया है कि ब्लड प्रेशर दे सबब फालज, गुर्दियां दी खराबी ते दिल दीआं बीमारियां हुंदियां ने, इह असाबी कमजोरी क्यों हुंदी है?
4: सहमा जी,

Welcome to Islamabad.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे।
3: सोनी पैंट रहो, सदा वसदे रहो ते रब दियां नेमतां दे मजे लुट्टो ते हमेशा सेहतमंद रहो। इस दुआ दे नाल तुहाडी मेज़बान साइमा तुहाडी खिदमत विच सलाम अर्ज करदी है ते तुहाडे वास्ते लियाईए इहो जिहियां गल्लां ते इहो जिहे मशवरे जिहड़े तुहाडियां बीमारियां नूं दूर करनगे ते तुहानूं सेहतमंद बनाणगे। सोने भैन भराओ, प्रोफेसर सुलेमान बहुत सियाने तबीब ने ते इह गल तुसीं वी जाणदे हो कि इन्हां ने विगड़ियां होईयां बीमारियां दा पक्का इलाज लभ्या जिहदी वजह नाल प्रोफेसर सुलेमान होरां नूं गोल्ड मैडल ते दूजे इनाम वी मिले ने। भैन भराओ, मैनूं पता है कि तुसीं प्रोफेसर सुलेमान होरां दी गल्लबात सुनन लई रेडियो दे कोल ही बैठे होगे ते उडीक रहे होगे कि प्रोफेसर सुलेमान कदों गल्लबात करनगे। भैन भराओ, फिकर ना करो, मैं हुणी तुहाडी मुलाकात प्रोफेसर सुलेमान नाल करवावांगी, पर तुसीं पहलां कागज़ ते पैंसिल संभालो ते लिखो साडा पता ते फोन नंबर।
2: सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 04237727160 यानी 042-377-2710। मोबाइल नंबर है 03004142608 यानी 03004142608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com।
3: पता तुसा लिख लिया होवेगा ते हुण उडीकण दा वेला मुक गया क्योंकि हुण तुहाडे नाल गलबात करनगे जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब। सुलेमान साहब, तुहानू इस प्रोग्राम विच जी आया नूं कहनी आ।
4: बड़ी मेहरबानी सहमा जी, मैं भी अपने सारे सुनने वालों नूं सलाम अर्ज करना वा ते मेरी दुआ है कि सोहना रब मरीजा नूं सेहत ते तंदुरुस्ती देवे।
3: आमीन। सुलेमान साहब, तुसीं लोकां ते की जादू कर दित्ता है?
4: सहमा जी, मैं की जादू करना है, मैं ते अपने भैन भरावां दा खादम हाँ। हाँ, यह गल जरूर है कि मैं इलाज बारे अपने भैन भरावां नूं कदी भी गलत मशवरा नहीं दिता, बस यह जादू है।
3: सुलेमान साहब, माशाल्लाह, यही सिफत ते सब तो वड्डी खूबी है जिहड़ी किसे किसे नूं मिलदी है। सुलेमान साहब, हुण क्यों ना अपने भैन भरावां दीआं ईमेल्स ते SMS पढ़ लईए ताकि किसे नूं शिकायत ना रहे।
4: हाँ जी, बिल्कुल पढ़ लो
3: जी। बड़ी मेहरबानी सुलेमान साहब। ए ईमेल जिहड़ी पहली है ना साडी इक भैन होरां दी है। अच्छा। ए लिखदे ने कि मैनूं सिर विच बहुत पीड़ रहिंदी है, गले विच रेशा डिगदा है ते रात नूं सां नहीं आंदा।
4: अच्छा।
3: जो छां दा वी पीनी आ पर रेशा केरा ठीक ही नहीं हुंदा।
4: जी जी।
3: वाल डिगदे ने ते चिट्टे वी हो रहे ने, मैं बड़ी परेशान हां। इस मसले दा कोई हल होवे ते मैनूं जरूर दसो। वैसे सुलेमान साहब, वाल डिगण दा जिहड़ा मसला है
4: जी जी,
3: अजकल हर किसे नाल है, इहदा कोई पक्का जिहा इलाज नहीं हो सकदा?
4: सहमा जी, इहनां वालां दा पक्का इलाज है पर लोकी मारन हो गए ने, वालां नूं सुक्का रखदे ने, यानी असली तेल नहीं लांदे।
3: अच्छा।
4: जदके तेल वालां दी खुराक है। दूजी गल ए वे कि बस दूजियां बीमारियां नाल भी वाल खराब हो जांदे ने, इस लई उहनां बीमारियां दा इलाज भी जरूरी है जिहड़ियां वालां नूं खराब करदियां ने। सहमा जी, वाल डिगण दे तीन वड्डे सबब ने, पहला दायमी रेशा केरा ते दूसरा दिमागी कमजोरी ते तीसरा किसी बीमारी मसलन टाइफाइड बुखार दा हो जाना। इन्हां चीज़ां नाल भी वाल खराब हो जांदे ने ते साडे भैन होरां दा भी कुछ इह जिहा मसला है ते इन्हां नूं मैं एक खाण वाली दवाई देवांगा जिहदे नाल इन्हां दीआं जिहड़ियां बलगमी रतूबता ते गलीत मादे ने ना जी, उह निकल जाणगे ते दूसरा तेल असीं बणाया बड़ा अच्छा हरड़ बेड़े आमले ते सिक्का काई दा, इंशाल्लाह ताला ए तेल इस्तेमाल करन ते अंदरूनी तौर ते खाने वाली दवाई इस्तेमाल करन ते देखो इंशाल्लाह इन्हां दे वाल किन्ने लंबे चमकदार और घने हो जाणगे और इंशाल्लाह खुद तस्लीम करनगे कि हाँ जी ए वाकई तेल अच्छा है।
3: लो जी भैन भरा, मैं ते अज तो ए तेल इस्तेमाल करन लगी जी ते मैं ते हुण मशहूरियां चाहणा लंबे वालां दी
4: जी। माशाल्लाह तुहाडे अगे वाल बड़े लंबे ने जी। समझ गए
3: जी भैन जी, तुहाडी असल बीमारी फड़ी गई जी जिहदी वजह नाल तुहाडे वाल खराब हो रहे ने। हुण तुसीं देर नहीं करनी, इलाज करवाना है, रब खैर करेगा। सुलेमान साहब, बारी है SMS दी जिहड़ी इरफान नज़ीर होरां लिखी है।
4: ठीक
3: है। ये कहंदे ने कि मेरी उम्र 26 साल है, मैनूं 1 साल पहला मलेरिया होया सी।
4: जी।
3: मलेरिया तो ठीक हो गया ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ।
4: ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
3: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
4: ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਾ ਟਿੱਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕਹੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੁਸਤੀ, ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਪਸ਼ਾਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਟਿੱਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਓ।
3: ਬਸ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਟਿਕਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੇਲ ਦੈਟ। ਜੀ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹਰਬਲ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਤਿੱਬੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਹਰਬਲ ਐਕਸਪਰਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਤਿੱਬੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: You are tuned into the one above 101 FM.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी हिजरत के खात्मे के लिए यूरोपीय यूनियन के मशर की राहदारी इकदाम पर मिलकर काम करने का फैसला किया है। पाक फौज ने आज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह 2 के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का कामयाब तजुर्बा किया। आज रात रावलपिंडी में 3 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया।
2: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद। पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
3: दिस इज FM 101।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
6: You are listening FM 101. Tune into the one above.

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101. 101. 101. 101.

0: रात के 11 बजे अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए, अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन की बहाली के लिए पुरअज़्म है। अमान के वज़ीर ख़ारिजा 8वें पाकिस्तान अमान मुश्तरका वजारती कमीशन के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। पाक फौज ने आज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह 2 के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का कामयाब तजुर्बा किया।
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: Smile and dial 111 111 FM।

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: आलाई जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:45 और 14 अक्टूबर 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है जी मंगल की शब 12 से 2 बजे तक और बुध वाले दिन होता है 10 से 12 बजे तक। पहले तो वैसे मैं कह रहा था बुध और जुमे रात की रात 10 से 12, बट ज़िया भाई की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन उससे पहले खैर उन्होंने भी रिक्वेस्ट पहले ही मुझे की थी कि वो शो थोड़ा शिफ्ट करना चाहते हैं अर्ली टाइमिंग पे, तो वो डिसाइड किया हुआ था हमने ऑलरेडी, तो अभी वो ठीक भी नहीं है। उनकी सेहत के लिए दुआ करें, वंस ही विल बी फाइन, वो वापस हमें बिल्कुल ज्वाइन करेंगे, ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और अभी ये है कि ये वाला महीना तो आप मुझे बर्दाश्त कर लें, और हाँ 2 शो और हैं इस महीने के, फिर उसके बाद देखते हैं क्या स्केड्यूल बनता है, जैसे वो ठीक होते हैं फिर आ जाते हैं। नहीं मैं ज़िया अंजुम वाली स्लॉट नहीं मिल लेता, छोड़ देंगे मैं। एनीवे जी आई हैव अ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: क्या हाल है रिमशा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत प्यारी, मैं बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं?
0: मैं बस ऐसे ही हूं।
1: आज अभी अभी कॉफी मंगवा लें, चाय मंगवा लें।
0: आ गई है?
1: आ गई है, फिर सही है, फिर तो आपका शो सुपर हिट हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: हाँ जब आप कॉफी पी लेते हैं ना वो पेट्रोल डल जाता है।
0: अच्छा यार, ये भी अच्छी बात की है।
1: अब वो कहते हैं ना गाड़ी भी चलती है तो पेट्रोल के साथ चलती है, इंसान भी अगर उसकी मनपसंद का चीज आ जाए ना तो वो चल पड़ता है।
0: सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कहाँ से सीखती हैं ऐसी बातें आप?
1: ये बस मैंने आपसे सीखा है।
0: वाह वाह वाह वाह, अच्छा।
1: वो कहते ना आज लोग फिर जो शो सुन के ना बंदा जाग जाता है, तो मैं भी वो फीलिंग्स जो है ना मेरी पता चल गई। मैंने कहा आप कॉफी पीते ना उस दिन आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, चार्ज हो जाती है, पेट्रोल पूरा हो जाता है।
0: सही कह रही हैं आप। अच्छा आज वैसे मैं बात करना चाहता हूँ, एक संजीदा सा सवाल है, और ये हमारे इर्द गिर्द काफी ज्यादा हमने देखा है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। जो माली मुश्किलात आती हैं लोगों को, बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं, गरीब हो फाइनेंशियली, उनके रिश्ते परवान नहीं चढ़ते, क्या वजह?
1: यानी रिश्तों की वजह से
0: उनके रिश्ते परवान नहीं चढ़ पाते, तोड़ नहीं जाते, उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती।
1: मैं अगर सही बताऊं भाई, आप ना काम शुरू करने से पहले हर जगह पे बता देते हैं, हर जगह को बता देते हैं कि हम ये काम शुरू करने लगे हैं, ये काम जो है शुरू करने लगे हैं। वो ऐसा होता है कि बार दफा कुछ लोग जेलस होते हैं, वो खुश ही नहीं होते उनकी खुशी देख के, तो वो पहले नजर लग जाती है, वो काम आगे बढ़ नहीं पाता।
0: अच्छा
1: मैं ये समझती क्योंकि मैंने देखा है ना।
0: मेरा सवाल ये है कि गरीब बंदे के रिश्ते पूरे उसके साथ क्यों नहीं निभाते हम लोग? मतलब मैं अगर गरीब हूँ, मेरा रिश्ता कोई भी जो बनेगा वो मेरे साथ निभाएगा नहीं, किसी ना किसी स्टेज पे छोड़ के चले जाएंगे, चाहे वो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई आपका हम सफर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है उसके साथ रिश्ते निभाए नहीं जाते, तोड़ चढ़ दे नहीं रिश्ते, अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आपके साथ हर बंदा रिश्तेदारी बना देता है, ताल्लुक बना लेता है, वो भी जिससे आप नहीं मिलते वो खुद आके आपको मिलता है। क्यों?
1: वो पैसा देख के आते होंगे।
0: तो गरीब बंदे के साथ क्या मसला है? पैसे की वजह से?
1: गरीब को आजकल के दौर में कोई नहीं पूछता, मैंने ये देखा है भाई, कोई नहीं पूछता उसका हाथ पकड़ते हुए।
0: क्या वाकई हकीकत है कि फिर तो इसका मतलब हुआ ना खरीदे जाते हैं ना चीजें?
1: बिल्कुल।
0: फिर ये प्यार मोहब्बत दोस्ती रिश्तेदारी सब कुछ नहीं तो फिर खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ ना?
1: बिल्कुल ऐसे ही है। तो का दोस्त चल रहा है वो सब पैसे पे चल रहा है।
0: ओके चलो, और इसकी वजह क्या है?
1: वजह यही है क्योंकि अब इंसान को अब हर किसी को ना किसी की भी कोई वो बात सुनने के लिए राजी नहीं होता। हम कहते वो अगर किसी को पैसे भी हम अगर हम दे देना तो वो कहते नहीं यार ऐसे उतना ही खर्च करना है और मैं अपना नहीं सोचा कुछ। वो ये हम लोग उस पर टाइम नहीं देते, उसकी बात नहीं सुनते, समझते नहीं है। रिश्तों में मोहब्बत कम हो चुकी है, हम टाइम ही नहीं देते हैं।
0: सही सही सही।
1: हम देखे कि अब अपने दादा दादी के पास लोग नहीं बैठते, उनको भी सही से टाइम नहीं मिलता।
0: ओके बिल्कुल ठीक बात है।
1: उनको भी हम बहुत कम टाइम देते हैं।
0: क्या मुझे याद आ गया मेरी दादी की बात, कल वो कल सारा दिन सोई रही
1: हैं। आपको हिदायत
0: कल वो
1: मैंने दुआ की थी,
0: सारा दिन सोई रही हैं, रात में कहीं उठी हैं, उन्हें नींद ना आए। वो थोड़ी देर बाद बाहर आए, फिर चली जाएं, फिर बाहर आए, फिर चली जाएं, फिर मुझे कहती हैं दिन नहीं चढ़दा पिया, लगदा कयामत आ गई है। मैंने कहा नहीं अजे नहीं आई, अभी कयामत नहीं आई। ऊंचा सुनती है, कहती की कह रहे। मैं कहा क्यामत नहीं आई। नहीं नहीं नहीं क्यामत आ गई है, बाहर मौसम देख दिन नहीं चढ़दा पिया, सूरज नहीं निकल रहा। चलो ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच।
1: करता
0: जी दादी मेरी है।
1: यानी आज तुसी मतलब संजीदा गुफ्तगू करनी है, मजाकी कोई नहीं।
0: ये कर तो दिया है, होर मैं अब हुन मैं नचना शुरू कर दूं।
1: मैं तो तोसी तो दे ओ भी पूछ लेना तुसी।
0: चलो ठीक है।
1: ओके जी ओके,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। सो द क्वेश्चन इज जो मैंने आपसे पूछा है कि गरीब बंदे के रिश्ते परवान क्यों नहीं चढ़ते, मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता क्यों नहीं परवान चढ़ता, क्या पैसा बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, क्या पैसा ही हर चीज़ को ख़रीदता, फिर तो इसका मतलब हुआ हर रिश्ता हर चीज़ हर बात सिर्फ पैसे की वजह से है ना। पैसा है तो सब कुछ है, आपके जज्बात आपके एहसास, क्या ये चीज़ें मैटर नहीं करती। क्या गुर्बत वाकई रिश्तों को कमज़ोर कर देती है, क्या मोहब्बत करने के लिए भी ख़ास बैंक बैलेंस अब ज़रूरी हो गया, क्या किसी की काबिलियत उसकी जहानत उसका किरदार उसकी मेहनत उसकी वफादारी, गाड़ी घर तनख्वाह ये बन चुका है, क्या है, क्यों हम नापते तोलते रहते हैं, हम लड़का हैं या लड़की हैं इन्हीं चीज़ों को देखते हैं ना, कहीं शादी या कोई रिश्ता बनाना हो करना हो, क्या वजह है, क्या ओवरऑल बिगाड़ हमारी अपनी सोच में आ गया। मुझे मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न इट, दिस इज काइंड सीरियस क्वेश्चन बट हकीकत है। और फिजा राजपूत थैंक यू वेरी मच, आपका मैसेज आया मुझे, मेरी लाइव स्ट्रीम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। अगर आप फेसबुक पे जाके लिखेंगे RJ_DOX तो वहाँ पे आपको मेरी लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी, या गूगल पे भी लिख लेंगे तो वहाँ से भी आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। और ये तो मेरा सवाल है, इसके अलावा आप कोई भी बात करना चाहें कर सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है, जो मैंने बात की है उसी पे ही मौजू जो है वो ही बात करें। प्रोग्राम आपका है, मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, जो दिल करता है आप बात कर सकते हैं, मुझे कॉल करें 0421100101। और इसके अलावा SMS कर सकते हैं, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है आपने, कुछ भी कह सकते हैं, मौजू पे बात नहीं करनी, कुछ कहना है कुछ भी कह लें। और उसके लिए आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना है 4471 पे। मेरी बदतरीफी भी कर सकते हैं लेकिन मैसेज इस पर अच्छा, कॉल पर ना करना। और मेरी पोस्ट है जी FM 101 लाहौर और FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह आपको फेसबुक पे पोस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी कर सकते हैं जी। सो मैंने सवाल आपको बता दिया। और फिजा थैंक यू वेरी मच जी, आपने सलाम किया, आई एम फाइन। तूबा नवाज़ अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, गुड टू सी यू, हियर यू आफ्टर एन एजेस, थैंक यू वेरी मच जी। फरा अफजाल कहती हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, नाइस टू सी यू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकात, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, मेरी दादी कल कयामत बरपा करके बैठी थी और किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर ही देखी जा रही थी बार बार, और कह रही थी कयामत आ गई है, सूरज नहीं निकल रहा, कयामत आ गई है। मैं कह अजय नहीं आई, थोड़ा टाइम है अभी आना में, नहीं आ गई है। मैं कह अच्छा, की पता मेरी दादी नू कोई आ ही गई हो खबर, कितने आन तो नहीं लगी। एंड आई वॉज लाइक ओके ओके फाइन ठीक है आने दो मेरे लिए एक दो कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब हाशमी साहब।
2: नहीं भैया हाशमी नहीं अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूँ लाहौर शुगरजी से।
0: रऊफ साहब कैसे हैं आप खैरियत से हैं?
2: जी अल्लाह का शुक्र भैया आपके प्रोग्राम में पहली दफा कॉल की है।
0: सर आपकी मेहरबानी नवाजिश है मेरा ये स्लॉट में दूसरा प्रोग्राम है और आपकी पहली कॉल है।
2: सर जनाब सुनाए ठीक है आपकी?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइन परफेक्टली फाइन।
2: प्रोग्राम भजन बहुत अच्छा चल रहा है आपका और सवाल भी बहुत अच्छा है।
0: सर सवाल पे फिर कुछ रहनुमाई फरमाइए मेरी।
2: बड़े लोग बड़े लोग बनते हैं।
0: सर दोबारा बताइएगा।
2: आप बड़े लोग बड़ी बातें हैं।
0: नहीं सर मैं बड़ा मैं कद थोड़ा सा बड़ा है 6 फुट है लेकिन वैसे बड़ा नहीं हूँ मैं। वैसे मैं भी गरीब आदमी हूँ।
2: भजन गरीब आदमी पाकिस्तान में क्या काम या दुनिया में क्या
0: काम है? सर गैर सियासी बात करनी है आपकी मेहरबानी मेरा शो बंद करा देंगे आप।
2: पाकिस्तान में नहीं गुर्बत की वजह से मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मर्जी ले जाए
0: दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं जी गरीब का यही हाल है।
2: गरीब का यही हाल है
0: इसीलिए तो मेरा रोना भी यही है ना। गरीब बंदे को मुंह ही नहीं लगाता गरीब बंदे की मोहब्बत भी कोई नहीं मानता गरीब बंदे को तो ठुकरा के चले जाते हैं। तुम इफ यू कैन नॉट बाय मी दिस थिंग नहीं यार ये बंदा नहीं अच्छा दोस्त भी हुए यार खाना नहीं खिला सकते नहीं यार उसको ना बुलाओ वो पैसे मांग लेता है या वो कभी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो जितना मर्जी अच्छा दोस्त हो उसको अकोमोडेट नहीं करते रिश्तेदार अकोमोडेट नहीं करते आपके आपके साथ मिलते हैं हकारत से मिलते हैं उनके मिलने में उनके आपके साथ बिहेवियर में फर्क होता है। अगर आपको कभी कुछ तोहफा भी देंगे ना वो भी कुछ सस्ता सा उठा के देंगे आज आपके पास पैसे आ जाए तो वो आपको तोहफा भी महंगा देते हैं चीजें भी महंगी देंगे क्यों
2: जब गरीब की माँ मरेगी ना उसने बिरयानी नहीं बना सकेगा जब बिरयानी नहीं बनेगी तो वहां पे कौवा भी नहीं आएगा कोई हड्डी वगैरह नहीं जाएगी।
0: हाय हाय हाय बहरहाल ये एक सवाल के साथ ये सोशल इवल है एक माशरती बीमारी भी है।
2: इमाम मस्जिद एक अच्छे तरीके से आपसे सलाम दुआ नहीं लेगा
0: ऐसे ही है सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं और मुंह ही कोई नहीं लगाता कभी कभी बंदा अपनी शक्ल देख के परेशान होता है बंदा खुद को भी अपने आप से कह रहा था यार कितना गरीब आदमी है तेरी शक्ल देखने का दिल नहीं करता शीशे में देख के मैं भी देख के परेशान हो रहा होता हूँ यार कितना गरीब आदमी है कहाँ इतने साल लंघ ने तुम नहीं प्लान पूरे कर सके तुम्हें किसी ने क्या ही मुंह लगाना। सर आपकी आवाज कट रही मुसलसल सर शदीद कट रही यकीन करें दोबारा कॉल कीजिएगा माजद के साथ आई हैव टू ड्रॉप इट। हेलो हेलो
3: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम
3: जी सर मैं फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आई हूँ शाहिदा मुल्तान से।
0: क्या नाम बताया जी? जाहिदा
3: शाहिदा
0: कैसी हैं आप खैरियत से?
3: जी,
0: क्या
3: जी,
0: मुल्तान की क्या यादें हैं क्या खूबसूरत शहर मीठा मीठे से लोग मीठी मीठी सी बातें
3: बिल्कुल ऐसा ही है
0: फिर उसके उसकी रवायतें कितनी पुरानी फिर वहाँ पे किसी दौर में पता है वो सूरज देवता का मंदिर भी होता था
3: बिल्कुल हुआ करता था
0: मुल्तान में और मुल्तान वो खूबसूरत शहर कि जहाँ पे औलिया अल्लाह सूफिया इकराम आए जिन्होंने उधर कमाल मोहब्बत का दर्स फैलाया
3: जी बिल्कुल जी दीन को फैलाया जिन्होंने और बहुत ज्यादा हमारे
0: लोगों पे इतना ज्यादा काम किया। सच लवली पीपल आई बीन टू मुल्तान मेनी टाइम्स फॉर इयर्स
3: जी, और लाहौर के लोग जिंदा दलाने कह रहे हैं आप जिंदा दीदी में मायने हैं।
0: हम बहुत दिल फेंक देते हैं, जहाँ मौका मिले हम दिल फेंक देते हैं, ये लो ये फेंका वो फेंका वो फेंका, हम कहते हैं बस फेंक दे, जहाँ मौका मिले फेंक दे, कोई उठाए ना उठाए लेदा बात है।
3: सही। इसके हाँ एक शेर पढ़ती हूँ
0: जी, बिस्मिल्लाह पढ़िए।
3: जिंदगी की आग का अंजाम खाकस्तर नहीं, जिंदगी की आग का अंजाम खाकस्तर नहीं
0: जी,
3: टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गोहर नहीं। तो टॉपिक भी आपका ऐसा ही जा रहा है
0: जी,
3: कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाया है जो उसकी रजा है उसके मुताबिक बनाया है, और उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने इंसान को बहुत ही यानी कि बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अल्लाह के नजदीक इंसान सबसे असर मखलूकात है, मखलूक है।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: तो और गुर्बत और मारत वो भी अल्लाह की तरफ से अता होती है, लेकिन आप कह रहे थे क्यों ऐसा है कि हम लोग जो हैं गरीब लोगों से या जो कम माया हैं उन लोगों से नफरत करते हैं या उन्हें वो मकाम नहीं देते जो कि इंसानियत की मेराज है।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: तो हमें ये चाहिए ना कि हम उन्हें ऐसा करें। देखिए होता है कि फर्स्ट डे ही शैतान भी बन गया जिसने तकब्बुर किया था।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: और ये किब्र की अलामत होता है जब हम किसी को हकीर जानते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: असल में हम लोग खुद हकीर होते हैं ना, हमें मालूम ही नहीं होता कि हम खुद ही कमतर हैं, हम खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे का मजाक नहीं उड़ा रहे।
0: बिल्कुल।
3: और दिल जो है हम दिल हमारे मेहर वफा से खाली हो चुके।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: इसमें हम गर्ज के बंदे बन के रह गए। जब गर्ज के बंदे होंगे तो सर फिर कैसी मोहब्बत, कैसा किसी को मोहब्बत देना, कैसा किसी का अदब करना
0: जी,
3: होना तो ये चाहिए कि हम सब का अदब करें। जैसे आप औलियाउल्लाह की बात कर रहे थे, ये हमारे सब वो फकीर मंच बंदे थे जिनको साथी के अलावा और कुछ नहीं था, दुनिया से कोई लगाव नहीं था।
0: बिल्कुल ठीक है।
3: तो हम तो दुनिया के बंदे हो गए ना,
0: बिल्कुल
3: कि दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं देखते कि जिसने पैबंद लगाए हुए हैं कपड़ों में उसके अंदर क्या खूबसूरत इंसान, क्या खूबसूरत मुसलमान छुपा है, और अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से नवाजा।
0: बजा फरमा रही हैं, बजा फरमा।
3: और सबसे बढ़ के दौलत जो है ईमान की दौलत है। अब मालूम नहीं फर्स्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ, आपको कैसा लगा?
0: सर मुझे मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा।
3: एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का,
0: वाह वाह।
3: एहसास इनायत कर आसारे मुसीबत का,
0: वाह वाह।
3: इमरोज की शोरिश में अंदेशे फरजादे,
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।
3: अगर आप चाहें तो मैं और भी बोलूं, लेकिन आप बोर हो जाएंगे।
0: नहीं नहीं मैं बोर नहीं होता, लेकिन वो ये है कि जरा लंबी हो रही है, अगली दफा जरूर मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। बहुत अच्छा लगा, यकीन जानिए। थैंक यू वेरी मच। एक बड़ी खूबसूरत शहर से आपने फोन किया, आई लव योर सिटी, यू नो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू मैडम, अल्लाह हाफिज़।
3: थैंक यू, वेलकम वेलकम।
0: अच्छा, अब सवाल मैं फिर से दोहराया जाता हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, जस्ट फॉर देयर नॉलेज एंड ऑफ कोर्स उनका एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। आप किसी भी शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, कुछ भी करते हो, क्या गुर्बत वाकई रिश्ते खा जाती है? गुर्बत गरीब बंदे के रिश्ते क्यों नहीं परवान चढ़ते? गरीब बंदे को क्यों डिस्क्रिमिनेशन के साथ ट्रीट किया जाता है? आपके ही फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा गरीब होता है ना, उसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है? उसकी बात को अहमियत क्यों नहीं दी जाती? गरीब बंदे जो होते हैं रिश्तेदार भी उनको अहमियत नहीं देते। गरीब बंदे को लाइफ पार्टनर उसकी मर्जी का नहीं मिलता, और अगर कोई गलती से पसंद कर बैठे तो कुछ अरसे बाद फिर उसका साथ छोड़ भी देता है। गुर्बत क्या है ये, क्यों ऐसा, वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है? कि गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छा फ़ोन, अच्छे कपड़े पहनावा, रख रखाओ, शो ऑफ करना, फ्लैक्स मारते रहना, कि ये ज़रूरी है रिश्ते बनाने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन आई रियली वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट. यहाँ पे मैं एक गाना लगाता हूँ और उसके बाद वापस आके फिर इस पर डिस्कशन करते हैं. आई विल बी टेकिंग कॉल्स आफ्टर दिस ट्रैक. 04221000110 4211001110001. जिन लोगों ने मुझे पहली मरतबा सुना पैगाम भेजा आप सबका बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू वेरी मच. रजा खान थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. माजबीन आई है क्या बात है जी. इस्लाम किया वालेकुम अस्सलाम जी. और मैं मैसेजेज आयशा सुल्तान भी आई हैं. थैंक यू वेरी मच जी. अभी मैं वापस आता हूँ. देन आई विल बी रीडिंग योर एसएमएस एंड मैसेजेस. सामने मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज. सामने मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज. रुकता तो

0: सामने मंजिल थी और पीछे उसकी आवाज, रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। मैं खाना भी उसका था, महफिल भी उसकी, अगर पीता तो ईमान जाता, ना पीता तो शर्म जाता।
1: जिनको मजबूरी
0: सदा ऐसी मिली मुझको, जख्म ऐसे लगे दिल पर, छुपाता तो जिगर जाता, सुनाता तो बिखर।

ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 1:12 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है जी मंगल की शब 12 से 2 बजे तक और बुध वाले दिन होता है 10 से 12 बजे तक। और आज के दिन मेरा जो सवाल है आपसे वो एक सोशल इवल है जिसे कहीं ना कहीं आप लोग फेस करते हैं। ये हो नहीं सकता कि आपको कोई अपने से ज़्यादा बड़ा अमीर और ताकतवर शख्स ना टकरा हो, आप किसी भी स्टेज पे हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी कमी का या रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा हो, तो वहाँ पे क्या थॉट आता है? मेरे जहन में जो थॉट चल रहा था, क्या गुर्बत की वजह से रिश्ते परवान वाकई नहीं चढ़ते? तो क्यों नहीं चढ़ते? गरीब बंदे से रिश्ता कोई क्यों नहीं रखता, क्यों नहीं बनता? अच्छा लाइफ पार्टनर क्यों नहीं मिलता उसे? उसको गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छा पहनावा, मोबाइल फ़ोन, इस पे उसकी काबिलियत को क्यों नापा तोला जाता है? वो पंजाबी का एक मुहावरा है जिसको अगर उर्दू में बयान करूँ तो इस तरह होगा, कहते हैं वो जिन्ना दे कार दाने उन्ना दे कमरे भी सियाने, यानी जिसके पास अच्छा है ना बैंक बैलेंस और चीज़ें, अच्छा अमीर है, घर से खाता पीता है, तो उसके बेवकूफ़ शख्स को भी अक्लमंद समझा जाता है, पैसा है उसके पास। और गरीब बंदा जिसकी माली हालत मुस्तहकम ना हो, जब जाहिर अच्छा कमाता नहीं है, तो उसकी अच्छी बात को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसके जज्बात को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है यहाँ पे वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुर्बत। गुर्बत क्या होती है? गरीबी होती क्या है? थोड़ा सा इस पे पहले मुझे आप गाइड जाता है, उसके जज्बात को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है यहाँ पे वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुर्बत। गुर्बत क्या होती है?

0: से हम चौक कहते हैं, तो हमारे भी वो घर के पास एक चौराहा बनता था थोड़ा सा आगे, तो हमने वहाँ पे दोस्तों ने खड़े हो जाना, यार आज क्या करना। अच्छा यार आज ना दिल कर रहा है हलीम खाने का, पैसे नहीं है। अच्छा पैसे नहीं है फिर क्या करें। हम खड़े हो जाते थे वहाँ पे और 7-8 बजे के टाइम पे खड़े हो जाना, 3 दोस्तों ने, जो भी कोई आ रहा है जा रहा है कोई काम से, कोई बड़ा भाईजान यार दिल कर रहा है हलीम खाने का, थोड़े से पैसे ही दे दें, किसी से 10 किसी से 20 किसी से 50 इकट्ठे करके हम जाके हलीम खाते थे। गुरबत के तो ऐसे भी होते हैं। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज गुरबत? 04-2111-0011 0-4-2-1-1-1-0-0-0-1-0-1। गरीब बंदा रिश्ता बनाए किसी से, खाक बनाएगा यार किसी जगह, अच्छी जगह खाक जाएगा, अंदर पता नहीं कितने ख्यालात ऐसे आ रहे होते हैं, किसी को अच्छे कपड़े पहने देख के उसके पास जाने से कतरा रहा होता है इंसान, ये सोच के कि यार मेरी तो अपनी वैल्यू वर्थ ये नहीं है जो इसने पहना, ये तो शायद मैं महीने की पूरी सैलरी से खरीद नहीं सकता ये पहन के पहन रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें, आई रिमेम्बर कि हम ईद और शबरात, ईद शबरात कह रहे हो, ईद पर ही सिर्फ खाया करते थे, इंतज़ार होता था ईद आएगी, और ये सिर्फ बचपन का अलमिया नहीं है, आज भी ऐसी चीज़ें ऐसे मामलात हैं जहाँ ये थॉट आता है, अच्छा यार फलां महीने या फलां दिन तब जाके ना खा के आऊँगा, तब ये करके आऊँगा। किसी से अपने जज्बात का इजहार करना हो, किसी को कुछ बताना हो, आपके अंदर क्या चलता है, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना है, किसी को अच्छी गाड़ी से उतरता हुआ देख के, अच्छे पहनावे में देख के इंसान पहले खुद को ही रिजेक्ट कर देता। हमारे अंदर इस तरह से बैठ चुका है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं, मेरी काबिलियत, मेरे मामलात मैटर ही नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या हमें इंसान को इसी तरह तोलना चाहिए, जो कि तोला तो इसी तरह जा रहा है, तो क्यों तोला जा रहा है, मुझे बताइएगा। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
1: जनाब आरजे डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके?
0: अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए, आप खैरियत से?
1: जी दुआएं शुक्र, अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान करोड़ हा उसका शुक्र,
0: माशाल्लाह,
1: ये अल्लाह ताला ने ठीक रखा, सेहत तंदुरुस्ती दी, और आपको भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे
0: सर, मेहरबान,
1: और खासकर हमारे ज़ियान जुम भाई को अल्लाह ताला
0: आमीन आमीन आमीन,
1: उनकी आवाज सुनने को तो हम तरस गए हैं यार, कब आएंगे?
0: सही बात है,
1: सही है ना,
0: सही बात,
1: क्योंकि तीन रोशन सितारे हैं FM 101 के।
0: अच्छा
1: उस्तादों के उस्ताद जनाब आरजे डॉग साहब,
0: मेहरबानी है आपको,
1: और उनके राइट और उनके राइट और लेफ्ट ज़ियान जुम साहब और रहमान अनवर साहब,
0: भाई हैं दोनों, आप भी भाई हैं, आपको लगता है आपका उसने समात है, यकीन करे, वरना ऐसी कोई बात नहीं।
1: नहीं मैं यकीन करे आपको, आप तीनों के शो, मैंने एक्चुअली जब से आप लोगों का शो सुना ना
0: जी,
1: मैं उस वक्त से दोबारा एफएम सुनना शुरू हुआ, नहीं तो मैंने तो छोड़ दिया, अरसा हो गया।
0: सर आपकी मेहरबानी है,
1: लेकिन इस चीज ने दोबारा वापस ले आया मुझे।
0: सर आपकी मेहरबानी है सर,
1: आपकी अच्छी अच्छी बातें, और वक्त गुजर जाता है और अच्छी बातें सुनने को मिल जाती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी अमल करना ना करना तो अपनी अपनी रस पे है।
0: सर सर सर सर मेहरबानी सर,
1: नाम है मोहम्मद आमिर भट्टी, लाहौर से बात कर रहा हूँ
0: जनाब सर, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
1: और जो आपने वो मैंने शुरू सुना था, आपने कॉलर से बात की, तो आपने वो बात की रिश्तों के ऊपर, पैसा
0: जी,
1: हाँ जी पैसा, बात ये है कि ये आपने बड़े एक दर्दनाक कहानी छेड़ दी
0: है ना,
1: ये मौजूद बहुत, ये बहुत
0: ये सारे कहीं ना कहीं फेस करते हैं, मैंने भी शायद किया,
1: ये बहुत बहुत दर्दनाक मौजूद है, यकीन करें मैं अभी सोच रहा था कि आपसे क्या बात करूंगा, तो ये दर्दनाक मौजूद देखे, किसी भी खानदान में किसी भी माँ बाप के, किसी भी माँ के दो या तीन बेटियां एक ही घर में पैदा होते हैं, इकट्ठे जवान होते हैं, पढ़ते हैं, मैं गैरों को तो छोड़ता हूँ की तो बात ही नहीं करूंगा, अपनों की बात करता हूँ, तो देखे इकट्ठे जवान होते हैं, फिर एक टाइम आता है शादियां होती हैं उनकी आपस में, सही है, आगे बढ़ते हैं, औलादे जवान होती हैं, सब कुछ है, और ठीक है जिंदगी है, इसमें कुछ बहन भाई थोड़े आगे निकल जाते हैं, कोई एक दो मेरे जैसे पीछे भी रह जाते हैं, ठीक है
0: मेरे जैसे,
1: लेकिन क्या हो जाता है कि वो जो बेचारे पीछे रह जाते हैं उसकी अहमियत ही खत्म हो जाती है।
0: सही कह रहे हैं,
1: यहाँ तक होता है यकीन करें कि वो बहन भाई जो आपस में एक दूसरे के बगैर गुजर नहीं होता था जिंदा, फिर एक वक्त पता है कि अगर कोई बहन या भाई

0: अपनी बेटी या बेटे की मंगनी करता है या करता है या शादी का वक्त आता है, तो उसको किसी से पता चलता है कि आज मेरी बहन ने अपनी बेटी की या बेटे की मंगनी कर दी है भाई,
1: है ना?
0: वो पूछते ही नहीं। यानी देखे कि ये यहाँ तक हो गया हम लोगों में कि ये पैसे ने हम लोगों को इतना सत्यानाश कर दिया हमारे इन रिश्तों का, उनसे बात होती है जिनसे जिनके पास पैसा है, पता हाँ यार इससे मिलेगा, ये आएगा तो कोई 50,000 रुपया 1,00,000 रुपया खर्च कर, इसने क्या देना बेचारे कंगड़े ने
1: 4,000 रुपया के, हम उसको मुंह नहीं लगाते,
0: सही है
1: ना? उसको उसकी बात को भी नहीं सुनना कोई पसंद करता, वो बोले तो उसे कहते यार अच्छा ठीक है सुन लिया आप चुप करें।
0: हाँ जी हाँ जी, वो पंजाबी की कहावत है ना, जिसे घर दाने और कमले भी सियाने, मेरी दादी अल्लाह जनन शिव करके सुनाती होती थी, उनकी बातें काफी याद है। तो ये होता था कि जिसे घर दाने और कमले भी सियाने, दौसा भाई यही है। और बाकी वैसे जाते जाते मैं एक बात आपको कह दूं, जितना भी आप ऊपर चले जाएं, जितने भी पैसे आ जाएं, रिश्तेदारियां बहन भाइयों को आप नीचे डाल दें, लेकिन यकीन करें, अल्लाह ना करे जिस दिन कभी बुरा वक्त आता है ना, कोई अपना इस दुनिया से जाता है, तो सबसे पहले आदमी की जो बाहर दीवार पे जो दरवाजे पे की होती है ना, वो किसी बहन या भाई को टिकता है कि आज उसके कंधे पे सर रख के मैं रहूं।
1: सही बात।
0: पता तब चलता है कि तब वो बहन या भाई नहीं आता, फिर पता चलता है कि हाँ आज पैसे की अहमियत नहीं, आज अपनों की अहमियत है, वहां अहमियत का पता चलता है।
1: लेकिन तब देर हो जाती है ना, तब देर हो जाती है
0: लेकिन समझ आती है, फिर उस वक्त समझ आती है, लेकिन अफसोस के वक्त गुजर गया होता है।
1: ऐसे ही
0: देखिए, आज और मैं और आप और मैं भाई भाई हैं, सके भाई हैं
1: जी,
0: जिंदगी में हम एक दूसरे को पूछते नहीं है, अल्लाह ना करे मेरी या आप में से किसी एक की डेथ हो जाइए, मुझे क्या पता कि आप मेरी फौजगी पे रोने के लिए आए भी हैं कि नहीं आए, या जब जिंदगी में नहीं आप मेरे मरने पे आए, तो फिर जिंदगी में आप मुझे मिलने के लिए आए तो आज आप क्यों आ गए मेरे मरने पे?
1: फिर आप एक दूसरे से एड्रेस शेयर कर लें, दोनों में से जो पहले जाएगा दूसरा आएगा।
0: यानी कहने का मकसद ये कि ये इतना इतना इतना हम लोगों ने छोड़े, यार क्या बात करनी
1: है ना, तकलीफ वाली बात, हकीकत है भाई,
0: हकीकत है।
1: कोई रिश्ता नहीं बनता, गरीब बंदे से कोई नहीं मिलता, गरीब बंदे को कोई मुंह नहीं लगाता, गरीब बंदा आ जाए उसके सामने हम बर्तन भी आम से रख देंगे, कोई अपना खानदान में से वो जो सालों बाद एक दफा आए, पता हो ना पैसे इसके पास पैसे वाला है, हम नई क्रॉकरी निकाल के बेहतरीन सा सामान साजो सामान उसके सामने रखेंगे, बिला वजह हंसते भी रहेंगे उसके साथ, हा हा ही करेंगे, वो चाहे आपसे बात पता भी चल रहा हो मुनाफिकाना तर्ज में कह रहा है, लेकिन हम बड़े अच्छे तरीके से
0: कर रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, ये किसी की बात नहीं है, ये आजमाई हुई बात है कि आपको एक कप चाय पटका दे देंगे, अगर वही कोई गैर आ जाएगा ना
1: आपका बला
0: कर रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा,
1: बस
0: ये बस। और जी साढ़े घर आना हो ना, साढ़े घर आना हो तो सानू पहले फोन कर लेना,
1: फोन कर लिया करो, फोन करके आया करे, बता के आया करे, और अगर फोन कर लेना ऐसा बंदा कोई, नहीं नहीं आज हम घर नहीं है बाहर जा रहे हैं, वो फलां जगह, ओहो आप फिर आ जाना।
0: मैंने मेरे साथ हुआ ना ऐसे ही, मुझे किसी ने फोन, मैं कहा भाई मैंने तेरे घर आने की जरूरत नहीं है, जब फोन करके आना तो मैं नहीं आना तेरे घर फोन करके, ये तो हाल हो गया, क्या रिश्तों की बातें करनी क्या नहीं करनी।
1: चले थैंक यू वेरी मच भाईजान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
0: थैंक यू, ओके
1: दिस इज द रियलिटी। अभी इस पे बात करते हैं, आगे बढ़ता हूँ मैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देता हूँ, गुरबत पे बात करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरबत इन योर ओपिनियन। अच्छा 4471 के मैसेजेस में शामिल करता हूँ, फिर से दोहराता हूँ जो भी सुन रहे हैं मेरी आवाज़ और जिन तक जाती है पहली मर्तबा, अगर कॉल पर रब्ता नहीं हो पाता या आपका पैगाम मेरे तक नहीं पहुँच पाता, तो आप बिल्कुल, मेरी लाइव स्ट्रीम है जो कि अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसे मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, आई डोंट नो इफ इट इज़ अगेन गोइंग लाइव और नॉट। आप बिल्कुल मेरी लाइव पे भी आ सकते हैं, सर्च करें RJ_DOX लिखेंगे तो मेरी लाइव स्ट्रीम आ जाएगी, यू कैन हिट मी विद योर कमेंट्स देयर एज वेल। तो SMS भी कर सकते हैं आप मुझे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे, एंड हाँ जी 04-2111-0101। गुरबत की डेफिनेशन क्या होती है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट, क्या माली वसाइल की कमी, ज़रूरियात ज़िंदगी का पूरा ना कर पाना, वो गुर्बत है या क्या है, या लग्जरी को अफोर्ड ना करना गुर्बत है। मैं जितना इस पे सोचता रहा हूँ और अभी भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदार और जिम्मेदारी के फर्क को गुर्बत कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जो बंदा ज़िम्मेदार हो ना, माली वसाइल चाहे कम हो वो मैनेज कर लेता है, सिलसिला चला लेता है, आगे बढ़ जाता है मामला उसका। और जो पैसे वाला हो, गैर जिम्मेदार हो, तो माली वसाइल भी साथ नहीं देते किसी भी तरह से। इस पे और बात होगी, इस पे और डिस्कशन करते हैं। गुड़िया है पिशावर से, कहती हैं इस्लाम सर। वालेकुम अस्सलाम, पहली दफ़ा सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया। वाह सर, क्या अंदाज़ है आपका, ज़बरदस्त आपका हुस्न समात है। गुड़िया आप भी सलामत रहें, थैंक यू वेरी मच। और आसिफा, कुछ यूँ उतरें तेरे लिए रहमतों के मौसम के आसमां से, तेरा हर्फ दुआ कभी रद्द ना हो, आमीन। और मेहर हैं सर, ऑब्वियसली आपने नींदें उड़ाई इसलिए आपसे बात करने के लिए जाग रही हूँ, पहले इतने दिन बात नहीं हुई, मैंने कहा कि आज बात हो ही जाए। थैंक यू वेरी मच मेहर फातिमा। एम मंशा है फ्रॉम कश्मीर, सुनते हैं मेरी तरफ से आपको, सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी बातें दिल को लगती हैं, बहुत शुक्रिया मंशा भाई। और असलाम असद भाई, वालेकुम सलाम, नाइस शो। सलमा फ्रॉम पेशावर, थैंक यू वेरी मच जी। और एहसन मुगल हैं फ्रॉम काला शाह काकू, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का वाकई शुक्र है। और कहते हैं आज डॉक्स भाई, आपकी आवाज़ को हम तरस गए थे, आपकी तबीयत कैसी है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। आई एम फाइन जी, नाउ आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मैसेज किया बड़ा अच्छा लगा। सलमा रफ़ीक साहिबा हैं 4471 के मैसेजेस रीड कर रहा हूँ, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। आज डॉक्स कलाम बहुत खूबसूरत है, प्ले किया दिल को सुकून देता है, हमेशा मेरा फेवरेट है तू कुजा मन कुजा, मेरा भी फेवरेट है यकीनन, बहुत जबरदस्त कलाम है यकीन करें। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
2: वाजिद बोल रहे हैं जी, कुजर खान से।
1: क्या हाल है जी वाजिद साहब, आप ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, सुनाओ ठीक हो, खैरियत है?
1: बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया।
2: तो बड़ा प्यारा टॉपिक लगा तो सुना, तो एक शेर देने जाया सर, मैं क्या
1: सुनाए ना, सुनाए सुनाए
2: नजर करने हैं
1: जी जी।
2: शेर है पटवारी काफ़ते पटवारी चो मिसरे ने अंदर के, ऐ दुनिया देखी तेरी दुनियादारी, ऐ दुनिया देखी तेरी दुनियादारी, वो प्यारे सब थी काम काज रह गए, इतने अवस्थ दे पहुंचे लाग तोड़ी रोग ऐसे नाकाबले लाज रह गए।
1: अच्छा, अब इसकी ट्रांसलेशन भी करें,
2: एक मिनट शेर पूरा कर लें।
1: अच्छा, करें करें करें।
2: रोग ऐसे नाकाबले लाज रह गए, भाई भाइया नु मिलदे बेगानिया वांग, भाई भाइया नु मिलदे बेगानिया वांग, रिश्ते पैसे ने होके मोहताज रह गए, खाली दिल फराक मुहब्बतां थी, खाली दिल फराक मुहब्बतां थी, खैर सलाह दे बाकी रवाज रह गए।
1: अच्छा,
2: तो कि ट्रांसलेशन कुछ इस तरह किया कि इस दुनिया की जो दुनियादारी है, जैसे निजाम इस दुनिया का चल रहा है, जो जिस तरह के पहले प्यार मोहब्बत थी इंसानों में, वो नहीं रही है।
1: बिल्कुल ठीक है।
2: तो जिस तरह के आज वो पहले भी एक हमारे बड़े भाई बात कर रहे थे कि अपने जो है वो भी एक दूसरे के खून के अभी तो प्यासे बने फिरते, मोहब्बत तो होना ही दूर की बात है।
1: बिल्कुल ठीक है जी।
2: तो जो सके भाई हैं एक दूसरों के साथ, वो भी हाथ मिलाने से कासर हैं,
1: कासर है।
2: तो ये बात सिर्फ ये लालच और हवस की है, जिसके अंदर वो पैसा आ जाता है, पैसे की चाहत बढ़ जाती है, उसके दिल से मोहब्बत खत्म हो जाती है।
1: बिल्कुल ठीक।
2: इसकी आंख जब जागती है तो फिर वो उसको अपने और पराए की पहचान नहीं रहती।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
2: सिर्फ और सिर्फ लालच की दुनिया में फिरता है, उसकी आंखों में ना तो अपने के लिए प्यार मोहब्बत है, तो ना ही किसी अच्छे और बुरे के लिए फर्क है, उसकी आंखों में सिर्फ लालच है, सिर्फ प्यास है, हिर्स और हवस की। कुत्ते की एक मिसाल देते हैं कि कुत्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको बुरा समझा जाता है कि उसमें सिर्फ ये लालच की हिर्स जो है वो ज्यादा है, वरना कुत्ते के अंदर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 10 खसूसियात ऐसी हैं कि बंदे के अंदर एक भी पाई जाए तो वो वली बन जाता है।
1: बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है।
2: तो ये चंद एक बातें थी, लेकिन बातें तो बहुत लंबी हैं, ये इन्हीं बातों पर इख्तिताम करता हूं। मेरा तल्लुक थोड़ा सकाफते पटवारी था, तो मैंने कहा जो
1: आपने बहुत अच्छा किया जी, यकीन करें बहुत अच्छा लगा।
2: तो सब सुनने वालों को मेरी तरफ से
1: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तुबा नवाज कहती हैं राइट, थैंक यू वेरी मच। शहीर सफदर सुलहरी कैसे हैं असद भाई, मैं ठीक, आप खैरियत से हैं। अब्दुल शकूर दरेशक ने काफ़ी ज़्यादा दिल भेजे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हार्ट। सो गुरबत क्या होती है, गुरबत मसला तो है ये, और बहुत सारी जगह पे ख़ुद को तकलीफ़ पहुँचानी पड़ती है, बहुत सारी जगह पे इंसान ख़ुद को रिजेक्ट करता रहता है। हम गुरबत को डिफ़ाइन इसी तरह करना शुरू करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ज़िंदगी के दो फेजेस हैं जो आपको रियलिटी से रियलिटी का चेक देते हैं। दो फेजेस आपके मेरी हम सब की ज़िंदगी में है। एक वो बचपन का फेज़ जहां आप यू आर मोर इमोशनल, आप चीज़ों को तराजू में रख के नहीं तोलते, इंसानों को तराजू में रख के नहीं तोलते, आप इंसान को बहैसियत इंसान देखते हैं। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता इसका बाप क्या करता है, इसके पास कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी पे आता है कौन सी नहीं आता, और ना वो आने वाला बच्चा देखता है कि आप पैदल आते हो, साइकिल पे आते हो या किस तरह से आते हो। वो ये देखता है कि ये मेरी तरह का एक बच्चा, मेरी तरह का इंसान है, उससे मिलता, उससे बात करता, उससे ताल्लुक भी बनता है, उसके साथ दोस्ती बनती है। और चीज़ें बदल जाती हैं जब आपको थोड़ी सी होश आती है, शऊर आता है, अपनी ज़ात से तारुफ होता है, पैसे की ताकत का अंदाज़ा होने लगता है। वहाँ पे फिर ये सारा फतूर फैलना शुरू होता है, जहाँ पर रिश्ते पैसे से बनते हैं, जहाँ पे रिश्तेदारियाँ पैसे से बनती हैं, प्यार मोहब्बत का सिलसिला भी पैसों का मोहताज नज़र आता है। कहने को तो बड़ा आसान होता है कि मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी या मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही गुजारा कर लूँगा, बड़ा मुश्किल काम होता है। कहते हैं कि खाली पेट मोहब्बत नहीं होती, वो मोहब्बत लाइफ पार्टनर से हो, वो मोहब्बत आपके दोस्तों के साथ हो, या आपके घर में मौजूद आपके ही साथ पलने वाले बड़े होने वाले बहन भाई ही क्यों ना हो, बड़ा मुश्किल काम है साथ चलना गरीब बहन भाई के, रिश्तेदार के, लाइफ पार्टनर के। गुरबत तो कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को, गरीब को कौन मुँह लगाता। सो दिस इज द रियलिटी। बट सेकंड फेज फिर आता है, जब ये वाला फेज गुजर जाता है ना, जब आपको बुढ़ापा आता है, जब आपका जिस्म दोबारा से लागर होता है, जब आपके खून की रवानी कम होती है, जब आपके पास पैसा भी होता है लेकिन फिर भी आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता, क्योंकि आपके साथ पहले भी जो लिफ्ट करा रहे थे वो आपको नहीं, आपके पैसे को, आपके ओहदे को, आपकी पोजीशन को देख रहे थे। तब फिर एहसास होता कि नहीं यार ये चीज़ें मैटर नहीं करती। फिर आपके अंदर दोबारा से वही बचपन की स्टेट जागती है, जहां आप दोबारा से हर बंदे को बंदे की हैसियत से देखते हैं, तोलते हैं, पैसे से नहीं देखते। लेकिन मसला ये है, जिस उम्र में इंसान को इंसान समझना चाहिए, उस उम्र के हिस्से को हम तराजू के तोल में गुजार के बहुत सारे पुरखलूस रिश्तों से जान छुड़ा चुके होते हैं, किसी ऐसे हम सफर को खुद से दूर कर चुके होते हैं जिसे साथ होना चाहिए था। बहरहाल व्हाट इज योर ओपिनियन, गुरबत क्या है, गुरबत की डेफिनेशन बताएं मुझे। अच्छा मेरे पास मैसेजेस हैं। तूबा नवाज कहती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट वर्ड्स आर नॉट इनफ टू एक्सप्रेस हाउ ग्रेटफुल आई एम, यू चेंज माय पर्सपेक्टिव एंड द वे आई लुक एट लाइफ, इंस्पायरिंग मी टू वर्क ऑन माय सेल्फ, बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ हु आई एम, इन मैनी वेज यू हेल्प मी टू फाइंड माय वे बैक टू लाइफ एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी ट्रूली ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ मीनिंगफुल डिफरेंस माय लाइफ, अच्छा, अल्लाह आपके लिए आसानी करे if it really happened. फरा कहती है जो दिल के गरीब हैं वही दूसरे को गरीब अमीर के तौर पे परखते हैं, जो दिल के प्यारे हों वो खुद खलूस वालों को ढूंढ लेते हैं. अब दिल का गरीब कौन होता है ये भी बताइएगा. आयशा सुल्तान हमारी इंटर्न रही हैं, कहती हैं सर मेरे ख्याल में आजकल जैसे माशरा नेटवर्किंग का, जिसे माशरा नेटवर्किंग का नाम देता है, इसमें भी अक्सर इंसान का मुफाद शामिल होता है. वो ऐसे लोगों से ताल्लुक बनाना चाहता है जिनसे उसे फ़ायदा मिल सके, इसीलिए माली तौर पर कमज़ोर शख्स को अहमियत नहीं देता. इसे ये फिक्र भी होती है कि ऐसे शख्स से ताल्लुक रखने पर लोग उसके स्टेटस के बारे में क्या सोचेंगे. वेरी वेल सेड. दूसरी तरफ मुसलसल कमतर समझे जाने की वजह से गरीब शख्स भी साहिब हैसियत लोगों के सामने हिचकिचाने लगता है. मेरे नज़दीक गुरबत सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि उन वसाइल और मौके से भी महरूमी है जो इंसान को अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका देते हैं. अफसोस ये है कि हम इंसान को पहचानने के बजाय उसकी हैसियत को पहचानने लगते हैं. वेरी वेल सेड. अजमी खान, गुरबत, शाहजी पानी तो पिला दें, गुरबत सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं बल्कि कभी कभी ये जिंदगी की उन महरूमियों का नाम भी है जो इंसान को अंदर से खामोश कर देती हैं. एक खूबसूरत बात यह है, गुरबत जेब खाली होने का नाम नहीं मगर असल महरूमी उस वक्त होती है जब दिल से एहसास, आंखों से हया, जिंदगी से सुकून खत्म हो जाए. हाय हाय यार, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं आप लोग. कॉल ले रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम. ओहो, इतनी बड़ी बड़ी बातें. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम.
1: हजूर मोहतरम कैसे हैं?
3: मेरे शौकदा नहीं एतबार तेनु आ वेख मेरा इंतजार आ.
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह.
3: सर जी, जब से आप माशाल्लाह हमारी बहन मुल्तान से बात कर रही थी, हमारे यहाँ नशरियात बंद हो गई, उसके बाद से मैं ट्राई करे यार, मेरा इंतहा देख ले.
1: आपके नशरियात बंद हो चुकी हैं?
3: चला दिया जी.
1: हाय हाय, कोई बात
3: मेरा बोला नहीं, फिर भी हाजिर लगानी है मुझे डॉक्टर के लिए.
1: अच्छा सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया.
3: और माशाल्लाह आज तो आंखें सही तरह खुल रही है आपकी आज भी.
1: अच्छा.
3: नहीं, पिछले समय जरा नींद से उठ के आए थे ना.
1: आज भी नींद आ रही थी, मैंने कहा नहीं सोना. मैंने कहा मैं सो गया ना तो फिर मेरे से शो नहीं होना. तो यार वरना मेरी नीयत खराब हो रही थी, सो जा दफा का, सो जा रहन दे. मैंने कहा नहीं यार.
3: ये सर भाई वाली बात है ना, जितनी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है उतनी सख्त ड्यूटी होती है.
1: सुनाए, गुर्बत की क्या तारीफ है आपकी नजर में?
3: नहीं सर,
1: गुर्बत की वैसे कोई तारीफ नहीं होती.
3: नहीं सर,
1: गुर्बत तारीफी लफ्ज है ही नहीं, है ना?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, बाकी मेरी नजर में गरीब अच्छा होता है,
1: अच्छा आदमी होता है.
3: हाँ, क्योंकि मेरी अल्लाह शुक्र है, वो जो मेरा ससुराल था वो भी बेचारे हल्के थे मगर बहुत रहते हैं. आप यकीन कर लीजिएगा, अपना डॉग मैं जब जाता था ना अपने वाइफ को लेने, वो जाती थी जुम्मे को और मैं एतवार को लेने जाता था.
1: ओके.
3: आप यकीन कीजिएगा, वो मेरी सास बहुत दूर से जाके मेरे लिए लेके आते थी मगज नहारी. मगज जलावा होता था उसके अंदर.
1: क्या बात है, मैं नहीं खाता वैसे.
3: अच्छा. हाँ वो नहीं खाते, वो तो बता, आप तो दूसरों का खा लेते हैं.
1: हाँ नहीं, मैं यहाँ पे बोल के खा लेता हूँ, वैसे पका के नहीं खाता.
3: अच्छा. उसके अलावा उसके अलावा मेरे ससुर साहब माशाल्लाह थोड़े फासले से एक यानी बाजार था, वहां से चाट बड़ी अच्छी मिलती थी, चने वाली चाट. आप यकीन की तरह वो बेचारे वो लाते थे और वो वहां से नारी लेके आते. उनको पता है कि ये थोड़ा सा छोटा टाइप का आदमी आएगा तो पहले मुझे चाय से पहले चाट मिलती थी, उसके चाय, उसके बाद रात को खाना और उसके बाद पाकिस्तान फैंदाबाद.
1: क्या बात है मौजे.
3: और आप यकीन कीजिएगा, उनको मैंने कह दिया था, मैंने बोला जब तक आप लोग जिंदा हो तो हम आ रहे हैं, वरना तो आपकी बेटी आएगी, मैं नहीं आऊंगा.
1: बिल्कुल सही है.
3: उनके जाने के बाद एक दफा मेरा साला मेरे से पूछता है कि शाहिद भाई फला चाट जो वो लेके आते थे मेरे अब्बा वो आप खाएंगे?
1: अच्छा तो
3: पूछ रहा है खाएंगे वो बेचारे लेके आते थे यार खुदा
1: आपके बिना अंदर की औरत जाग जाती है अंसारी साहब मैंने हिसाब लगाया आपके अंदर शदीद कपत्ती वाली एक औरत है जो मौका ढूंढती रहती है कोई बात करे और मैं लड़ पड़ूं बस
3: दुपट्टा नहीं पहनता हूँ
1: आप भी मरफतन कह देते कि हाँ जी खाऊंगा लेके आओ पूछो नहीं ले आओ आपने भी कहा इसने पूछ लिया अब लिखानी
3: मालूम कर रहा है इसके खाओगे
1: मेरा पता क्या मानना है मेरा मानना ये हर मर्द में एक औरत होती है जो जाग जाती है अक्सर औकात दुपट्टा नहीं होता दाढ़ी मूंछ के साथ औरत दुपट्टा नहीं लेती लेकिन औरत जरूर होती है और आपकी शिद्दत से जागती है मेरा ख्याल है और मैंने बहुत सारे ऐसे हजरात देखे हैं जिनकी औरत ससुराल जाके जाग जाती है आपकी भी औरत आपने ससुराल जाके जाग जाती है यार
3: अच्छा सर वो एक वो हमारे दोस्त है राणा साहब आपसे मिलना चाह रहे थे आपने कहा था ये
1: यार मेरे दिन से निकल गया थी मैं कल जरूर इंशाल्लाह उनसे रابطہ करता हूं
3: नहीं अगर आप कहें तो मेरे को कह दो
1: जी जी कल उन्हें कह दे मुझसे रابطہ कर लें कोई एक दो बजे
3: इंशाल्लाह आप मिलेंगे बहुत खुशी होगी
1: सर बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी थैंक यू वेरी मच
3: मेहरबानी अल्लाह खुश रखे
1: अच्छा जी गरीब बंदे के रिश्ते नहीं होते कोई गरीब बंदा महज गरीब होता है यह हकीकत है कि नहीं है मैं तो अभी तक यही समझा गरीब बंदे का कोई रिश्ता नहीं होता कोई चक्कर नहीं कोई मोहब्बत नहीं इसकी मानी जाती गरीब बंदा देखता है अच्छा यार फर्ज करो मतलब इफ आई टेल यू अबाउट माय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइफ लेट मी टेल यू इन क्लियर वर्ड्स यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में देखना ना उस वक्त बंदे का बड़ा दिल होता है प्यार मोहब्बत बड़ा जाग रहा होता है देखना यार शी सो प्रीटी यार कितनी प्यारी लड़की है लेकिन ओ यार ये तो बड़ी अमीर है इन्हें कितने मुंह लाना है ये कहाँ पे मुंह लगाएगी हमें इससे पहले वो रिजेक्ट करे मैं खुद को खुद ही रिजेक्ट कर लेता था भाई नहीं प्यार मोहब्बत इसकी काबिलियत पैसा है क्यों ऐसा ये आपने मुझे बताना है ऐसा क्यों है अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह
1: कौन साहब है
4: साहब ठीक है मैं अख्तर हुसैन बात कर रहा हूँ
1: कैसे हैं आप खैरियत से अख्तर साहब
4: शुक्र अल्लाह के करम आपका एहसान है
1: सर
4: गुर्बत के बारे में तो ये बहुत बड़ी नेमत है गुर्बत
1: बिल्कुल ठीक है
4: क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत को पसंद किया
1: गुर्बत को
4: पसंद किया
1: सर गुर्बत और फकर में फर्क है सर आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं थोड़ा सा ऐड करता
4: हूं नहीं तसी
1: आपका जाहिर अपना नॉलेज है मैं मेरी नजर में मैं अपना ओपिनियन दूंगा मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे आपका अपना ओपिनियन है मेरी नजर में फकर है वो
4: अच्छा,
1: एक हदीस और एक वाकया वो याद आता है ना मुझे जिसमें सरकार रिसालत माफ फरमाते हैं कि ये इसी तरह से कोई लोगों में बांटने की और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की और कसम खा के कहा कि ओहद पहाड़ जितना भी सोना हो मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक के सारा बांट ना दूं खुदा के मखलूक में फकर इख्तियार करना वो है खुद से इख्तियार करना आपने अच्छी बात की लेकिन उसके लिए लफ्ज गुर्बत नहीं फकर का मैं इस्तेमाल करना मौजू समझता हूँ वजह तखलीक कायनात है जी वो
4: बेशक बेशक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
1: जी
4: कि इस उम्मत का फितना जो है वो दौलत है
1: जी बिल्कुल ठीक
4: फितना दौलत है अब हम इसी फितने में सारे मुब्तला हो चुके हैं
1: ठीक कह रहे हैं
4: और हमारे अखबार सारी जो है ना वो उल्टी हो गई है
1: सर इवन मैं अभी आपसे बात करते करते मुझे एक बात आपकी क्लिक कर गई मैं भी अभी बैठ के मौजू मैंने रखा हुआ है लेकिन ये मेरे अंदर कहीं से आया है मुझे भी लगता है मैं भी कहीं ना कहीं ऐसे कर जाता हूँ लोगों के साथ।
4: ऐसा ही है, ये बिल्कुल हकीकत है कि हम अगर अपने से कमजोर को देखें तो हम भी ऐसे ही बिहेव करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है,
1: और फिर हम अपने साथ अगर कोई करे तो उस पर नाराज होते हैं जबकि हम खुद वही कर देते हैं।
4: ऐसा ही है,
1: अपना फेल हमारा जस्टिफाइड है, अपना फेल हमारा उसके हमारे पास 100 दलायल है, लेकिन कोई और करे तो वो हमें बुरा लग जाता है। और बहुत अच्छा मुझे आपने याद कराया।
4: अब हम अभी रात के इस पहर एक तो सारे सुनते नहीं है, फिर नॉलेज भी बहुत कम है सब लोगों के पास, मुझ समेत ना
1: सर, मैं भी आपके साथ ही।
4: तो इसके लिए मेरे ख्याल में या मेरे जो जहन काम करता है
1: जी,
4: कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जो ऊपर से एक अच्छी बात जो है ना वो तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचे कि भाई ये बात जो है ना ये अडॉप्ट करनी है हमने।
1: अच्छी बात है,
4: तो इस पे हमने चलना है, इस बुनियाद पे एक बात आएगी, दूसरी बात आएगी, तीसरी बात आएगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारा माशरा और हमारा निजाम जो है वो दीन की तरफ और इखलाकियात की तरफ। देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके इखलाक दुरुस्त करने के लिए आया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक बात।
4: तो अब हमारे ये भी सारा कुछ गुरबत और अमीरी और गरीबी ये सारा कुछ इखलाक में ही आता है कि आपने गरीब के साथ कैसे बर्ताव करना है, अमीर के साथ कैसे रखना है, अच्छा अपने जो आप काम करते हैं जहाँ पर वहां पर कैसा निजाम
1: बिल्कुल बजा फरमा रहे
4: होना चाहिए। तो अब हमारी बातें तो चलो मैं और आप सुनते हैं, कुछ लोग रेडियो सुनते होंगे जो उनकी उन तक बात पहुंच गई है, बाकी 25 करोड़ आम तक तो बात नहीं पहुंची ना। बात तो तब होती है जब आप बात करो और वो बात सब की तरफ सबको पहुंच जाए।
1: बिल्कुल ठीक सर, बहुत जबरदस्त बात, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और आपका मशवरा यकीनन बहुत अच्छा।
4: थैंक यू सर,
1: थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तूबा नवाज का मैसेज यहाँ पे पोस्ट पे भी है, मरीना बिलाल ने वेलकम किया। अनायत खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज तो ज़िया भाई का शो है और वो कहाँ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनके लिए दुआ कीजिएगा। मोहम्मद तुफैल अहमद तनोली आई है, हया को परवाज से इब्तदा उनकी आंखों में, छुप ना सका कोई राज, हाँ छुप ना सका कोई राज मुद्दा उनकी आंखों में, उनकी आंखें हैं अल्लाह तौबा मैं कदे से आशना, तुफैल होश को आती है हया उनकी आंखों में, हाय हाय हाय, अश्कबार हूँ तो हालत अपनी रहती नहीं, जैसे उमड़ता है कोई दरिया उनकी आंखों में, मुद्दत हुई है आंख को उनकी दीद नसीब ना हुई, अब रास्तों के हैं नक्शे नुमा उनकी आंखों में, उनको देखे से मिलती है आंख को राहत हया, खुदा जाने ये कैसी है शफा उनकी आंखों में। वाह वाह वाह वाह सर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ख्याल, क्या बात है, छा गए सर, बहुत अच्छा। अच्छा जी, बारिया फ्रॉम इस्लामाबाद मैसेज उन्होंने किया, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम जी, कहती हैं कबूल शेर बकोल शायर, मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐप छुपा रखे हैं। हाय सही बात है, बिल्कुल सही कहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई एम नियत फ्रॉम इस्लामाबाद, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम आपका भी, इस्लामाबाद वाली बारिया नियत, बड़े डिफरेंट नाम। काशिफ खैरपुर से हैं, सिंध पाकिस्तान आर्मी से सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम सर, आप ठीक हैं। कहते हैं गुर्बत माली वसाइल को गुर्बत नहीं कहेंगे, ज़र्फ की कमी को गुर्बत कहते हैं, बजा फरमा रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खालिद नवाब शासन से सुनते हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छा है आज के टॉपिक तो आखिर, एक शख्स नाराज़ है वो भी हमसे अमीर है। लोगों से भी शिकायत है और मौत से भी, लोग तड़पते रहे मौत देखती रहे। ठेकेदार एहसान दानिश है मुल्तान किंड से, कहते हैं लूडो के एक दाने से भी सीख सकते हैं, उम्मीद हमें छह की होती है लेकिन अगर एक भी आ जाए तो चलना पड़ता है। ओए ओए यार कितनी बड़ी बात कर दी आपने।

0: का शो बहुत अच्छा है जी, हमेशा की तरह पिंडी से सुन रहे हैं। माँ शबरीन लाला आपकी बात तो सच है, तो बात है रसवाई की, आजकल रिश्तों को पैसे में तोला जाता है। अच्छा जी, शाहिद खान, आई लव यू ऑल। बात इंसान की अपनी सोच इंसान को गरीब बनाती है, निजाम कुदरत में जितनी छोटी चीज होती है वो उतनी ही कीमती और वजनी होती है, जिसको हर कोई खरीद नहीं सकता। लास्ट एंड कंक्लूडिंग वर्ड्स, तकब्बर जिल्लत है, आजजी बड़ाई है। अच्छी बात है, अहमद जट साहब ने हाय बोला। हेलो, क्या बात है नुसरत साहब की। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
1: राजी डार,
0: क्या हाल है डार साहब, आप खैरियत से?
1: आज सर ऑनियर कर रहे हैं
0: जी,
1: ऑनियर कर रहे हैं या ऑफियर?
0: आप ऑनियर हैं जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू। आखिर पे एंड पे आ गए ना
0: जी? जी आखिर पे,
1: काफी देर से ट्राई कर रहा था कि, लेकिन आपकी माँ की सर इतनी की कि लेने जो है ना वो इतनी बिजी है, मैं क्या आपको क्या बताऊं
0: सर। आपको लगता है?
1: लगता नहीं है सर, आपको लग रहा है, लाखों लोग इंतजार में कि अभी हमारी कॉल लगती है।
0: अच्छा,
1: वो कहते हैं ना, मैं आपको शेर सुनाता हूँ
0: जी। सुनाइए।
1: कि जख्म अब जख्म पुराने हो गए, उस गली में गए अब जमाने हो गए।
0: आए, जख्म पुराने हो गए, उस गली में गए जमाने।
1: अपने तुम अपने चाहने वालों की बात मत सुनियो, तुम्हारे चाहने वाले दीवाने हो गए।
0: क्या बात है सर, क्या बात।
1: ये जवाहर लाल साहब के शेर मैंने थोड़े दिन पहले सुने हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ये आपके लिए हैं।
0: सर बड़ी मेहरबानी,
1: इससे आगे भी हैं दो तीन, लेकिन मैं यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है
0: सर? मेहरबानी।
1: तो आपके टॉपिक पे आता हूँ सर
0: जी।
1: बात आर्यडॉक्स ये है कि इंसान जो है ना बहुत कसारे में जा रहा है, ठीक है
0: जी।
1: हम कम से कम अपने बहन भाइयों को अकेला ना छोड़े ना,
0: बिल्कुल ठीक बात।
1: छोड़ देता है वो कि वो इंसान नहीं, देखें कि छोटे छोटे होते हैं, माँ होती है, वो खाना बनाकर सारे बहन भाइयों को खिलाती है,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: एक बात ऐसा आता है कि हम माँ को भी छोड़ देते हैं,
0: बिल्कुल ठीक है जी।
1: जिसमें अपना जिगर का खून पिलाया होता है ना, उसको भी छोड़ देते। मैं आपको सुनाऊं एक वाकया, ईएमई सोसाइटी में एक अम्मा जो है ना मुझे मिलती थी आज से तीन साल पहले, 75 साल उम्र, एक लॉयर जरा ना वकील के घर में वो काम करती थी।
0: ओके।
1: और सफाई का काम करती, मुझे इतना दुख होता था ना, मैं खड़ा हो के उस अम्मा से मिल, अभी भी मुझे मिलती है, अभी तीन साल के बाद में वहां से गुजरा हूँ तो मुझे मिली है,
0: ठीक है जी।
1: वो उड़ के चलती है, उड़ के चलती है, सीधी चल भी नहीं सकती। और उस जो लॉयर वकील साहब है उसको इतना ख्याल नहीं है, तो वैसे भी वो तनखा उसको दे सकता। तो अम्मा से मैंने पूछा कि वाकया क्या है, कहती कि मैंने एक ही बेटा था, उसकी शादी की, उसने घर से निकाला।
0: दोबारा बताइए, आपकी आवाज कट गई।
1: उस अम्मा ने बताया कि एक ही बेटा था, उसकी जब शादी हुई है मुझे उसने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूँ।
0: ये अलमिया है जी, ये अलमिया है, अलमिया है,
1: अलमिया है। क्यामत के आसार है सर, क्यामत के आसार। मैंने उस अम्मा को फिर कहा कि तुम मेरे पास चलती रहो, जो कुछ ही होगा खाना पीना मैं आपका ख्याल करूंगा, और यकीन करे अल्लाह जानता है। और वो अम्मा मेरे साथ, उसे नहीं बेटा जब बुरे दिन आए तो गुजारेंगे,
0: बुरे दिन आए तो गुजारेंगे।
1: बड़े हौसले वाले दुनिया में पड़े हुए हैं,
0: बिल्कुल ठीक।
1: हम बहन कम से कम बहन भाइयों का अपनों तो ख्याल कर रहे हैं ना, अपनों तो अकेला ना छोड़े ना, और दुनिया सारी छोड़ दे, आपको छोड़ दे, मुझे छोड़ दे।
0: सर बड़ी मेहरबानी सर, बहुत अच्छा लगा आपने फोन किया,
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू वेरी मच। फरा अफजाल कहती हैं, अंसारी भाई खुद के लिए जाते थे ससुराल जब मिलने जाते थे। फरा कहती हैं, डॉग्स अब सेल्फ एज्यूम करते हैं, हो सकता है कोई आपको बात पसंद कर लेता, हो सकता है, मैं तो फिर बड़ा कुछ सोच सकता है, वो हो सकता कि सिचुएशन मैं खुद से इमेजिन कर लेता होता हूँ अक्सर ही, कि मैं ऐसे हूँ, मैं एक जहाज में बैठा हूँ, सफर कर रहा हूँ, प्राइवेट जेट है मेरा, हो सकता है तो फिर बात कुछ हो सकता है तो मिस वर्ल्ड भी साथ ही उसी जहाज में मेरे साथ ट्रेवल कर रही है, हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा आज के शो बहुत अच्छा है, डॉक्स रात के इस वक्त इतने सेंसिटिव टॉपिक रख रहे हैं। दिल उदास, किसका दिल उदास, काहे का दिल उदास, दिल उदास हो गया पर रियलिटी है, फेस तो करना। अच्छा गुर्बत जो है इसके बारे में बहुत सारी तारीफ कर सकते हैं, तारीफ का लफ्ज वैसे नहीं करना चाहिए इसके लिए इस्तेमाल, बहरहाल इसकी डेफिनेशन है। और दिल का गरीब होना, ये होना, वो होना, बात सिंपल सी है, बहुत अच्छी यहाँ पे किसी ने लिखा था, किसी दूसरे को अपने जैसा इंसान ना समझना, जहां आपको लगे कि आपको कोई सामने वाला शख्स हकीर लग रहा है, आप जान लीजिए कि आप हकीकतन गरीब हो चुके हैं, वो चाहे मैं हूं, आप किसी स्टेटस में हैं, जहां आपको कोई हकीर लगे आप गरीब हो चुके हैं। बाकी ये माली वसाइल का डिफरेंस, ये एक अलग किस्म की तहरीक है जो आपके अंदर उठती है, जिसमें साइकोलॉजिकली इंसान डिस्टर्ब होता है, साइकोलॉजी से इसके इसका इम्पैक्ट आता है समाजी तौर पे, सोशली आपको इफेक्ट करना शुरू करता है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करता है, ग्रुप पे भी करता है, जहाँ से आपका बिहेवियर फॉर्म होना शुरू होता है, आप अपनी ज़ात पे सवाल करने लगते हैं, आपके अंदर गिले शिकवे बनते हैं कि यार उसे मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला, वो बाय बर्थ अमीर था, मैं क्यों नहीं। इसमें एक दो बातें शेयर करने के लिए, बल्कि एक ही बात शेयर करूँगा, बिल गेट्स की मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, दैट इफ़ यू आर बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इफ़ यू आर डाइंग पुअर दैट इज़ योर फॉल्ट। अगर आप पैदा गरीब हुए ये आपका फॉल्ट नहीं, अगर आप मरते गरीब हैं ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि फार्मूला सारे वही हैं दुनिया में पैसा कमाने के, अगर उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली मैं या आप कमाने में कासर हैं तो ये हमारी गलती है। सो ये हो सकता है, इस पे नापा तोला नहीं जाता। और मोहब्बत के रिश्ते मैं आपको बताता हूँ वजाहत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ, कि हर वो रिश्ता मोहब्बत का हो या कोई भी हो, जहाँ आपको ये बू आ जाए ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको तोला जा रहा है, इससे पहले कि वो छोड़ जाए आप ही छोड़ जाए तो बेहतर है। ऐसा रिश्ता जिसमें महज गर्ज हो पैसे की, दौलत की, गोल्ड डिगर वाली टर्म भी है ना, यहाँ पे जहाँ नज़र आए वहाँ पे अपनी इज्जत को बचाना चाहिए, किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, इंसानियत का कोड ऑफ लाइफ उठा लें, मज़हब कोई भी देख लें, किसी मज़हब में इसकी ना तो गुंजाइश है, ना थी, ना होगी, क्योंकि जो किसी के पास है, इस मैसेज को मैं चाहता हूँ आप भी आगे फैलाते रहें, अपनी ज़ात को पहले, सबसे पहले आपको और मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्या आज आपके पास जो है या किसी और के पास है जिससे आप कंपैरिजन करते हैं, ट्रस्ट मी, ना आप लेके आए थे ना वो लेके आया था, दुनिया में आप भी एक ही हालत में आए थे और उसी हालत में आप जाएंगे, फर्क की कोई नहीं पड़ता, रहना कुछ भी नहीं है परमानेंटली। इफ यू टेल दिस टू योर सेल्फ, आपके बिहेवियर में चेंज आने लगता है, आपके माली वसाइल ज्यादा है या कम है लिख के अपने पास रखें, रोज देखा जिंदगी में सुकून आना शुरू होगा, जो है उस पर खुशी होगी, ट्रस्ट में। बाकी होता है सही है, जिससे भी मोहब्बत हो पैसों में तोड़ लेता आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जी,
1: अमित गुलार कर रहा हूँ सर।
0: कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं, ठीक है। आपकी मौजूदगी में एक SMS पढ़ सकता हूँ?
1: जी जी, जरूर पढ़े जरूर पढ़े।
0: अच्छा जी, SMS है, सलाम मोहब्बत प्यारे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। और खूबसूरत आवाज, प्यारी सूरत, लास्ट टाइम आपका वेडनेसडे को नहीं आए थे, सब खैरियत है? बहुत शुक्रिया, आई एम फाइन जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहती हैं आप बहुत अमीर हैं इसलिए हर किसी की दस्तरस में नहीं। अच्छा ठीक है जी, ये भी ठीक है जी। सर कैसे हैं आप?
1: आप सुनाए सर, ठीक हैं, खैरियत से हैं
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर।
1: आपने कहा SMS पढ़ लें, तो मुझे वो पुरानी आपकी जब शुरू शुरू में आप प्रोग्राम करने आए तो ऐसा ही होता था।
0: अच्छा,
1: याद होगा। हाँ है ना,
0: ऐसे ही है सर।
1: चले तुम वो आज आपका जो टॉपिक है इतना खूबसूरत है, मैं जो देख रहा हूँ बुनियादी बात कहीं भी नहीं है
0: जी।
1: असल में बुनियादी बात नहीं है। मैं एक तमहीद के तौर पे आपको एक शेर सुनाता हूँ अहमद सलमान का, कि खुदा के नाम पे देते न थे सुतंग आकर।
0: खुदा के
1: नाम पे देते न थे सुतंग आकर, कमीज फाड़ ली थोड़ी सी बिकारन ने। मैं आपको दोराहे पे ला के छोड़ के जाना चाह रहा हूँ।
0: बड़ी बात हो,
1: माशरा है,
0: बड़ी बात हो गई,
1: बड़ी बात होगी ना। मैं नहीं, असल में ये मुल्क, ये माशरा, यहाँ का तालीमी निज़ाम, तालीमी रवाज, ये नंगा समाज, ये साम्राज्य, ये अमीर की अयाशी और गरीब के ताने। मेरी नज़्म का एक अनवान था, उसमें नज़्म में मैंने एक किसी ने कहा था, ये इस वक्त टाइम नहीं है, फिर किस वक्त सुनाएंगे आपको
0: सर।
1: ये है सर, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है,
0: अलमिया है
1: ये। बुनियादी जो बात है ना असद भाई
0: जी, जी
1: बुनियादी बात, बुनियादी बात नहीं की जा रही। हमने गुर्बत पे बड़ी देखे ना, बात तो ये है ना, हर आदमी का अपना एक माइंड है, अपना एक, जो मैंने देखा, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरा तजुर्बा है
0: जी।
1: तो मैंने आपको क्या था, कमीज फाड़ ली थोड़ी सी
0: बेकारन।
1: मैं आपको इससे बड़ी गुर्बत की मिसाल मैं नहीं दे सकता
0: सर। मैं मतलब बहुत ही डीप है, यकीन करें, बहुत डीप है, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है ये। हाँ, माशरे की सोच की अकासी है।
1: देखो मैं, हम माशरे की बुनियाद पे तो किसी ने बात नहीं की ना।
0: हाँ,
1: जब भी कोई मुल्क बना सर, उसको देखा जाता था कि उसका माशरा क्या है, फिर उसके मुताबिक, उस माशरे के मुताबिक उस निज़ाम को, एक अच्छे निज़ाम को डालना चाहिए था।
0: बिल्कुल ठीक,
1: हमारी बदकिस्मती, हमें नहीं मिला। और अगर कहीं तक था भी, लेकिन फिर वो कहीं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। फिर मुझे वो अहमद रज़ा हैदरी का भी एक शेर याद आ गया, बहाल अहमद रज़ा या मोहम्मद रज़ा का था, बारह उसका एक शेर मुझे जहन में आया कि तवायफ मर गई फाका कशी से। तवायफ मर गई फाका कशी से, नगर सारा नमाजी हो चुका था।
0: हाय हाय, ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छा।
1: फिर देखे, बड़ी बड़ी मेहरबानी, महाराज फैजाबादी ने इससे बड़ी बात कर दी
0: सर। इससे सिमिलर मुझे एक और बात भी याद आती है ना
1: जी। जी,
0: वो एक शख्स बार बार वो क्लिनिक पे जाता था, फिर आता बाहर, उसकी बेटी ने फिर जाना शुरू कर दिया क्लिनिक के बाहर जाना और आना। उसने मरीज जिस दिन ज़्यादा आने शुरू हुए, उसकी बेटी हंसती हुई आई खुश खुश घर। उसने बाप से कहा कि बाप को मुबारक दी, उसने कहा अब जो है ना हमें जल्दी पैसे मिलने वाले हैं और हमारी ये जो गुर्बत आजकल चल रही है ये वाले दिन दूर हो जाएंगे। उसके बाप ने पूछा क्यों कैसे, उसने कहा मैं अभी क्लिनिक से आई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है दो मरीज ऐसे आए हैं उनकी हालत बड़ी ख़राब है, वो नहीं बचेंगे। वो गोरकन की बेटी थी
1: जी। जी जी,
0: तो कुछ मामला ऐसा ही है।
1: वो आपको याद होगा PTV पे ड्रामा लगा
0: जी,
1: उस ड्रामे का जो आखिरी सीन था ना, क्लाइमेक्स था
0: जी,
1: तो वो चौधरी फोट हो जाता है। तो वो उसकी जो बेटी होती है मौलवी साहब की, तो वो कहती है कि बेटी को ब्याह कहता कुछ है नहीं है। तो मौलवी खुश होकर आके घर में कहता है कि शुक्र है चौधरी फोत हो गया, अब कुछ ना कुछ वहां से मिलेगा तुम्हें बेटी की शादी। ये माशरा है सर, दैट्स
0: ये रियलिटी है सर। थैंक यू वेरी मच,
1: खुश रहें,
0: थैंक यू
1: गांव में। थैंक यू, अल्लाह।
0: بہت ہی خوبصورت بات کی جی حمید گل صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، سلام محبت، وعلیکم السلام جی. پھر کہاں سنا ہے ہر چیز مل جاتی ہے، دعا ہے آپ خود مل جاؤ گے یا مانگنا پڑے گا خدا سے، جس طرح آپ کو بہتر لگے کرتے ہیں. میں سو رہا ہوں، مجھے جگائیے گا نہیں، کیوں بلا وجہ کا مجھے ستائیے گا نہیں. میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں، دروازے پہ کوئی آئے اسے بتائیے گا نہیں. اگر گہری نیند میں لگے کہ مر گیا ہوں میں، تو زندہ دیکھنے کے لیے بھی مجھے بلائیے گا نہیں. زیادہ کچھ نہیں ہے سمجھنے کی بات، صرف ستائیے گا نہیں، بتائیے گا نہیں اور ہلائیے گا نہیں. ریئلٹی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو بھی لوگ ویسے ٹریٹ کریں جیسے آپ سوچتے ہیں، تو آپ خود پہلے لوگوں کو ویسا ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹریٹ کیا جائے، چیزیں بہتر ہوں. اب یہاں پہ آخری کال لے کے پھر میں اجازت چاہتا ہوں جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: کون ہے؟
1: سلیم ٹیلر.
0: کیا حال ہے سلیم صاحب؟ آپ خیریت سے؟
1: سر آپ نے جو ٹاپک چھیڑا ہے اس میں اتنا کچھ ملا ہے، اتنا کچھ ملا ہے کہ مزہ آ گیا آج سے آپ کے شو کا. ماشاء اللہ
0: سر، مہربانی ہے اگر کچھ فائدہ ہوا.
1: یہ حمید گل صاحب آیا، ان کو بہت ساری دعائیں، اور خاص طور پہ آپ کے شو کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایک اچھا ٹاپک لے کے آتے ہیں اور بڑا دماغ جو ہے نا اس میں خرچ ہوا ہوتا ہے آپ کا ماشاء اللہ. اللہ پاک اس میں اور اضافہ کرے. بیماروں کے لیے دعا سب سے پہلے، جان جن کے لیے بھی دعا. اللہ پاک، یہ میرے پاس شوکت بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم کام کر رہے ہیں، شوکت قصور سے آیا ہوا ہے، تو سلام، آپ کی آواز کا فین ہے اور آپ کو سلام بھیج رہا ہے.
0: سلام قبول کریں شوکت صاحب، آپ کی مہربانی.
1: اور پاک فوج کو سلام، اس ٹائم ہمارے فوجی جوان سن رہے ہیں، بہت ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ہم، اور ریڈیو پاکستان کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.
0: بہت شکریہ.
1: پاکستان زندہ باد. اسد بھائی زندہ باد.
0: تھینک یو ویری مچ سلیم بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو. وہ ڈوبنے نہیں دیتی تھی دکھ کے دریا میں، میرے وجود کی ناؤ اچھال رکھتی تھی، دعائیں اس کی میری بلاؤں کو روک لیتی تھی، وہ میرے چار سو ہاتھوں کی ڈھال رکھتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. گل آفرین خان، تھینک یو ویری مچ. دس از آر دی ڈاگس. اپنا خیال رکھیں، کل ملاقات ہوتی ہے 10 سے 12. اس کو جان بوجھ کے میں نے کوئی کنکلوڈ نہیں کیا، اس پہ پھر کبھی بات ضرور کریں گے. مدعا صرف غربت ہے، ہم اپنے رویے بہتر کر لیں معاشرہ برا نہیں ہوتا، ہمارے رویے اپنے ٹھیک نہیں ہیں. ہم خلوص کو، محبت کو، رشتوں کو روپے پیسے سے تولنا چھوڑ دیں، تولا ہی نہ کریں، اور اس طرح سے بیہیو کریں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کیا جائے. بڑا اچھا کسی کا ہو نہ ہو، آپ کا اور میرا ٹائم اچھا گزر جائے گا. سائننگ آف، کل ملتے ہیں انشاءاللہ 10 سے 12. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

0: keep it locked, keep it loud.
1: FM 101. Hamisha Aapke Saath.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी बड़ी सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा।